मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 6 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 मिनट 45 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। अब समाचार दिल्ली केंद्र से हम रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3,567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगिट बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगिट बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे।

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए विचार मंथन।

शिक्षा सबसे मजबूत हथियार है जिसका उपयोग आप इस दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। डॉक्टर नेल्सन मंडेला। अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। पहले सुनिए समूह स्वर में रामेश्वर शुक्लांचल की ये देशभक्ति रचना।

अभी आपने समूह स्वर में रामेश्वर शुक्ल अंचल की देशभक्ति रचना सुनी और श्रोताओं आपको सुनवा रहे हैं पंडित कुमार गंधर्व का गाया ये भजन। रचनाकार हैं संत कबीर।

0: अभी आपने पंडित कुमार गंधर्व का गाया ये भजन सुना, रचना संत कबीर की थी। अब सुनिए हरिहरन का गाया भजन।
1: भगवान आदित्य की उपासना से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता का अंत हो जाता है, शारीरिक रोगों का शमन होता है और अनेक प्रकार के दुख और शोक से प्राणी को मुक्ति मिलती है। भगवान आदित्य को तीनों लोकों और 14 भवन का स्वामी कहा जाता है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। मीडिया में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन, आलेख श्रीमती सुधा शुक्ल का है, वाचक है दिनेश नामदेव।
1: सुव्यवस्था व्यक्ति की सुरुचि और सौंदर्य प्रियता का उज्जवल प्रमाण है। अपने विशिष्ट पारिवारिक और सामाजिक वातावरण के कारण संसार में सब लोग भिन्न भिन्न प्रकृति के होते हैं। अपनी प्रकृति और अपने संस्कारों के अनुरूप कुछ लोग सुव्यवस्था प्रिय होते हैं और कुछ लोग इसके विपरीत। सुव्यवस्था विमुख लोग ही सांसारिक सौंदर्य को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए उत्तरदायी हैं। सुव्यवस्था प्रिय मनुष्य संसार को सुंदर बनाने की चेष्टा करता है और सुव्यवस्था विमुख मनुष्य निहित स्वार्थों के कारण उसे विकलांग और कुरूप बनाने में ही लगा रहता है। संसार के सभी मनुष्य यदि सुव्यवस्था प्रिय होते तो वह देवलोक से प्रतिस्पर्धा करता। सुव्यवस्था का अर्थ है वस्तु विचार और आचरण का ऐसा समन्वय और तालमेल जो मानव जीवन को सुंदर सार्थक और सुख शांतिपूर्ण बनाए। सुव्यवस्था मनुष्य के कर्म सौंदर्य का प्रत्यक्ष निदर्शन है। जब हम अपने घर को व्यवस्थित करते हैं तब सब वस्तुएं यथास्थान रखी हुई और सुसज्जित दिखाई देती हैं। जब हम अपनी दुकान सुव्यवस्थित करते हैं तब वो ग्राहकों के आकर्षण का केंद्र बन जाती है। जब हम अपने परिवार समाज और देश को सुव्यवस्थित करते हैं तब उनका भी मान सम्मान बढ़ जाता है। शिक्षण संस्थान, विधायिका, न्यायालय, शासन प्रशासन, पुलिस और सेना इत्यादि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की सुव्यवस्था के लिए ही निर्मित किए गए हैं। इसी प्रकार विभिन्न शास्त्रों की रचना भी मनुष्य के आचार विचार की सुव्यवस्था और ज्ञानवर्धन के उद्देश्य से ही की गई है। यदि इन सारी व्यवस्थाओं का नियमानुसार और समाज हित को ध्यान में रखते हुए पालन किया जाए तो तमाम समस्याएं सरलतापूर्वक हल हो सकती हैं। इन सारी व्यवस्थाओं के बावजूद यदि समस्याएं हल नहीं हुई हैं तो इस अवांछित परिस्थिति के लिए मनुष्य स्वयं ही उत्तरदायी है। इसीलिए ज्ञानियों का उपदेश है कि दूसरों को सुधारने से पहले स्वयं को सुधारो। सुधरे हुए सदाचारी व्यक्ति से ही दूसरों के सुधार की आशा की जा सकती है। सुव्यवस्था समस्याओं और उलझनों का निराकरण करती है और मनुष्य को ज्योति पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित करती है। नियमों के अनुसार आचरण सुव्यवस्था का अपरिहार्य अंग है। अनियमित आचरण से सुव्यवस्था का लाभ नहीं प्राप्त किया जा सकता। किसी आकस्मिक उपलब्धि के अतिरिक्त मनुष्य की सारी

0: उपलब्धियां उसके नियमानुसरण पर अवलंबित हैं। आवश्यक है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए उत्साहपूर्वक नियमानुसरण किया जाए। सुव्यवस्था मनुष्य की सफलता का पथ प्रशस्त करती है और उसके जीवन को उपलब्धिपूर्ण और आनंदमय बनाती है। अपनी सुव्यवस्थित कार्यशैली द्वारा मनुष्य लोकप्रियता और सामाजिक सम्मान अर्जित करता है। व्यक्ति की सुव्यवस्थित कार्यशैली से प्रभावित होकर दूसरे लोग भी उसका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन को सुखी बनाते हैं। सुव्यवस्था सुख, शांति और आनंद का अजस्त्र प्रेरणा स्रोत है। सुव्यवस्था व्यक्ति को निश्चिंतता और अभय प्रदान करती है। सुव्यवस्थित जीवन शैली व्यक्ति को सामान्य से विशिष्ट बनाती है। इसीलिए परिवार में माता पिता और परिजन बच्चों को सुव्यवस्थित और संस्कारशील जीवन जीने के लिए अभी प्रेरित करते हैं। सुव्यवस्थित मनुष्य का जीवन सद्गुणों का भंडार होता है। सुव्यवस्था मानव जीवन का श्रृंगार करती है। वो मनुष्य को लक्ष्यनिष्ठ और कर्मयोगी बनाती है। वो उसे निरंतर सजग, सतर्क और सावधान रहने के लिए प्रेरित करती है। सुव्यवस्था में ही मानव जीवन का समस्त सौंदर्य समाहित है। इस सौंदर्य का साक्षात्कार करने में ही जीवन की सार्थकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख श्रीमती सुधा शुक्ल का था, वाचक थे दिनेश नामदेव। मीडिया में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस का गायन, स्वर रविंद्र साठे का है।

वनवासी कोल भीलों के सौभाग्य से ही मानो श्रीराम का चित्रकूट आगमन हुआ है। उनके दर्शन पाकर सभी सनात हो गए हैं। वनवासियों का कहना है, हे नाथ, जहां जहां आपने चरण रखे हैं वे स्थान अपनी समस्त प्राकृतिक संपदा पशु पक्षियों समेत धन्य हो गए हैं। अपने निवास के लिए भी आपने अत्यंत उपयुक्त स्थान चुना है। यहां सभी ऋतुओं में आप आनंदित रहेंगे। हम लोग सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं, हिंसक पशुओं तथा अन्य घातक प्राणियों से आपकी रक्षा करेंगे। आप हमें आज्ञा देने में संकोच न करें। हम आपकी सुख सुविधा के लिए निरंतर आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। जब से लक्ष्मण तथा सीता सहित श्री राम ने वन में निवास किया है, तब से ही ये स्थान मंगलदायक हो गया है। वृक्षों में फूल फल आने लगे हैं, उन पर लताओं ने मंडप तान दिया है। पशु पक्षी जगत नए उत्साह से जीवंत हो गया है। सभी आपसी वैर भाव त्याग कर एक साथ विचरण करने लगे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन, स्वर रविंद्र साठे का था। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है, किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है कृषि सामयिकी। इसमें सुनिए स्वचलित धान रोपाई के बारे में जानकारी।
1: आज आपको बताते हैं स्वचलित राइस ट्रांसप्लांटर यानी कि धान की रोपाई की विधि। स्वचलित रोपाई यंत्र के दक्षतापूर्ण रोपाई के लिए दो बातें बहुत जरूरी होती हैं। पहली बात, अच्छी चटाईनुमा पौध और खेत की उथली मचाई। तो धान की रोपाई के लिए चटाईनुमा पौध तैयार करने के लिए इनका घनत्व ठीक होना चाहिए, पौधों की जड़ एक दूसरे से लिपटे रहे ताकि वे आसानी से रोपाई यंत्र की ट्रे में रखे जा सकें। जब पौधे 20 से 22 दिन के हो जाते हैं और उनमें 3 से 4 पत्तियां आ जाती हैं, तब धान की रोपाई इस यंत्र द्वारा करनी चाहिए। रोपाई के लिए पौध की लंबाई, जड़ की लंबाई, तने की मोटाई, पौधों की उम्र, इन सब बात का ध्यान रखें। चटाईनुमा पौध की नर्सरी तैयार करने के लिए मिट्टी का मिश्रण बनाना चाहिए। मृदा मिश्रण बनाने के लिए जब काली मिट्टी हो तब मिश्रण का अनुपात मिट्टी, बालू और गोबर की खाद 70:20:10 के हिसाब से मिलाएं। भूमि की ऊपरी सतह की मिट्टी को इकट्ठा करके और फिर उसे सुखाने और भुरभुरी करने के बाद उसमें 4 से 5 मिलीमीटर आकार की छन्नी से छान लेते हैं। 1 हेक्टेयर की रोपाई करने के लिए सामान्यतः 1 टन मिट्टी या मृदा मिश्रण की आवश्यकता होती है। इसमें लगभग 400 चटाईनुमा फ्रेम, इनका माप होता है 500×210×25 मिलीमीटर, तैयार की जा सकती है। प्रति मैट या चटाई के लिए 2 से 2.5 किलो सूखे मृदा मिश्रण की जरूरत होती है। चटाईनुमा फ्रेम का माप मुख्य रूप से धान रोपाई यंत्र की ट्रे की माप पर आधारित रहता है। 8 कतार वाले स्वचलित धान रोपाई यंत्र के ट्रे के अंदर की माप 500×210×25 मिलीमीटर होता है। इसके लिए लोहे या लकड़ी का फ्रेम बना सकते हैं। नर्सरी बेड को समतल बनाना चाहिए और साथ साथ मेड़ वाली नालियां बनाते हैं जिससे कि सिंचाई करने के बाद पानी निकल सके और सिंचाई करने में भी आसानी रहे। नर्सरी बेड को पूर्ण रूप से समतल और सख्त होना चाहिए। बेड की चौड़ाई लगभग 1.2 मीटर रख सकते हैं जिसमें 2 फ्रेम आसानी से बिछाए जा सकें। 1 हेक्टेयर में रोपाई करने के लिए नर्सरी बेड का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर लगता है। चटाईनुमा पौध तैयार करने के लिए 40 किलो बीज की आवश्यकता होती है जिससे 1 हेक्टेयर में धान की रोपाई की जा सके। इसके लिए गुणवत्ता वाले बीज का चुनाव करना चाहिए। बीज को 1% नमक के घोल में डालें जिससे कि खराब बीज पानी के ऊपर आ जाता है, उसे छानकर अलग कर लें। अच्छे बीज को पानी से 2-3 बार साफ करके धो लें। 1 दिन के लिए बीज को पानी में डुबा कर रखें। इसके बाद बीज को पानी से निकाल कर 1.5 से 2 दिन के लिए पटसन या जूट की बोरी या कपड़े में लपेट कर रखें। इस तरह से बांध कर रखने से 1.5 से 2 दिन के बाद बीज अंकुरित हो जाता है। लगभग 200 गेज मोटाई की पॉलिथीन शीट लेते हैं और प्रति फ्रेम के हिसाब से 3 से 4 जगह पर पॉलिथीन में छेद कर देते हैं और उसे फिर उसी बेड के ऊपर बिछा देते हैं। पॉलिथीन बिछाने के बाद उसके ऊपर फ्रेम रख देते हैं। फ्रेम में 15 मिलीमीटर मृदा मिश्रण भर देते हैं और स्क्रैपर की सहायता से प्लेन सतह बना लेते हैं। अंकुरित बीज को 200 से 250 ग्राम प्रति चटाई की माप से समान रूप से फैलाएं। बुआई करने के बाद बोए हुए बीज को मृदा मिश्रण की लगभग 5 मिलीमीटर परत से ढक दें। इसके बाद बोरी से ढक दें। चटाईनुमा पौध तैयार करने में पानी का ध्यान बहुत रखना चाहिए, इसलिए बुआई करने के तुरंत बाद हजारे से पानी देना चाहिए जिससे अंकुरित बीज सूख ना पाए। लगभग 20 से 22 दिन में चटाईनुमा पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। इस समय पौधे में 3 से 4 पत्तियां आ जाती हैं। चटाईनुमा पौधों को दोनों हाथों से उठाकर धान रोपाई यंत्र के ट्रे में सीधे रख देते हैं। 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए 40 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है जो पौध के लिए पर्याप्त होता है। इससे लगभग 400 चटाईनुमा बन जाती है। चटाईनुमा पौधे मशीनों से रोपाई करने के बाद जल्दी स्थापित होते हैं क्योंकि जड़ को मिट्टी सहित जो कि एक दूसरे से लिपटी रहती है उसे मचे हुए खेत में रोप दिया जाता है जिससे पौधे ट्रांसप्लांटिंग के दिन से ही तेजी से बढ़ते हैं।
0: कृषि सामयिकी में किसान भाई सुन रहे थे स्वचलित धान रोपाई के बारे में जानकारी। मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर। 8:30 पर समन्वित कार्यक्रम भोपाल केंद्र से। 9 बजे लोक संगीत का कार्यक्रम होगा लोक रसधार। कलाकार होंगे मुन्ना लाल। 9:10 पर सुनिएगा प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इस क्रम में बस्ती के पर्यावरण कार्यकर्ता श्री आकाश गुप्ता से बातचीत, इसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 9:30 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा, कलाकार होंगे पंकज दास। 10:05 पर वंदे मातरम गौरव गान की 150वीं सारंगा। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 10:20 पर। 11 आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5 न्यूज़ हेडलाइंस से। 5:02 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी। 5:33 का आनंद लीजिएगा। 5:33 पर 6:10 पर भक्ति संगीत देशभक्ति फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा और लोक संगीत 6:30 पर कलाकार होंगी गीता राजपूत। सुगम संगीत में दीप्ति मिश्रा के गाए गीत और भजन सुनिएगा शाम 6:45 पर।

किसान भाइयों के लिए कृषि जगत कार्यक्रम होगा शाम 7:21 पर। कलाकार होंगी प्रभा देवी विश्वकर। गम्मत लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 7:21 पर। सुर्खियों में रात 8 बजे भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 8:35 पर। रात 9:30 पर अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती, और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, मीडिया में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में, 7:05 पर अंग्रेजी में और 7:10 पर

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात राज्यस्य सूरत नगरे 18,000 कोटि रूप्यकाधिक मूल्यानां मार्ग विद्युतः अथ च औद्योगिक विकास परियोजनानां शुभारंभं विहितवान्। सः आदौ हजीरा क्षेत्रं गत्वा औद्योगिकाधारभूत संरचना कार्याणां समीक्षां विहितवान्, सहैव जनसभामपि संबोधितवान्। अनन्तरं प्रधानमंत्री दमन नगरं समागच्छत्, यत्र प्रायः 2,970 कोटि रूप्यक परिमितानां विविध विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। अवधेयास्पदं वर्तते यत् एताभिः परियोजनाभिः क्षेत्रस्य विकासः, आजीविकानिर्माणानि तथा जनसुविधानां वृद्धयः च भविष्यन्ति। सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा अंक सत्यापनार्थं सहैव पुनर्मूल्यांकनार्थं आवेदन प्रस्तुतेः अन्तिमा तिथिः जून मासस्य 7 दिनांक पर्यन्तं वर्धिता। सामाजिकान्तर्जालीयपटले एकेन सन्देशेन परिषदा प्रख्यापितं यत् छात्राः इदानीं रविवासरस्य मध्यरात्रिं यावत् स्व आवेदनानि प्रस्तोतुं शक्नुवन्ति। सीबीएसई परिषदा प्रोदीरितं यत् छात्रहितं मनसि निधाय आवेदनप्रक्रियां पूरयितुं छात्रेभ्यः अतिरिक्तसमयप्रदानाय एषः निर्णयः स्वीकृतः। एतस्मात् पूर्वम् आवेदनस्य अन्तिमा तिथिः अस्य मासस्य 6 दिनांकं यावदासीत्। परिषदा सर्वेभ्यः योग्यछात्रेभ्यः परामृष्टं यत् ते निर्धारितसमये एव स्व आवेदनप्रक्रियां सम्पादयन्तु। केन्द्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी अघोषयत् यत् अंडमान द्वीप समूहस्य पूर्व समुद्रीय तटात् प्रायः 15 किलोमीटर दूरे श्री विजयपुरम त्रिक्षेत्रे प्राकृतिक गैस भंडारः अन्विष्टः। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन संदेशेन श्री पुरी प्रख्यापितवान् यत् एतत् अन्वेषणम् अंडमान समुद्रस्य विशाल ऊर्जा क्षमतां पुनः प्रमाणीकरोति, सहैव अस्मिन् क्षेत्रे प्रचल्यमानस्य गवेषणाभियानस्य एकाम् अपरां सफलतां च सूचयति। सः अकथयत् यत् ऑयल इंडिया इति संस्था सम्प्रति गैस द्रव्यस्य संरचनां तथा च तस्य ऊष्मीयमानं मूल्यांकितुं गैस सैम्पलिंग इति प्रतिचयनस्य कार्यं करोति। अन्ताराष्ट्रिय पर्यावरण दिवसावसरे श्रीपुरी महोदयेन नवदिल्ल्यां फ्लेक्स इंधन वाहनेभ्यः E85 इंधनस्य शुभारंभो विहितः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमितशाहः ह्यः अब्रवीत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः आर्थिक परिष्काराणां लक्ष्यस्य अन्तर्गतं भारतस्य विकासयात्रा देशस्य आर्थिक समृद्धिम् अविरतं वर्धयति। अस्मिन् आर्थिक वर्षे पंजीकृतं 7.7% जीडीपी विकासं निर्दिश्य श्रीशाहः प्रावोचत् यत् एषा उपलब्धिः गत 12 वर्षेषु भारतस्य अर्थव्यवस्थया सुदृढतां प्रकटयति। अथ च क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तान दलयोर्मध्ये स्पर्धा अद्य न्यू चंडीगढ़स्य मुलानपुर स्थिते महाराजा यादवेन्द्र सिंह अंताराष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे आरप्स्यते। अस्यां स्पर्धायां शुभमन गिलः भारतीय दलस्य नेतृत्वं विधास्यति। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं प्रातः 9:30 आरप्स्यते। पुरुषाणाम् अंडर 18 इति अष्टादश एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 5-3 अंतरालेन पराजितम्। अपरतः महिलानां अष्टादश एशिया कप प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां चीन देशेन भारतीय दलं पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की दर से बढ़ी है। दमण में कल 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर आगे बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 50 गीगावाट अकेले गुजरात की है। वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमरीका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमरीका से 3,567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना का कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया की विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान

से होगा। जापान के काका मिगाहारा में कल सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत की अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के सूरत और केंद्र शासित प्रदेश दमन के दौरे पर 22,000 करोड़ से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इंदौर में आज भारत लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार तथा निवेश फोरम की बैठक, 15 देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। प्रदेश में गृह विभाग ने 74 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए और मौसम विभाग ने राज्य के 52 जिलों में आज 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के सूरत में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, बिजली और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रमुख हिस्से राष्ट्र को समर्पित किए गए और 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन भी हुआ। शाम को प्रधानमंत्री ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने के साथ साथ नमो अस्पताल राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा,
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: इंदौर में आज भारत लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार तथा निवेश फोरम की बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इस फोरम में 15 देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, आईटी और पर्यटन सहित कई क्षेत्रों में निवेश और व्यापार के अवसरों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल में कहा कि दूध उत्पादन से लेकर इंडस्ट्री और माइनिंग तक हर क्षेत्र में सहकारिता का दायरा बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान लोन डिफॉल्टर ना हो इसके लिए सहकारी सोसाइटियों की निर्धारित अवधि 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई करने का प्रयास किया गया।
2: हम अपने किसानों का जो एक साल का ऋण की अवधि बढ़ा करके उसको आगे बढ़ाएं ताकि वो अपने सभी प्रकार की दोनों फसलों के साथ 31 मार्च जरूरी नहीं रहेगा, उसको संशोधित करने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार से जो सोसाइटियों में कोई कारण से अधिकारी कर्मचारियों की गड़बड़ियों के कारण से वो सोसाइटी डिफॉल्टर हो जाती है, ऐसे में व्यक्ति पे कार्रवाई करेंगे, सोसाइटी पे नहीं।
0: प्रदेश में गृह विभाग ने कल 8 आईपीएस और 66 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों सहित कुल 74 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। आईपीएस अधिकारी आयुष जाखड़ और उनकी पत्नी अनु बेनीवाल दोनों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर जबलपुर भेजा गया है। वहीं नरसिंहगढ़ की एसडीओपी मिनी शुक्ला ने शुक्ला को पदोन्नत कर भोपाल नगरीय पुलिस में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त बनाया गया है। धार के पुलिस अधीक्षक सुजावल जग्गा को ग्वालियर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल दिल्ली की शकूर बस्ती डिपो में हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना की प्रगति की समीक्षा की।

0: और आधुनिक रखरखाव सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने हाइड्रोजन ट्रेन को भारतीय रेलवे को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। इसके बाद उन्होंने गुरुग्राम रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया, जहां 300 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय पुनर्विकास कार्य चल रहा है। बुंदेलखंड की दशकों पुरानी मांग पूरी हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रीवा सागर नागपुर हैदराबाद के बीच नई स्थायी ट्रेन सेवा को मंजूरी दे दी है। इस सीधी ट्रेन से सागर और बुंदेलखंड के लोगों को इलाज, व्यापार और शिक्षा के लिए दक्षिण भारत जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। सागर सांसद डॉ लता वानखेड़े ने प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि ट्रेन सेवा सागर के विकास को नई गति देगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भाजपा के दोनों प्रत्याशी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल आज राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून है। कांग्रेस ने मंदसौर की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को अपना प्रत्याशी बनाया है। जरूरत पड़ी तो 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन परिणाम भी आने की संभावना है। केंद्र सरकार के खेत बचाओ अभियान से अब तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम और 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इनका उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। CBSE ने 12वीं के अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। पहली तारीख 6 जून निर्धारित थी। छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक आवेदन जमा कर सकेंगे। भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क में 3 दिवसीय साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 400 से अधिक विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। कौशल विकास मंत्री गौतम टिटवाल ने कहा कि जिस तरह सैनिक देश की भौतिक सीमाओं की रक्षा करते हैं, उसी तरह साइबर विशेषज्ञ डिजिटल सीमाओं के प्रहरी हैं। उन्होंने युवाओं से रोजगार खोजने के बजाय रोजगार सृजक बनने की अपील की है। प्रदेश में शिक्षण संवर्धन कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 11 विद्यार्थियों और 11 शालाओं को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया। श्योपुर के कुरू नेशनल पार्क में दशकों बाद दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराकल की मौजूदगी कैमरे में ट्रैप हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस पर प्रसन्नता जताते हुए कहा है कि ये कुरू में समृद्ध हो रही जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों का प्रमाण है। प्रदेश में मानसून से पहले ही प्री मानसून जमकर बरस रहा है। बीते 24 घंटों में 20 से अधिक जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई और आज भी मौसम इसी तरह बना रहेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के 52 जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकादमी के 7 खिलाड़ियों का कजाकिस्तान में आयोजित एशियाई कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप के लिए भारतीय दल में चयन हुआ है। इनमें संतोष सिंह, प्रिंस गोस्वामी और निहारिका सिंह सहित 5 कैनो स्प्रिंट और 2 पैरा कैनो खिलाड़ी शामिल हैं। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए पदक जीतकर लौटने की शुभकामनाएं दी हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा कल अल्प प्रवास पर बैतूल पहुंचे। सर्किट हाउस में कलेक्टर ने उनका स्वागत किया। खंडवा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। पन्ना जिले में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान की शुरूआत पूर्व मंत्री और पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने की। डिंडौरी में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत व्यापक वृक्षारोपण किया गया। झाबुआ कलेक्टर ने माही मुख्य बांध का निरीक्षण कर जल आवक और डैम संचालन व्यवस्था देखी। आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में कल रोजगार मेले में 53 युवाओं का प्रारंभिक चयन किया गया, साथ ही 23.85 लाख रुपए के स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। मंडला जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने उदय चौक के पास निर्माणाधीन मल्टी स्टोरी पार्किंग का निरीक्षण किया। गुना में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिंहवासा तालाब परिसर में जिला प्रशासन और नगर पालिका परिषद द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन तो

श्रोताओ, स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर में। आज पहले बात करते हैं विकसित भारत की ओर, इस विषय पर नेक्स्ट जनरेशन इंडिया फेलोशिप के तहत 10 युवा भारतीयों के रूप में हम उस पीढ़ी की आवाज़ों, आकांक्षाओं और विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमारे देश की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है। हमारी पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता अलग अलग होने के बावजूद हम एक सरल लेकिन शक्तिशाली उद्देश्य से एकजुट हैं, एक ऐसे भविष्य की कल्पना करना जिससे हमें विरासत में हम पाना चाहते हैं। इस महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर और संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन और CEW के समर्थन से हमने 2047 में भारत की स्वतंत्रता शताब्दी के अवसर पर उसके भविष्य की कल्पना करने की यात्रा शुरू की। यह एक राष्ट्रीय आह्वान है, स्वतंत्रता शताब्दी के समय तक एक पूर्ण विकसित अर्थव्यवस्था, एक सतत विकास नेता और वैश्विक शासन का सुधारक बनना। भारत से बाहर के लोगों के लिए विकसित भारत को हमारे मार्गदर्शक सितारे के रूप में सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। एक मजबूत, समावेशी, भविष्य के लिए तैयार राष्ट्र कैसा होना चाहिए, इसकी एक परिकल्पना। इस महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर और संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन और CEW के समर्थन से हमने ये लक्ष्य हासिल करने की सोची। लेकिन विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना कोई तय बात नहीं है। सवाल यह नहीं है कि भारत के पास कोई दूरदृष्टि है या नहीं। दूरदृष्टि तो है, सवाल यह है कि क्या यह पीढ़ी उस दूरदृष्टि को साकार करने के लिए चुनौतियों का सामना कर पाएगी। 30 वर्ष से कम आयु के 734 मिलियन नागरिकों के साथ आज जीवित लगभग 10 युवाओं में से एक भारतीय है। इससे इस लक्ष्य में हमारी भूमिका को नजरअंदाज करना असंभव हो जाता है। ये रिपोर्ट व्यवधान को संभावना में बदलने का हमारा प्रयास है। ये युवाओं के बारे में नहीं बल्कि हमारे द्वारा लिखी गई है। ये समावेश की अपील नहीं है बल्कि एक परिवर्तन का एक मार्गदर्शक सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य एक अंतर पीढ़ीगत आंदोलन को जन्म देकर विकसित भारत के वादे को पूरा करना है, जहां हर आवाज एक विकसित भारत को आकार देने में योगदान दे सके। लगभग 600 युवा भारतीयों के साथ महीनों तक बातचीत, विचार विमर्श और कल्पनाशीलता के माध्यम से 5 शक्तियां हमारे समय के महान विघटनकारी कारकों के रूप में उभरी। इनमें से प्रत्येक एक खतरा है, लेकिन यदि साहस के साथ इनका सामना किया जाए तो ये नव प्रवर्तन और विकसित भारत की प्राप्ति का साधन बन सकती है। भारत में युवाओं की बढ़ती संख्या ऐतिहासिक है, फिर

भी कई लोगों के लिए ये एक लाभ से अधिक दबाव जैसा लगता है। हर साल लाखों लोग डिग्री लेकर लेकिन अनिश्चितता से भरे मन से कार्यबल में प्रवेश करते हैं। ये जनसांख्यिकीय रुझान की बात हुई। अब अगर बात करें तीव्र शहरीकरण की, अगली पीढ़ी के शहरों का निर्माण, 2036 तक भारत में 600 मिलियन से अधिक नए शहरी निवासी जुड़ेंगे। पांच शहर सबसे पहले ही जीडीपी का 60% उत्पादन करते हैं, और जहां युवा लोग अवसर, पहचान और स्वतंत्रता की तलाश करते हैं। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा जटिल है। शहरीकरण की ही इस बात की कसौटी है कि क्या विकसित भारत समावेशी होगा, कैसे असमानता के महानगर बनेंगे या ऐसे सहभागी शहर बनेंगे जो सभी के लिए उपयोगी हों। क्या प्रवासन अवसरों को सीमित करेगा या स्मार्ट ग्राम केंद्र भारत के ग्रामीण जीवन को अधिक आकर्षक बनाएंगे। फिर बात आती है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवाचार और कौशल विकास की। हम पहली ऐसी पीढ़ी है जो ऐसी तकनीक के साथ बड़ी हुई है जो अपनी कहानियां गढ़ सकती हैं, अपने चित्र बना सकती हैं और यहाँ तक कि अपने गाने भी लिख सकती है। कुछ लोगों के लिए AI उत्थान और शिक्षा का साधन है, दूसरों के लिए नौकरियों और स्वयं के लिए एक बड़ा खतरा है। विकसित भारत को केवल कागजी विकास से कहीं अधिक सार्थक बनाने के लिए भारत को ये सुनिश्चित करना होगा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वयं में लोकतंत्रीकरण का माध्यम बने। इसके लिए कौशल विकास, सुशासन और नैतिकता को हमारे मार्ग का मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक होगा। फिर बात आती है जलवायु परिवर्तन की, चिंता से कार्यवाही की ओर बढ़ना। हमारी पीढ़ी के लिए जलवायु परिवर्तन कल की कहानी नहीं है, ये आज की वास्तविकता है। हमने जितनी भी इस बारे में विचार किया उसमें जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख चिंता के रूप में सामने आया। भारत ने जलवायु परिवर्तन पर कार्यवाही को अपने विकसित भारत दृष्टिकोण के केंद्र में रखा है। अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन का नेतृत्व करने से लेकर मिशन लाइफ 8 को व्यापक स्तर पर लागू करने तक भारत ने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन जब तक युवाओं को इस परिवर्तन के सह निर्माताओं, नव प्रवर्तकों, किसानों, उद्यमियों और राजदूतों के रूप में सशक्त नहीं बनाया जाता, तब तक विकसित भारत अपने वादे को पूरा करने में विफल रहेगा। भू राजनीतिक बदलाव की बात करें तो वैश्विक सहयोग के भविष्य की पुनर्कल्पना, हमारी पीढ़ी को जो दुनिया विरासत में मिली है वो खंडित है। बहुपक्षीय संस्थाएं अभी भी 1945 की मानसिकता को दर्शाती हैं, ना कि 2045 की। राजनीतिक तनाव के कारण आपूर्ति श्रृंखलाएं लड़खड़ा रही हैं, संघर्ष छिड़ रहे हैं, जिससे भविष्य अनिश्चितता में डूब रहा है। फिर भी युवा भारतीय मूकदर्शक बने रहने से इनकार कर रहे हैं। विकसित भारत को वैश्विक स्तर पर बदलाव लाने के लिए भारत को सहयोग के एक नए व्याकरण का नेतृत्व करना होगा जो युवा देशों पर केंद्रित हो और ये सुनिश्चित करे कि युवाओं को वैश्विक मंच पर स्थान मिले। दूर दृष्टि से क्रियान्वयन तक त्वरित सफलताएं और महत्वाकांक्षी लक्ष्य, यदि विकसित भारत को साकार करना है तो दूरदर्शिता को तत्काल कार्यवाही में बदलना होगा, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां युवा भारतीय रहते हैं, सीखते हैं और नेतृत्व करते हैं। हमारे द्वारा प्रस्तावित मार्ग ठोस कदम है, कुछ त्वरित सफलताएं जिन्हें मौजूदा नीतियों के आधार पर मौजूदा ढांचे में समाहित किया जा सकता है, जबकि अन्य साहसिक लक्ष्य हैं
जिनके लिए नए संस्थानों और दूरदर्शिता की आवश्यकता होगी, जिनमें समय लगेगा, लेकिन विकसित भारत की निरंतरता के लिए ये आवश्यक है। ये सभी मिलकर भारत की शताब्दी यात्रा के लिए एक अंतर पीढ़ीगत मार्गदर्शिका का निर्माण करते हैं। तो ये तो बात थी विकसित भारत की ओर जो हम बढ़ रहे हैं उसकी बात, और अब सुनिए ये गीत।

वेलकम टू सज्जनपुर। इस फिल्म का गीत आपने सुना कैलाश खेर की आवाज़ में। गीत लिखा था अशोक मिश्रा ने, संगीतकार थे शांतनु मोइत्रा।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, अब बात करते हैं जीवन की। मनुष्य ने अपनी बौद्धिक क्षमता से मनोविज्ञान विकसित कर मनोरोगों के उपचार की विधि बना ली है, फिर भी मन की वास्तविकता को पहचान पाना आज भी असंभव है। छल प्रपंच तब समझ में आता है जब घटित हो चुका होता है और उसके दुष्परिणाम प्रकट होने लगते हैं। कोई मनुष्य जो बोल रहा है क्यों बोल रहा है, जो कर रहा है क्यों कर रहा है, इसे जानने का कोई विज्ञान अभी तक विकसित नहीं हो पाया। मात्र अनुमान लगाए जाते हैं और पूर्व अनुभवों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, किंतु अनिश्चित कुछ नहीं होता। इससे समाज में सदैव अविश्वास का भाव बना रहता है। मनुष्य अपने मनोभावों को छिपाने में सफल हो जाता है क्योंकि परमात्मा प्रदत्त उसकी बौद्धिक क्षमता अन्य जीवों से उत्कृष्ट है, किंतु ये प्रवृत्ति सदैव घातक सिद्ध हुई है। रावण प्रकांड विद्वान था, किंतु उसने साधु बनकर छल किया जिसे माता सीता भी समझ नहीं पाई। यही छल रावण ही नहीं, उसकी संपूर्ण लंका के विनाश का कारण बन गया। रावण अपनी विद्वता का सदुपयोग नहीं कर सका। परमात्मा ने मनुष्य को जो भी दिया है उसके हित और उसके माध्यम से मानव समाज के कल्याण हेतु ही दिया है। छल कपट में ना तो मनुष्य का हित निहित है और ना समाज का। परमात्मा ने मनुष्य के लिए जो निर्धारित किया वो उसे प्राप्त होना ही है। छल बल से कुछ प्राप्त करने का प्रयास परमात्मा के विधान का अपमान और चुनौती है। हो सकता है कि समाज से छल छिपा रहे, किंतु परमात्मा से नहीं छिपाया जा सकता। हो सकता है छल करने वाला बचा रहे, किंतु अगले किसी जन्म में दंड भोगना ही है। विकारों के अधीन पाप तो तन ने किए, तन का नाश हो गया, विकार भाग खड़े हुए, जीवात्मा अकेला रह जाता है, उत्तरदायी वही ठहराया जाता है। मनुष्य स्वयं अर्थात अपने आत्म तत्व को पहचाने और परमात्मा पर विश्वास करे तो छल बल के प्रपंच से दूर हो आनंदित रह सकेगा।

0: श्रोताओ, अभी आपने ये गीत सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार थे साहिर लुधियानवी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म थी इज्जत।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओ, अब बात करें अगर पर्यावरण की, तो पर्यावरण संरक्षण भारत के लिए कोई नया विषय नहीं है। यह हमारी परंपरा और जीवन पद्धति का हिस्सा रहा है। इसका प्रमाण हमारी धार्मिक गतिविधियों, परंपराओं, रीति रिवाजों और दैनिक जीवन के व्यवहार में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति पृथ्वी को केवल भौतिक संसाधन नहीं मानती, बल्कि उसे माँ के रूप में पूजती है। जंगल, वन्य जीव, वन देवता और प्रकृति के विभिन्न स्वरूप हमारी प्राचीन सभ्यताओं तथा धार्मिक मान्यताओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन मान्यताओं के कारण अनेक पौधों और पशु पक्षियों को धार्मिक आस्था से जोड़कर संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। जैसे पीपल, नीम, केला या अन्य अनेक वृक्षों को पूजनीय माना गया है। प्राचीन काल से ही ऐसे वृक्ष मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर लगाए जाते रहे हैं। इसी प्रकार अनेक पशु पक्षियों को भी धार्मिक मान्यताओं के कारण विशेष सम्मान प्राप्त है। अधिकांश हिंदू देवी देवताओं को किसी न किसी पशु या पक्षी के साथ दर्शाया गया है। ये मानव और प्रकृति के गहरे संबंध को भी व्यक्त करते हैं। ये सब दर्शाता है कि जंगल, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि जैसे प्राकृतिक तत्व हमारी सभ्यता, संस्कृति और जीवन दर्शन का अभिन्न अंग रहे हैं। भारतीय पर्यावरण संरक्षण का दृष्टिकोण केवल व्यवहार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। यही परंपरा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत को विश्व के अन्य देशों से अलग पहचान प्रदान करती है और प्रकृति के साथ हमारी एक टिकाऊ और संतुलित संबंध स्थापित करती है। ये भावना लोगों के संस्कारों और जीवन शैली में रची बसी है, जिसे वे पीढ़ी दर पीढ़ी निभाते चले आ रहे हैं। हम इसके प्रति अनादिकाल से ही पर्यावरण के प्रति सजग रहे और आज भी जरूरत है कि हम इसको बनाए रखें।
6: मैं चाहूंगा कि वह अपने

अभी आपने ये चौपाइयाँ सुनी। फिल्म थी दुल्हन वही जो पिया मन भाए, आवाज़ हेमलता और साथियों की थी और संगीतकार थे रविंद्र जैन। श्रोताओं, अब चलते चलते आपको सुनवाते हैं मन्नाडे और साथियों की आवाज़ में आनंद बख्शी के बोल। धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, फिल्म है अनुरोध।

0: मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात। दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित कर रहे हैं।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखे

0: करते थे, वहाँ पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
3: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
2: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
4: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूट से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
5: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
6: With Nepal, we have an expansive agenda.
7: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
6: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
9: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
8: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
10: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
11: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
2: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ता

0: पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
0: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमेरिका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

पकड़कर उस जगह को पूरा कर दे और पास आकर धीरे से कहे, सुनो घबराना मत, किसी भी परिस्थिति में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और वो कौन है? वो हमारा ईश्वर है।

दोस्तों, जब जीवन बिखरता है तो अक्सर ऐसा लगता है कि जमीन भी हमारे पैरों से खिसक गई है। पर दोस्तों, सच्चाई यह है कि धरती कभी साथ नहीं छोड़ती। हमारा संतुलन डगमगाता है। हमारे भीतर एक मौन शक्ति है जो हर गिरावट के बाद उठने में हमारी मदद करती है। यह शक्ति उसी समय जागती है जब हम खुद को यह अनुमति देते हैं कि अभी आप टूटे हैं और फिर खुद को गढ़ सकते हैं। असफलता कोई अंत नहीं है, असफलता तो असल में हमारी शिक्षक है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा साधना के साथ। दोस्तों, तो अंततः केवल तीन बातें मायने रखती हैं। तुमने कितना प्रेम किया, कितनी कोमलता से जीवन जिया और कितनी गरिमा से उन चीजों को छोड़ दिया जो तुम्हारे लिए नहीं थीं।

दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में सारी अनुकूलताएं होने के बाद भी हम दुखी रहते हैं और भविष्य की इतनी चिंता करते रहते हैं कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। ऐसा सोचते सोचते हमारे रातों की नींदें उड़ जाती हैं। लेकिन दोस्तों, कभी हमने सोचा है कि हो सकता है जिस भविष्य की चिंता हम कर रहे हैं और जो हमें दिन रात चिंतित करती है, शायद उसमें हम रहे ही ना।

दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम उस स्थिति तक जब नहीं पहुंचते हैं तब तक हमें दूसरे की गलती या दूसरे के अनुभव और दूसरे की जो भी बातें हों उनका लाभ हमें मिल नहीं पाता। जिस तरह कि जब तक बेटा खुद पिता नहीं बनता तब तक वह पिता के फैसलों को हमेशा गलत समझता है, अनुभव और जिम्मेदारी की कमी अक्सर नज़रअंदाज कर देती है। समय और परवरिश के साथ ही समझ और कद बढ़ता है, इसलिए अपने बड़े बुजुर्गों और माता पिता के निर्णयों में छुपी सीख को अपनाना हमारी बुद्धिमत्ता होगी।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। इसका शेष भाग हम आपको सुनवाएंगे इस घंटे की खास खबरों के बाद। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:58 हुए हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल गुजरात के सूरत में 18,800 करोड़ रूपये से अधिक की सड़क, बिजली और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल दिल्ली के शकोर बस्ती डिपो में हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना की प्रगति की समीक्षा की, आधुनिक रखरखाव सुविधाओं का निरीक्षण। इसके बाद उन्होंने गुरुग्राम रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल में कहा कि किसान लोन डिफॉल्टर ना हो, इसके लिए सहकारी सोसायटियों की निर्धारित अवधि 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई किया गया। श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में दशकों बाद दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराकल की मौजूदगी कैमरे में ट्रैप हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि कुनो में समृद्ध हो रही जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों का प्रमाण है। इंदौर में आज भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश फोरम की बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इस फोरम में 15 देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। और प्रदेश में मॉनसून से पहले ही प्री मॉनसून जमकर बरस रहा है। बीते 24 घंटों में 20 से अधिक जिलों में तेज बारिश के साथ आंधी हुई है। आज भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आकाशवाणी भोपाल से। मीडिया में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजे है, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार। इसमें श्रोता आपको सुनवा रहे हैं बुंदेली लोकगीत, कलाकार हैं मुन्ना लाल।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं अमित कुमार सिंह।
2: बस्ती के आकाश गुप्ता आज मेरे साथ हैं। इन्होंने अपने सात साथियों के साथ जो कर दिखाया उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इनके नाम और इनके कार्यों की चर्चा करके आज इनको पूरे विश्व के पटल पे स्थापित किया, जिसकी प्रशंसा बस्ती ही नहीं पूरे देश में की जा रही है। आकाश गुप्ता जी जो बस्ती जनपद के लजघटा गाँव के निवासी है और ये छात्र है, इनके साथ जितने भी लोग उस अभियान में लगे हुए हैं

0: भी किसी न किसी विद्यालय में 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं के छात्र हैं। आकाश गुप्ता जी, आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मनोरमा नदी सफाई अभियान को कब आपने शुरू किया और कहां से प्रेरणा मिली आपको?
1: हमने अपनी मनोरमा नदी की सफाई का अभियान 67 दिन पहले शुरू किया। जब हमने ये शुरू किया तो हमारी नदी इतनी गंदी थी कि उसमें कचड़ा और उसके बाद ढेर सारी पूजा की सामग्रियां उसमें पड़ी हुई। किसी के यहाँ पे कार्यक्रम होता था तो वे लोग आकर अपना जो भी बाद का सामान होता था उसमें लाके नदी में फेंक देते थे, जिस वजह से हमारी नदी का स्थिति ऐसा हो गया था कि उसमें कोई भी जानवर पानी पीता नहीं था, क्योंकि उसकी हालात ही ऐसी थी और कोई भी आदमी उस वहां पर नहाता भी नहीं था। तो हमने सोचा कि आज से 10 साल पहले जब हमारी नदी इतनी साफ थी, जहां पर सब लोग नहाते थे, जानवर पानी पीते थे, आखिर आज के टाइम पे वो हाल क्यों नहीं है? तो हम लोगों ने सोचा कि अगर ये हमारी नदी है तो इसे साफ करने का कर्तव्य भी हमारा है। तो हम लोगों ने 6 से 7 लोगों की टीम बनाई और अपनी नदी सफाई का अभियान शुरू किया। पहले दिन हमें नहीं लगा था कि हम लोग इस नदी को इतना आगे साफ कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी नदी का अभियान का सफाई जारी रखा और आज हमारी नदी कुछ ऐसी दिखने लगी है जहां पर जानवर आकर इसमें पानी भी पीते हैं और यहां पर लोग आकर नहाते भी हैं और हमारी बहुत प्रशंसाएं भी करते हैं।
0: आकाश जी, यह अभियान शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि इतने गंदी नदी है, आप कैसे इसको साफ करोगे, या आपका मनोबल भी एक बार कमजोर हुआ होगा कि मैं जो है कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। भाई, ऐसी प्रेरणा आपको आई कहां से और गांव के लोगों का क्या सहयोग और सपोर्ट रहा आपके साथ?
1: जब हम लोगों ने ये कार्य स्टार्ट किया था तो हमारे गांव के जो लोग थे उन्होंने कहा ये साफ तुम लोग नहीं कर पाएगे क्योंकि ये नदी बहुत गंदी है, इसको साफ करने के लिए सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा ही साफ करेंगे लेकिन हर एक दिन काम करेंगे। और हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना हम लोग नदी अपना साफ कर लेंगे और लोगों का भी सपोर्ट नहीं रहता था, क्योंकि गांव का कोई भी हमें सपोर्ट करने नहीं आता था, कोई भी नहीं कहने आता था कि हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे और तुम्हारी मदद करके नदी की सफाई को आगे जारी रखेंगे।
0: आप जब उस समय नदी की स्थिति या उसकी हालात देखे तो कैसा लगा?
1: पहले के टाइम पे नदी की स्थिति बहुत ही खराब थी, तो हम लोग आते थे बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे हम सभी लोग, तो हम सोचते थे कि अगर हमारी नदी इतनी गंदी, हम लोग आकर यहाँ बैठते हैं, यहाँ बदबू आ रही है, तो इसको साफ करके हम लोग यहाँ पर सुकून से बैठेंगे। तो हम लोगों ने इसकी सफाई का काम शुरू किया और इसको साफ किया।
0: करीब 2 महीने चले इस अभियान में, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या मिली?
1: सबसे बड़ी चुनौती ये रही हमारी नदी में कि हम लोगों ने इसको साफ पूरा किया, 30 से 40 दिन तक हमने इसको लगातार साफ किया, लेकिन फिर 10 दिनों के अंदर इसके अंदर काइया जमा होने लगी और वो काइया धीरे धीरे सड़ने लगी और जिससे बहुत ज्यादा समस्या हमें होने लगी। फिर उसको साफ किया हम लोगों ने और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे कि आकर वो पूजा की सामग्रियां वापस में डाल रहे थे। उसके बाद इसके अंदर से बहुत सारी कांच की बोतल्स और वो भी टूटे फूटे हालात में मिले। बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स का हाथ कट गया, पैर कट गया और यही सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि लोग आते हैं, कचरा फेंक जाते हैं, उसके बाद सहयोग भी नहीं करते, उसको साफ भी नहीं करते।
0: इस अभियान में गाँव के लोग और भी लोगों का क्या सहयोग रहा?
1: गाँव के लोग आते थे, हमें कहते थे कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक कोई भी गाँव वाला हमारे साथ नदी में नहीं है। अब आप सोच सकते हैं, कहने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। अगर आप हमारे साथ में चलकर नदी की सफाई करते हैं तब तो हम मानेंगे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम साथी लोग जब से शुरू किए हैं तब से अभी तक काम कर रहे हैं।
0: क्या इस अभियान में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का कोई सहयोग आपके साथ रहा?
1: हमने एक वीडियो बनाई थी योगी जी को लेकर कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया, जिस वजह से हमारी एक दिन में वीडियोस 1 करोड़ लोगों ने देख लिया और योगी जी ने उसको वीडियो देखा भी। और योगी जी से पहले मोदी जी ने मन की बात में हमारी जिक्र किया कि मैं और मेरे 7 लोगों की टीम ने मिलकर अपनी मनोरमा नदी की सफाई का पहल किया है।
0: सफाई अभियान के बाद अब तक मनोरमा नदी को आप देखते हैं तो क्या लगता है?
1: सफाई के बाद मनोरमा नदी हमारी इतनी साफ लगती है कि ये तो एक जैसे लगता है कि चमत्कार टाइप का, लेकिन ये चमत्कार नहीं, ये हमारी 67 से 68 दिनों की मेहनत है जो कि हमने लगातार की है।
0: आपको अभी क्या लगता है, इसमें और कुछ करने की जरूरत है?
1: जी, अभी हमारा काम तो जारी रहेगा जब तक कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी का पूरा गांव का हिस्सा जब तक साफ नहीं कर लेते तब तक तो हमारा काम जारी रहेगा, उसके आगे भी सोचेंगे। लेकिन हम चाहेंगे इसमें हमारी सरकार भी मदद करे, क्योंकि हम कुछ युवाओं के बस का ये पूरा नदी साफ करना नहीं है।
0: जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में आपका नाम लिए तो आपको कैसा महसूस हुआ?
1: हम लोग उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक छोटे से गांव लजघटा में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक पटल पे हम लोगों की बात की, हमारे नाम का जिक्र किया, हमारी टीम का जिक्र किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारी सफाई का अभियान भी अब लोग देख रहे हैं।
0: इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा सराहना मिलने के बाद आप पर, आपकी टीम पर क्या प्रभाव पड़ा? ऐसा भी आपको लगता है कि ये जिम्मेदारियां और बढ़ गई?
1: हाँ, जिम्मेदारियां बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अब जो हम लोग सफाई का काम करते थे 2 से 3 घंटा, अब हम लोगों ने ट्राई किया कि उसको और बढ़ाने का, और हम लोग अब धीरे धीरे और नदी को और आगे बढ़ते हुए साफ कर रहे हैं। और लक्ष्य तो यही है कि जितना हो सके हम लोग नदी को

0: साफ रखे जिससे कि जानवरों को और आम आदमी को परेशानी ना हो।
1: आज देश में पर्यावरण संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर काम करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: हम यही कहना चाहेंगे जो भी नेचर ने हमें दिया है वैसे ही हमको उसको संतुलित रखना है, चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे नहर हो, चाहे झरना हो। आप लोग उसको ऐसे सुरक्षित रखिए कि उसमें गंदगी ना फैले, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे तकलीफ ना हो।
1: आकाश जी, आपने जिस तरह से साबित किया कि बदलाव के लिए बड़े पद या बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं बल्कि इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यह कहानी अपने गांव, शहर, पर्यावरण के लिए कुछ सकारात्मक करने की प्रेरणा देगी।
0: अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको बड़ी मशीन या फिर कोई बड़े यंत्र की जरूरत नहीं है। आप अपने हाथों से पहले ट्राई कीजिए उसको साफ करने का। जब आप अपने हाथों से साफ करेंगे थोड़ा बहुत हिस्सा साफ होगा, फिर आपका मन करेगा कुछ और ट्राई किया जाए। धीरे धीरे आप लोग और आगे तक सफाई करें। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ हाथ और पैर थे, हम लोगों ने उसी से स्टार्ट किया है। उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया उसमें नाव बनाने का, जिसमें हम लोग थोड़ा नाव बना भी गए थे लेकिन बीच में टूट गया। ऐसे ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को ट्राई किया, तब जाके हमारी नदी इतनी साफ हो पाई। क्योंकि आप लोग जब किसी चीज को स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे उसकी आगे की रास्ताएं खुलते जाएंगी।
1: क्या ये आपको उपकरण से जिसकी चर्चा मन की बात में मोदी जी ने किया, ये युवा जो है पर्यावरण या जल संरक्षण को लेकर के जागरूक है, इनके पास फावड़ा और जाल और ये ग्लव्स लेकर के ये नदी के सफाई अभियान को कर रहे हैं, क्या इस सफाई अभियान में आपको किसी ने कोई किसी तरह का सहयोग किया उसमें?
0: हम लोग जब वीडियो डालते गए उसके बाद लोगों ने इतना सपोर्ट किया, हमने उसमें अपना QR डाला जिसमें लोगों ने काफी सपोर्ट दिया, जिससे हम लोगों ने बूट्स मंगाए, ग्लव्स मंगाए और बहुत सारी चीजों को मंगाए। और बहुत सारे लोग हमारे एड्रेस पे कुछ सामान भी भेज देते हैं जिससे हमारी मदद हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा काम चलता रहा।
1: आपने कहा कि जब से हमने इस अभियान को शुरू किया तब से हम लोगों ने YouTube, Instagram और Facebook के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़ा और इस अभियान को और सफल बनाने के लिए, नदी के सफाई के लिए हमने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े। कितने लोग इससे प्रेरित हुए?
0: जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे तो 0 फॉलोअर थे, लेकिन अभी के टाइम पे अगर बात की जाए तो हमारे इंस्टाग्राम पे 63,000 फॉलोअर हो चुके हैं, फेसबुक पे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और यूट्यूब पे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट हमारे साथ रहा, लोगों ने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया जिससे हम लोग आज इतना ज्यादा सफल हो पाए।
1: आप जिस तरह यह कार्य करके साबित किए बदलाव के लिए बड़े इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। आकाश जी, इसके बाद आपका क्या मिशन होगा?
0: अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम लोग नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बरसात का मौसम आने वाला है तो नदी का पानी काफी ज्यादा रहेगा जिसके अंदर हल्के उसको सफाई नहीं की जा सकेगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे नदी के किनारे का जितना भी फील्ड है उसको हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, जितना हो सके पीपल, बरगद, पाकड़, जामुन ये सब पेड़ बैठाएंगे।
1: इंस्टाग्राम और फेसबुक के तहत लोगों को जोड़ करके क्या लगता है आपको कि क्या इससे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, क्या इससे आगे और भी आपको काम करने के लिए और भी लोगों का साथ मिलेगा?
0: निश्चित सी बात है सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा और जब तक ये नदी सफाई नहीं होगी पूरी तब तक ये काम चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वृक्षारोपण भी होगा, हमारी नदी का अभी घाट भी बनना है, हमारी नदी पर अभी जहाँ बरगद का पेड़ है वहाँ चबूतरा भी बनना है और जब तक ये बन नहीं जाएगा तब तक ये कार्य चलता रहेगा। जब हमने इसको पहले दिन से स्टार्ट किया था तब से लेकर अभी तक हमें काफी ज्यादा लोग जाने लगे हैं, जैसे कि अभी विधायक जी ने कल परसों में आकर हमारे साथ मिलकर नदी की सफाई किया, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि अब ये अभियान जो है हमारा बहुत आगे तक जाने वाला है और साफ सफाई का काम तो चलता रहेगा।
1: समाज में कुछ नया करने का आपने एक प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे अमित कुमार सिंह। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। श्रोताओं अब सुनिए मुन्ना लाल का गाया ये बुंदेली लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। नौ बजकर 30 मिनट हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। कलाकार हैं पंकज दास।
1: कृषि विश्वविद्यालय से खेतों तक कार्यक्रम के अंतर्गत सूर्यमुखी की

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंकज दास की गई गजलें। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी। इसे आकाशवाणी भोपाल से हम रिले कर रहे हैं।
1: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। यह आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है खरगोन जिले की चिट्ठी। आलेख आशुतोष पुरोहित, वाचन स्वर दीपा सिंह। खरगोन जिला इन दिनों विकास, नवाचार और जन कल्याण के कई नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसकी झलक उस समय देखने को मिली जब जलूद में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 271 करोड़ रुपए की लागत से बने 60 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण किया। ग्रीन बॉन्ड और जन भागीदारी मॉडल से तैयार ये देश का पहला सोलर प्लांट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद मुख्यमंत्री महेश्वर पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने लोकमाता अहिल्या देवी होलकर की जन्म त्रिशताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित गोदा से नर्मदा जल यात्रा के समापन समारोह में शिरकत की। विकास योजनाओं के साथ मुख्यमंत्री ने किसानों की चिंता को भी प्राथमिकता दी। मंडलेश्वर क्षेत्र के कतर गांव में उन्होंने गेहूं उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। किसानों से सीधा संवाद कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिले में विकास कार्यों की इसी गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रभारी मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक विभिन्न विभागों की योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, जनजातीय क्षेत्रों के विकास

और किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। वहीं दूसरी ओर खरगोन ने जल संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जलगंगा संवर्धन अभियान में जिले ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जिले में 7188 जल संरचना कार्य किए गए हैं, जिनसे लगभग 617 करोड़ लीटर वर्षा का जल संग्रहण की संभावना बनी है। कलेक्टर भव्या मित्तल ने इसे प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की साझा भागीदारी का परिणाम बताया है। जल संरक्षण के अलावा भारत सरकार के नीति आयोग के दिसंबर डेल्टा रैंकिंग में झिरन्या विकासखंड ने मध्य भारत जोन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। शिक्षा और तकनीक की बात करें तो खरगोन यहां भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। झिरन्या के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में स्थापित अत्याधुनिक स्पेस लैब का लोकार्पण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस स्पेस लैब से जनजातीय विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान, रोबोटिक्स और आधुनिक तकनीकों का व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा। नवाचार की यही सोच अब पर्यावरण संरक्षण में भी दिखाई दे रही है। खरगोन नगर पालिका ने मंदिरों से निकलने वाले फूलों के कचरों से अगरबत्ती बनाने की अनूठी पहल शुरू की है। प्रतिदिन एकत्र किए जाने वाले फूलों से तैयार अगरबत्ती को कुंदा नाम दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण के इसी संकल्प के साथ विश्व पर्यावरण दिवस पर जिले भर में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मेहरजा स्थित निधिवन परिसर में पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर जिले में मनरेगा के माध्यम से 3 लाख से अधिक पौधों का हरे क्षेत्र विकसित करने का संकल्प लिया गया। आबाद खेती की आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए जिले में कृषि रथ अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए प्रशासन ने किसानों के लिए पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई है। जिले में यूरिया, डीएपी, एनपीके, पोटाश और एसएसपी उर्वरकों का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित किया गया है। साथ ही ई विकास पोर्टल के माध्यम से खाद बुकिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। ग्रामीण विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कलेक्टर भव्या मित्तल लगातार समीक्षा कर रही हैं। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और पेयजल योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने समय सीमा और गुणवत्ता के साथ कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। प्रशासन की सक्रियता मत्स्य पालकों तक भी पहुंच रही है। जिले में रात्रि मछुआ चौपाल की अभिनव पहल शुरू की गई है। ग्राम दिचला में आयोजित चौपाल में मत्स्य पालकों को केज कल्चर बीमा योजना और मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति की जानकारी दी गई। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज खरगोन में आयोजित युवा संगम रोजगार मेले में 174 युवाओं का प्राथमिक चयन हुआ। इस दौरान युवाओं को स्वरोजगार और प्रशिक्षण योजनाओं की जानकारी भी दी गई। वहीं जिले की सांस्कृतिक धरोहर को भी नई ऊर्जा मिल रही है। देवी अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर में नगर गौरव दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कलेक्टर ने महेश्वर, मंडलेश्वर, कसरावद और पड़वा सहित नर्मदा नदी के घाटों पर बिना सुरक्षा मानकों के नाव संचालन और वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे खरगोन जिले की चिट्ठी, आलेख आशुतोष पुरोहित का, वाचिका दीपा सिंह। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा था।
1: मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है वंदे मातरम गौरव गान की डेढ़ सदी।

श्रोताओं, किसी भी राष्ट्र की पहचान उसके प्रतीकों, उसकी मिट्टी की सुगंध और उसकी जनता के सामूहिक संकल्प से होती है। भारत के संदर्भ में इन तीनों का अनूठा संगम वंदे मातरम गीत में दिखाई देता है। आज इस कालजयी रचना को 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 7 नवंबर 1875 को रचित ये गीत महज कुछ शब्दों का समूह नहीं, बल्कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम की आत्मा और कोटि कोटि भारतीयों की वैचारिक ऊर्जा का स्रोत है। इसने गुलामी की जंजीरों में जकड़े देश को जगाने और उसमें राष्ट्रवाद का रक्त फूंकने का ऐतिहासिक कार्य किया है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश हुकूमत भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान को कुचलने का प्रयास कर रही थी, जब सरकारी समारोहों में

God save the king. ब्रिटिश राष्ट्रगान गाना अनिवार्य किया गया। तब प्रख्यात साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का स्वाभिमान जाग उठा। इसके प्रति शोध और मातृभूमि के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने के लिए उन्होंने 7 नवंबर 1875 को वंदे मातरम की रचना की। यह गीत संस्कृत और बांग्ला भाषा के खूबसूरत समन्वय से बना है। शुरुआत में इसे साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में स्थान मिला, लेकिन इसे व्यापक पहचान साल 1882 में मिली जब बंकिम बाबू ने इसे अपने कालजयी सार्वजनिक उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। उपन्यास में सन्यासी विद्रोह के माध्यम से देश को आज़ाद कराने का जो ताना बाना बुना गया था, ये गीत उसका केंद्रीय मंत्र बना। वंदे मातरम के 150 वर्षों का इतिहास भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के उतार चढ़ाव का जीवंत दस्तावेज है। इस गीत ने हर दौर में क्रांतिकारियों और राजनीतिक नेतृत्व को दिशा दी। प्रथम राजनीतिक स्वर की बात करें तो साल 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इस गीत को अपनी जादुई आवाज़ और धुन देकर सार्वजनिक रूप से गाया। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन बंग भंग के विरोध में पूरा देश सड़क पर आ गया। कलकत्ता के टाउन हॉल से लेकर गंगा के घाटों तक लाखों लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी और वंदे मातरम को अपना मुख्य नारा बनाया। इस गीत की ताकत से ब्रिटिश हुकूमत इस कदर खौफ जदा थी कि उसने इसे सार्वजनिक रूप से गाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। साल 1906 के बारिशाल, वर्तमान बांग्लादेश जो है, उसके शांतिपूर्ण राजनीतिक जुलूस पर सिर्फ इसलिए बर्बर लाठी चार्ज किया गया क्योंकि वहाँ वंदे मातरम के नारे लग रहे थे। अंग्रेज़ों ने इस नारे को राजद्रोह घोषित कर दिया, लेकिन दमन चक्र जितना तेज़ हुआ, भारतीय जनता की आवाज़ उतनी ही बुलंद होती गई। स्कूल कॉलेजों के छात्रों ने जुर्माने और निष्कासन की परवाह किए बिना इस गीत को अपनी पहचान बना लिया।

मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 10:10 होने वाले हैं। विश्व दर्पण हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं।

आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ प्रत्यक्ष वार्ता का प्रस्ताव ठुकराया। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने और अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से। भारत ने कहा, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, आवागमन, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उन्होंने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत नेपाल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष

0: इस साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
1: With Nepal, we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: Partnership that we have with Nepal.
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर मामले में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वत नेनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
3: I'd like to remind Pakistan that being a member of the
4: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत इन लोगों की राष्ट्रीयता की पुष्टि के लिए बांग्लादेश से सहयोग लेता रहा है और उसके बाद ही वापस भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। उन्होंने बताया कि इनमें से कई अनुरोध अभी बांग्लादेश के पास लंबित हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि रूस और भारत के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंध मजबूत हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक रही।
1: The negotiating team which came from
2: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: ट्रेड अग्रीमेंट फॉरवर्ड।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ प्रत्यक्ष वार्ता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसी बैठक का कोई औचित्य नहीं है। श्री पुतिन ने ये टिप्पणी कल सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के प्रमुख आर्थिक मंच के दौरान कही। एक दिन पहले श्री जेलेंस्की ने युद्ध समाप्त करने के लिए खुले पत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष वार्ता का आह्वान किया था। श्री पुतिन ने कहा कि जेलेंस्की का पत्र उन्हें गंभीर नहीं लगा। इसके जवाब में जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन द्वारा उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करने से पता चलता है कि रूस की युद्ध समाप्त करने की इच्छा नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा व्यक्त की है। भारत वर्तमान में स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस बीच श्री पुतिन ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि वैश्विक सॉफ्टवेयर बाजार में भारत की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। अमेरिका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिका के अनुसार क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। अमेरिकी सेना ने गोरुक और केश्म द्वीप स्थित रडार केंद्रों को निशाना बनाया। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकू ही शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
5: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
0: अमेरिका ने ब्रिटेन, डेनमार्क और कुवैत को लगभग $3 अरब के संभावित सैन्य उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने ये जानकारी दी है। सबसे बड़ा रक्षा सौदा कुवैत के साथ किया गया है। इसके अंतर्गत कुवैत को लगभग $1.98 अरब की लागत से ड्रोन रोधी प्रणालियां और संबंधित उपकरण खरीदने की अनुमति दी गई है। वहीं डेनमार्क को लगभग $84.20 करोड़ की लागत से 200 लंबी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें और संबंधित उपकरण खरीदने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा ब्रिटेन को लगभग $16 करोड़ की लागत से बड़े विमानों की सुरक्षा के लिए इंफ्रारेड प्रतिरोधक प्रणाली और संबंधित उपकरण खरीदने की अनुमति दी गई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विसेंट कीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। प्रज्ञानानंद ने 18 अंक के साथ खिताब अपने नाम किया। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। जापान के काका मिगाहारा में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से और जापान ने मलेशिया को 8-3 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ प्रत्यक्ष वार्ता का प्रस्ताव ठुकराया। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। और अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: मीडियम व्यापार आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 10:20 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सारंगा। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं किशोर कुमार के गए इस गीत से। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन। फिल्म है कटी पतंग। सुनना चाहते हैं गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या करिश्मा कामले। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका वर्मा, किशोर कुमार, दीपक, जावेंद्र वर्मा। राजपुर से घिस्सु दिलवारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली भगवान, पुष्पा नेहा, एकता, स्मिता, सौरभ कुणाल। सदर जबलपुर से लखन राही, लक्ष्मी राही, अंकिता राही, सिद्धार्थ राही और सृष्टि राही।

अब सुनिए फिल्म श्री 420 का ये नगमा। गायक है मन्ना डे और साथी, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जय किशन। सुनना चाहते हैं चांदनी चौक, गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र, खुशी, रौनक सेन, बरगी नगर जबलपुर से रविंद्र गदरे, सुभाष गदरे, दिगंबर गदरे, राजेश गदरे, शिवम, शुभांग, सृष्टि गदरे, बिलहरी बड़खेरा कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, शारदा सिंह, सपना, सत्यम सिंह, शिवम, सौरभ सिंह, सृष्टि, मेघा, शिखा, राखी, अन्नू और उनके अब्बू।

अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म सेहरा का ये गीत, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार रामलाल। इस गीत को पसंद किया है सर्रई तहसील केवलारी सिवनी से कमला प्रसाद शर्मा, संजय जैन ग्राम लोहारी खंडवा से, राजेश कुमार धनजे, राहुल विशाल, शीला गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से, विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा नीति।

वैद्य। छत्तीसगढ़ बेमेतरा से पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती भव्या, सुषमा सारथी। नेपाल पैलेस सगर से तिलक राणा, मीना, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में सुनिए ये गीत। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार राजेश रोशन, फिल्म है मिस्टर नटवर।

استغلال. इस गीत को सुनना चाहते हैं कमर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना आदित्य शिवानी, मीनू राज श्रीमाली, बाटापारा दत्तरंगी से दीपक कुमार, जावेंद्र किशोर कुमार, गांधी चौक रोपण पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयते विरक, मीका विरक, बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी प्रांजल, गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति, नवनीत राय।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म संजोग का ये गीत। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत मदन मोहन का है, पसंद आप सबकी। ग्राम पंचायत बठैना से बल कर्ण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, सारा गांव चटौदा से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी कृत वर्मा, कुंदनगर खरगोन से ध्रुवा सोनावड़े, सुनीता सोनावड़े, खुशी प्रियांश, आशीष पूनम, कृष्णा शुभम सोनावड़े, प्रणाम सिटी खंडवा से शिवांश कुमार खंडाले, सुभाष खंडाले, मंदा खंडाले, अंजलि संदीप माधुरी, पिंटू कुमार, जयश्री खंडाले, रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, संजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल विवेक, सपना शिवी सलोनी, राजू चराठे पेंटर, तुलजा भवानी मातावाड़ खंडवा से, अनिल विंचुरकर, मंगला शोभित, उदयनगर से मोहित रत्न पारखी, स्वाति मनस्वी के परिवार के सदस्य।

फिल्म राजकुमार का गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की है, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र, सन्मति पंचोलिया। अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, तारनी ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर। भाटापारा से सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी, लोकेश जोशी। नर्मदा कॉलोनी मंडला से सिया शरण ज्योतिषी, पुष्पा ज्योतिषी, गोल्डी, लक्की, रोली, श्वेता और परू।

श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रतन का ये गीत। जोहरा भाई अमालवी और साथियों की आवाज़ में गीत लिखा है DN मधोक ने, संगीत नौशाद का है। फरमाइश आप सबकी, यंग रेडियो लिसनर्स, खोवा मंडी, जवाहरगंज, जबलपुर से जिनेंद्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन, अरुण चौरसिया, पांदरीबा, जबलपुर से राजकुमार नामदेव, अंकित नामदेव, आनंदिता नामदेव, शोभा, राजकुमारी, हर्षिता, पिंकी, नीतू और गौरी नामदेव। इसी गीत को सुनना चाहते हैं जतू का, किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम और उनके परिवार के सदस्य। खपरखेड़ा रायगढ़ से, रायसेन से हमारे श्रोता हैं तुलसी राम साहू, आरती ममता गोमती और उनके परिवार के सदस्य।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम अब समाप्त होता है। सारंगा आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है, अब आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस आकाशवाणी भोपाल से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमन में कल शाम लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की एक श्रृंखला का शुभारंभ किया। इंदौर में आज भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार निवेश फोरम 2026 की बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। प्रदेश में आज मेगा अपार आईडी दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रत्येक विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाई जा रही है। ये आईडी विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में सहायक होगी। सीबीएसई ने 12वीं के अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक आवेदन कर सकेंगे। प्रदेश राज्य वित्त आयोग आज नर्मदापुरम संभाग की समीक्षा करेगा, जिसमें संबंधित जिलों के कलेक्टर्स, नगरपालिका अधिकारी और अन्य अधिकारी उपस्थित रहेंगे। भोपाल के ग्लोबल स्कूल पार्क में 3 दिवसीय साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 400 से अधिक विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। भोपाल के मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आज शाम 6:30 बजे से महुआ महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया जा रहा है। महोत्सव के पहले दिन राजा लोहांगुड़ी नृत्य नाट्य का आयोजन होगा और भारत और अफगानिस्तान के बीच आज क्रिकेट टेस्ट मैच बुलनपुर नई चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आज का कार्यक्रम सुनीता सिंह की प्रस्तुति है।
1: नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, मैं सुनीता सिंह। ये जो बरसता बादल है, ये जो हहराता सागर है, धरती है धरती है, ये जो घनी छांव है, ये जो नदी बहाव है, ये जो असीम ठहराव है, ये जो सुंदर रचाव है, धरती है धरती है। ये जो जल एक दर्पण है, ये जो हवा में सरगम है, ये जो जल में कलकल है, ये जो नभ में हलचल है, धरती है धरती है। ये जो नील गगन में लाली है, ये जो झूमते परिंदों की टोली है, ये जो बागों में कोयल सी बोली है, ये जो शरद में पावन दिवाली है, ये जो वसंत में बहुरंग होली है, धरती है धरती है। तो आज समय की इसी पुकार को सुनते हुए हमने तय किया कि बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आप हमें बताएं कि पर्यावरण प्रदूषण को लेकर आपकी क्या चिंताएं हैं, क्या सोचते हैं आप इस विषय पर, और पर्यावरण बचाने के लिए वो एक छोटा सा संकल्प कौन सा है जिसे आप आज से अपने जीवन में अपनाने का वचन देंगे। बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, अपना परिचय दीजिए।
2: दीदी नमस्ते।
1: नमस्ते।
2: भागचंद्र साहू जी, राजेंद्र नगर।

0: सागरगंज वासुदा जिला विदिशा।
1: भागचंद साहू जी कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया है दीदी, आप ठीक हैं?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं।
0: और मौसम कैसा है भोपाल का फिलहाल? अभी
1: मौसम भी बढ़िया है बादल छा गए हैं तो गर्मी से कुछ निजात है जी। हालांकि बहुत तूफान की वजह से, आंधी पानी की वजह से बहुत पेड़ भी गिरे और बहुत सी बातें हुई, लेकिन मौसम जरूर ठंडा हो गया है। तो भागचंद जी, हम जानना चाहते हैं कि आज के विषय पर आप क्या कहेंगे?
0: दीदी, हम तो ये कहते हैं जैसे ये प्रदूषण हो रहा है गाड़ियों की वजह से हो रहा है, बहुत हानिकारक है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बैटरी वाली गाड़ी है वो चला ज्यादातर, वो जो प्रदूषण करते हैं बहुत हानिकारक है। देखो दिल्ली में क्या माहौल है, प्रदूषण के कारण हालात बहुत गड़बड़ है। हम तो ये कहना चाहते हैं श्रोताओं से कि प्रदूषण ना करें और एक संकल्प जरूर लें कि हमें एक पौधा जरूर लगाना है अपने नाम से।
1: तो भागचंद जी, हमें बहुत अच्छा लगा कि पर्यावरण प्रदूषण को लेकर आपके भीतर एक चिंता है और आपने वायु प्रदूषण की बात की। आप कह रहे हैं कि
0: बहुत बीमारियां चल रही हैं
1: और ये जो वायु प्रदूषण है इससे श्वास संबंधी समस्याएं भी बहुत होती हैं।
0: दूषित होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: ऑक्सीजन तो कहते ही हैं कि भाई प्राणवायु है वो, तो उसका स्वच्छ रहना, साफ रहना जरूरी है। तो आपका संकल्प है कि आप एक पौधा अवश्य लगाएंगे, तो कब लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे या नहीं? सिर्फ पौधा लगाना दायित्व इससे पूरा नहीं होता, है ना, वो पौधा बड़ा भी हो। तो भागचंद साहू जी, हमें बहुत अच्छा लगा कि आज के विषय पर आपने एक सार्थक विचार रखा और अपना संकल्प साझा किया कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आपका संकल्प है कि आप एक पेड़ जरूर लगाएंगे। तो हमारी शुभकामनाएं आपको, आपका संकल्प जरूर पूरा हो और कुछ और लोगों को भी प्रेरित कीजिएगा।
0: बिल्कुल दीदी, बिल्कुल
1: जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भागचंद साहू जी, बहुत आभार कि आपने हमें फोन किया।

0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: हरिशंकर धाकड़ ग्राम आकुर्ती जिला शिवपुरी।
0: हरिशंकर धाकड़ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कितने दिन के बाद आपने फोन किया है?
1: मेरा कॉल तो पहली बार ही लगा है। 4-5 साल से ट्राई कर रहा था लेकिन अभी कॉल लगाया पहली बार मेरा।
0: अरे वाह, मतलब आप हमारे नए श्रोता हैं, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और जानना चाहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर आपके भीतर किस तरह की चिंताएं हैं और आप कौन सा एक संकल्प आज इस मंच पर रखेंगे जिस पर आप अमल भी करेंगे।
1: पर्यावरण के लिए हमको एक तो साफ सफाई रखना चाहिए, प्लास्टिक की थैलियों का यूज नहीं करना चाहिए।
0: क्या करना चाहिए ये तो बहुत से लोगों को मालूम है ना, लेकिन आपका क्या संकल्प है आज के दिन से, आप कौन सा एक संकल्प लेंगे ये हम जानना चाह रहे थे।
1: मेरा संकल्प यही है कि हम एक हर साल नया पौधा लगाएंगे और उसकी सुरक्षा करेंगे, जो कुछ पेड़ काटता है उसे

0: मना करेंगे।
1: बहुत अच्छी बात है जी। और प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करेंगे आप ये कह रहे हैं, कपड़े की थैली का प्रयोग करेंगे?
0: नहीं करेंगे
1: जी। जी तो हरिशंकर धाकड़ जी, आपकी बातें हमारे दूसरे श्रोताओं तक भी पहुंची हैं और मुझे लगता है कि जो आपने महत्वपूर्ण बात कही है वो ये है कि आप स्वयं तो पौधा लगाएंगे ही, वृक्षारोपण करेंगे, उसे बड़ा करेंगे, और जो पेड़ों को नुकसान पहुंचाता है उस पर भी एक निगरानी आपकी होगी, ये बहुत अच्छी बात है। और एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करेंगे। कपड़े के थैले वैसे भी हम पहले प्रयोग में लाते थे, उन्हें दोबारा लाने की आवश्यकता है। मालूम सबको सब है ना, आज के समय में पर्यावरण संरक्षण को लेकर तमाम उपाय सभी लोगों को मालूम है, लेकिन हम उन्हें अमल में नहीं लाते हैं। जी हम अमल में नहीं लाते, इसलिए हमने सोचा कि आज एक संकल्प हमारे श्रोताओं की तरफ से जरूर लिया जाए। तो हरिशंकर धाकड़ जी, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एक प्यारा सा गीत आप तक भेजते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार मैडम। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: पर्वतों के दायरे ये शाम का धुआं

0: बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नाम बताइए।
1: जी नमस्कार बहन जी,
0: कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट हजनर, जिला महोबा उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
0: सुरेश कुमार सैनी जी कैसे हैं?
1: बस एकदम अच्छे हैं।
0: अच्छा,
1: और इस समय अच्छी गर्मी भी बहुत तेज पड़ रही है।
0: बिल्कुल, इस साल तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी और
1: जी।
0: इसी बात से जुड़ती हुई हमारी बात है, आज की हमारा विषय है पर्यावरण प्रदूषण।

0: पर हम बात कर रहे हैं जिसका
1: जी, बहुत अच्छा
0: दुष्परिणाम।
1: विषय रखा आज आपने।
0: जी, क्या कहना चाहेंगे आप?
1: जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि पर्यावरण जो प्रदूषण फैल रहा है वो सब अपने ही द्वारा फैल रहा है, और जो पानी है, पानी की भी बहुत बचत करनी चाहिए, पेड़ भी लगाने चाहिए।
0: जी,
1: और जो जैसे अपन लोग गाड़ी चलाते हैं, तो जैसे अगर बस से भी जा सकते हैं कहीं जाना है, तो ऐसा नहीं अगर अपन जंगल जा रहे हैं तो गाड़ी लेकर के जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात
1: जी
0: आपने कही है कि आप सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे।
1: जी,
0: ये
1: जी
0: एक बहुत अच्छा संकल्प है और ये सभी को करना चाहिए। सुरेश कुमार सैनी जी, हमें अच्छा लगा कि पानी को लेकर आपकी चिंता है, और इस
1: जी
0: बार जो गर्मी पड़ी है, मुझे लगता है कि पर्यावरण प्रदूषण की बात इस गर्मी ने जन जन तक पहुंचाई है ना?
1: जी बिल्कुल। देखिए, कभी बारिश हो जाती है अचानक, बेमौसम बारिश हो जाती है,
0: जी
1: ये सब पर्यावरण मतलब उसी का असर है।
0: बिल्कुल, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं सूखा
1: जी
0: है,
1: जी
0: फिर ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है
1: हाँ
0: कि जो ग्लेशियर हैं वो पीने के पानी के प्राकृतिक स्रोत हैं, है ना? तो
1: वो
0: वो
1: भी घटते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, वो अगर पिघल रहे हैं तो ये एक बहुत चिंता की बात है। तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हर मनुष्य को, हर इंसान को कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये हम सबके जीवन से जुड़ी बात है ना? और मैं ये महसूस करती हूँ कि पर्यावरण संरक्षण पर बातें बहुत होती हैं, लेकिन कार्य रूप में बहुत कम लोग इसमें सक्रिय हो
1: जी
0: पाते हैं।
1: बिल्कुल, बातें तो बहुत होती हैं, बातें बहुत लोग करते हैं लेकिन करते नहीं हैं।
0: तो आप बताएं कि आप क्या करेंगे इस दिशा में?
1: जी, हमारा तो हर वर्ष का यही संकल्प रहता है कि हम 2-4 पेड़ हर वर्ष लगाते हैं।
0: तो आप
1: बारिश के महीने में अभी गड्ढे खोद कर डाल दीजिए,
0: तो
1: और जो खेतों के किनारे मेड़ और जो मलाई रहती है
0: जी
1: उसी
0: जी
1: के पे लगाते हैं।
0: जी आप पेड़ लगाते हैं, उन पेड़ों को बड़ा करने का दायित्व भी निभाते हैं, और
1: जी
0: आपने
1: जी
0: पानी की बचत की बात की, जो कि बहुत आवश्यक बात है।
1: जी
0: कोई भी संसाधन जो आपको दिया गया है, अगर उसका आप बहुत बेफिक्री से उपयोग करते हैं, तो फिर
1: जी
0: वो कम पड़ ही जाता है ना?
1: जी
0: इसलिए
1: जी
0: आवश्यक है
1: बिल्कुल
0: कि हर चीज़ को ज़रूरत के हिसाब से हम उपयोग में लाएं।
1: जी बिल्कुल। कुछ लोग क्या है कि जो नल सप्लाई आती है, तो भी मैंने भी देखा है अपने यहाँ, तो पानी भर जाता है, पानी भरने के बाद खुली छोड़ देते हैं
0: बिल्कुल,
1: टोटी, उसको बंद नहीं करते हैं।
0: बंद नहीं करते हैं। जो
1: जी
0: ब्रश करते हैं, जब तक ब्रश करते हैं तब तक नल चलता रहता है, वो भी पानी
1: चलता
0: बर्बाद
1: रहता
0: होता है ना?
1: किसी किसी की तो कहो पैडे गाड़ी धुलती है
0: और
1: किसी की
0: जो
1: तो।
0: घरों में हम पानी का उपयोग करते हैं सब्जियां धोने में, या जो अपने रसोई घर में जो पानी बच जाता है,
1: जी,
0: उसका उपयोग
1: तो
0: हम
1: उनको
0: अपने,
1: पेड़ों में डाल देना
0: हाँ,
1: चाहिए।
0: बगीचे में कर सकते हैं, पेड़ों में डाल
1: जी जी
0: सकते
1: जी
0: हैं। तो इस तरह से बहुत से ऐसे प्रयास हैं जो किए जा सकते हैं, और
1: बिल्कुल
0: हर इंसान जब इसमें शामिल होगा तभी पर्यावरण संरक्षण की बात सार्थक हो सकेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो सुरेश जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें
1: ओ
0: फोन किया।
1: नमस्कार बहन।
0: नमस्कार।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने अगले श्रोता का। अपना परिचय दीजिए।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, नाम बता दीजिए।
1: विकास आर्य, प्रयागराज से।
0: विकास जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका हम। कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज के विषय पर आप क्या कहेंगे?
1: आज के विषय पर हम यही कहना चाहेंगे मैम, जो आज के प्रदूषण जो फैलते हैं, ये हम सब अनुरोध करते हैं कि कुछ जो होते हैं ये धुआं वगैरह और जो साफ सफाई प्लास्टिक, ये ना करें प्रदूषण। इससे हमारे बहुत से पर्यावरण पर ये नुकसान हो रहे हैं। और लोग कहीं भी प्लास्टिक वगैरह फेंक देते हैं, ये कभी गलता नहीं है और इससे बहुत ही हमारे शरीर को हानिकारक हो सकता है।
0: हमारी धरती के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, जीव जंतुओं के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, है ना, जल स्रोतों के लिए भी अच्छा नहीं है
1: जी। और ये भी कहना चाहेंगे कि पानी कम से कम हो सके तो इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कहते हैं ना कि अगर बूंद से करें तो कोई भी चीज भर सकती है।
0: बिल्कुल, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो जल का अनावश्यक जो अपव्यय है वो ना करें, है ना, उसको सदुपयोग करें पानी
1: कहीं
0: का।
1: कहीं पर हम देखते हैं कि लोग पानी बहुत ही बहुत ज्यादा मात्रा में खर्च करते हैं और उन्हें ये लगता है कि ये हमारे पास पानी है तो अब हमें कोई कमी ही नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन
0: बिल्कुल
1: ऐसा नहीं करना चाहिए।
0: मतलब एक कहावत है कि उन्होंने पैसा पानी की तरह बहाया, मतलब जैसे कि पानी
1: बिल्कुल।
0: पानी एक मूल्यहीन चीज है ना, एक मूल्यहीन तत्व है, पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। जबकि
1: नहीं होगा तो हमारा फिर ये जीवन
0: जी
1: बहुत ही मुश्किल से कटेगा।
0: बिल्कुल, जबकि अब समझने की बात यह है कि जिस तरह से आप पैसे को सोच समझकर खर्च करते हैं, उससे ज्यादा कीमती अब पानी है, तो पानी की तरह बहाना ये बात ही अब बेमानी हो चुकी है। आपको बहुत सोच समझ कर पानी का उपयोग करना चाहिए,
1: इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इसीलिए हम कहते हैं कि तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा।
0: बिल्कुल। तो विकास जी, ये बताएं कि आपका क्या संकल्प है, या कई संकल्प हो तो वो भी बताएं, कि आप पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कौन कौन से संकल्प ले रहे हैं आज?
1: बिल्कुल, हम तो यही संकल्प लेना चाहेंगे मैम कि हम खुद से भी, अपने आसपास भी यही कहते हैं कि सब लोगों को कोई भी चीज हो उसे बहुत कम से कम मात्रा में लेना चाहिए।
0: तो आप ये कह रहे हैं कि आप हर संसाधन का उपयोग सोच समझ कर करेंगे। तो
1: कहीं कहीं पर हम ये भी देखते हैं कि लोग बिजली फर्जी खर्चा करते हैं, कोई भी चीज चला लेते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अपने आसपास भी ये चीज कहते हैं कि सब लोग जितना काम है उतना ही खर्च कीजिए।
0: बिल्कुल। और अभी चूंकि देखिए गर्मियों का समय है, तो अक्सर घरों में देखने को मिलता है कि हर कमरे में पंखा, कूलर या एसी चल रहा है। ऐसा हो सकता है कि परिवार के सदस्य एक या दो कमरे में रहें और उसमें ही एसी कूलर चलाएं। इससे आपके पैसों की भी बचत होगी और पर्यावरण का संरक्षण भी होगा।
1: जी हाँ, लोगों को ये लगता है कि अब ये हमारे पास है तो कोई कमी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत मुश्किल से ये आता है
0: जी। तो विकास जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। हम आपका आभार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया।

0: हेलो
1: जी नमस्ते मैम
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं
1: जी? ग्राम बनेता तहसील बंडा जिला सागर से महेंद्र कुमार सेन बात कर रहे हैं मैम।
0: महेंद्र
1: आपके
0: सेन
1: नियमित
0: जी,
1: श्रोता हैं।
0: महेंद्र सेन जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हम। कितने दिन के बाद फोन किया है?
1: जी मैम, लाइफ में पहली बार लगा है वो बड़ी खुशी हुई हमारा ने जो
0: अच्छा, पहली
1: पहचान
0: बार फोन
1: फोन
0: लगा
1: लगा
0: है,
1: है।
0: बहुत अच्छी बात है। चलिए, हम आपका बहुत स्वागत करते हैं, हृदय से स्वागत करते हैं, और जानना चाहते हैं कि आज के विषय पर आप क्या कहेंगे।
1: जी मैम, हमारे कुछ भी है कि सबसे पहले तो अपने लिए बनों के लिए आग से बचाना चाहिए और हर श्रोता के लिए एक पेड़ जिंदगी में जरूर लगाना चाहिए।
0: वनों को आग से
1: और
0: बचाना चाहिए, महत्वपूर्ण बात
1: जी,
0: आपने कही है, बिल्कुल।
1: और नदी है, नाले हैं, इन गंदगी मत रखो क्योंकि ये दूसरे होंगे तो अपन बीमार पड़ेंगे।
0: बिल्कुल, क्योंकि जो जल स्रोत हैं अगर वो गंदे हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल होती है मनुष्य के लिए और जीव जंतुओं के लिए भी, है ना।
1: जी, क्योंकि उसमें गाय वगैरह हैं, कोई भी मवेशी पानी पीता है तो सर वो खत्म हो जाते हैं। पॉलीथिन वगैरह हैं जो आती हैं बैठ के जो उसमें, तो ये सर बहुत जटिल समस्या है।
0: बिल्कुल, जो प्लास्टिक की थैलियां हैं उनका जो उपयोग हम अब भी कर रहे हैं, ये बहुत चिंता की बात है, और सारी जानकारी होने के बावजूद उसका उपयोग हो रहा है, ये बहुत खतरनाक बात है।
1: और पेड़ भी लगाना चाहिए हर इंसान के लिए।
0: जी, तो ये तो आपने बताया है कि क्या करना चाहिए, और आप चिंतित हैं जंगलों को लेकर और धरती के स्वास्थ्य को लेकर। प्लास्टिक की आपने बात की है, पानी की आपने बात की है, साफ सफाई की बात की है, तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आपके क्या क्या संकल्प होंगे, आप क्या क्या करेंगे आज से, ये बताइए।
1: क्योंकि मैम हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं और वनों की देख रेख करते रहते हैं और हम अपनी क्यारी वगैरह में हर चीज लगाए हैं, आम वगैरह इनके तो पानी आने देते हैं और साफ सफाई का फुल ध्यान रखते हैं।
0: जी,
1: जी मैम,
0: तो जाहिर सी बात है कि पेड़ लगाने का काम तो यूं ही होता है आपसे, और जो आपने बात की है जल स्रोतों की सफाई की, उसमें जरूर आप अपना योगदान दे सकते हैं, है ना।
1: बिल्कुल मैम, और सभी के लिए देना चाहिए।
0: जी, तो महेंद्र सेन जी, आज आपने हमें फोन किया, हमसे बातचीत की, इस विषय पर अपने विचार रखें, आपका हृदय से आभार।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नाम बताइए।
1: आदरणीय मैम जी नमस्कार।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं मैम जी। मैं जय नरसिंह दो FM रेडियो ग्रुप ग्राम करकबेल तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर से कमलेश कहार बात कर रहा हूं मैम जी।
0: कमलेश जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हम। आप हमारे नियमित श्रोता हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के विषय पर एक सार्थक विचार आप रखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण को देख कर आपके मन में किस प्रकार की चिंताएं हैं, क्या परिवर्तन आप देखते हैं और क्या संकल्प है आपका पर्यावरण संरक्षण को लेकर।
1: देखिए मैम जी, मैं श्रोता होने के नाते सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ और बात पर्यावरण की चल पड़ी है तो मैम जी बहुत ही अनुकूल विषय है। मैम जी मैं तो ये कहूँगा कि हमने अभी पर्यावरण दिवस मनाया तो मैं सबसे पहले आपको एक अनुकूल बात बता दूं कि मैं पीपल के वृक्ष के नीचे खड़ा हूँ मैम जी।
0: क्या बात है बहुत अच्छी
1: बात। मेरे पास वीडियो कॉल होता ना मैम जी, सचमुच में वीडियो कॉल करता और आप रेडियो में भी लोग देख पाते मुझे और आपको। तो पीपल का वृक्ष है, इसकी छांव में मैं आपसे बात कर रहा हूँ बोलू खड़े होकर। मैम जी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है
0: जी।
1: मैम जी देखिए मैं तो वृक्ष लगाता ही रहता हूँ, मैंने एक बरगद का वृक्ष लगाया था।
0: कमलेश जी हम ये जानना चाहते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए आपके मन में किस प्रकार की चिंताएं होती हैं?
1: देखिए मैम जी आज वर्तमान में देखी जाए तो ध्वनि प्रदूषण भी बहुत ज्यादा है तो सबसे दायित्व बनता है कि ध्वनि प्रदूषण बिल्कुल न करें।
0: बिल्कुल,
1: बहरेपन की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
0: बिल्कुल, मनुष्य को तो समस्या होती ही है, मानसिक स्वास्थ्य उसका प्रभावित होता है। इसके साथ ही जो पशु पक्षी हैं उनका जीवन भी प्रभावित होता है, उनका भी जो प्रजनन चक्र है वो प्रभावित होता है। तो प्रदूषण कोई भी हो पूरा जीव जगत उससे परेशान होता है और उस पर नकारात्मक प्रभाव उसका होता है।
1: देखिए मैम जी आपने ये बात रख दी है, मैं ये बात बोलने वाला था कि मनुष्य ज्यादा हैरान मैं समझता हूँ प्रकृति से, प्रकृति को लेकर के। यदि प्रकृति अपनी पे आ जाए तो मनुष्य को तो खत्म कर देगी, तो मनुष्य का दायित्व बनता है कि प्रकृति को बचाए रखे। जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी माता,
0: बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात की है।
1: इन पांचों चीजों को बचाने का दायित्व एक मनुष्य का बनता है कि इसे बचा के रखें। जो पर्वत हैं, वृक्ष हैं, पौधे हैं, बड़े बड़े विशाल कह सकते जीव का है।
0: तो क्या है कि संपूर्ण जीव जगत जो है
1: अनुकूल है मैम जी,
0: संपूर्ण जीव जगत का संरक्षित रहना, सुखी रहना आवश्यक है मनुष्य के लिए, है ना। तो कमलेश जी आपने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण जो है चिंता का विषय है और हमें प्रकृति के हर तत्व की रक्षा करनी चाहिए, आपका क्या संकल्प है, आप क्या करेंगे?
1: तो मैम जी संकल्प मैं तो जल को बचाता हूँ ज्यादातर, मैं जल की तरफ ज्यादा आश्रित रहता हूँ क्योंकि जल है तो कल है।
0: क्या बात है, तो जल संरक्षण के लिए
1: मुझे कोई भी एक बूंद पानी बहाता ना तो मुझे गुस्सा आती है।
0: बिल्कुल, टोकना आवश्यक होता है क्योंकि

0: पानी को लेकर हमारा जो व्यवहार है वो बहुत बेपरवाह रहा है शुरू से। अब लेकिन पानी अपनी कीमत बता रहा है और बता रहा है कि जल धन है, समृद्धि है, निधि है, उसे उस तरह से देखना चाहिए जैसे हम किसी खजाने को देखते हैं, संरक्षित करते हैं।
1: बिल्कुल मैम जी, मैं तो एक बात रखूंगा कि जल है तो कल है, वरना चारों तरफ हलचल है, चारों तरफ हलचल है तो वीरान आने वाला कल है। जल ही तो जीवन है, जीवन को बेकार मत बहाओ, अभी समय है मानव तुम जल के प्रति चेत जाओ। जल बिन बताओ कैसे मिलेगी 2 जून की रोटी, जल से है आपके हमारे जीवन की संगोष्ठी। खिल तो जाएगा यह कमलेश बिन पानी के कीचड़ में, लेकिन किंतु परंतु अगर मगर चूंकि जबकि इत्यादि के चलते कैसे बनेगी कीचड़ बिन जल में।
0: क्या बात है। तो कमलेश जी, आपने बहुत सुंदर संदेश दिया एक कविता के माध्यम से, जल संरक्षण की बात की, तो कुछ बारिश की फुहारें आप तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फ़ोन किया।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, अपना परिचय दीजिए।
1: नेमचंद
0: जैन जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: दमोह से।
0: आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण की, और जानना चाहते हैं कि इस समय जो पर्यावरण की स्थिति है, तेज गर्मी, बाढ़, भूकंप, है ना, ये स्थितियाँ देखने को मिलती हैं, और मिट्टी की उर्वरता भी कम हुई है, जल की कमी भी होती है, जल संकट भी बढ़ता जा रहा है, तो पर्यावरण की स्थिति देखकर आपकी
1: अधिक हो रही है, इसलिए तो वो जल की कमी होती है, गर्मियों में होती है और प्रायः जल की कमी होती
0: जी। तो इस पूरे पर्यावरण प्रदूषण को लेकर आपके मन में क्या चिंता है, और पर्यावरण संरक्षण के लिए आप कौन सा एक उपाय करेंगे, क्या संकल्प है आपका?
1: दिल में ये चिंता है कि जंगल कटते जा रहे हैं, जंगलों से ये सब पेड़ों से वाटर जाकर का खिंचाव होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और सरकार को इसमें थोड़ी रोक लगाना चाहिए।
0: सरकार तो रोक लगाती ही है। आपने जंगल कटने की बात की है, ये वास्तव में चिंता की बात है, क्योंकि जंगल जो हैं वो सभी जीव जंतुओं की आश्रय स्थली हैं, है ना, सारे जीव जंतु रहते हैं उसमें, पेड़ पौधे भी वहाँ हैं। आपने बताया है कि बादलों को खींच कर वो ले आते हैं पेड़, और बारिश होती है, तो बहुत आवश्यक है कि हमारे जंगल सुरक्षित रहें, ताकि जैव विविधता भी हमारी बनी रहे। तो आप कौन सा एक संकल्प लेंगे नेमचंद जी?
1: यही संकल्प है हमारा कि कम से कम जंगलों की कटाई हो।
0: और पौधे लगा सकते हैं, आपने पेड़ों की बात की है, तो जाहिर सी
1: अपने खेत में आम के पेड़ लगाने के मूड में थे।
0: तो आपने बताया कि आप पेड़ लगाने के मूड में हैं, तो हम चाहते हैं कि आप जरूर बहुत से पेड़ लगाइए, उनको संरक्षित कीजिए, बड़ा कीजिए। तो नेमचंद जी, आज आपने हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बात आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नाम बताएं।
1: नमस्कार, नवग्रह नगरी तिलकपत खरगोन से मैं मनीष निमाड़े।
0: तो मनीष जी, आज का विषय जो है वो पर्यावरण प्रदूषण से जुड़ा हुआ है, तो हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार की चिंताएं पर्यावरण को लेकर आपके भीतर हैं और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आपका क्या संकल्प है।
1: जी, पर्यावरण देखिए हम लोगों का एक कहें कि हमारे जीवन का आवश्यक अंग है। अगर ये पर्यावरण कमी हुई, नष्ट हुआ या धीरे धीरे क्षीण होते होते खत्म सा होने लगेगा, तब बहुत विपदाएं आएंगी। विपदाएं आनी शुरू हो गई, प्रकृति अपना संकेत हर समय दे रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, मानव प्रजाति जो है उसकी तरफ कुछ दिन मना लेते हैं या पर्यावरण दिवस मनाकर और फिर भूल जाते हैं और कोई चिंता नहीं करते हैं। हम सोचते हैं सरकार सब करेगी, लोग करेंगे। चूंकि इसकी शुरुआत हमको खुद से करनी होगी।
0: बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये।
1: हम खुद जब से नहीं करेंगे तब तक जो है ना हमारे अड़ोसी पड़ोसी जागेंगे, ना चार घर जागेंगे, ना नगर जागेगा, ना देश जागेगा और ना ही विश्व जागेगा।
0: बिल्कुल,
1: तो शुरुआत हम अपने से करें। और मैं जो है पहले से इस विषय का चिंतित हूँ और चूंकि जागरूकता परिवार से मिली है हर विषय पर जानने की, देखने की, समझने की
0: जी।
1: तो हम लोग शुरुआत किए थे कि हम घर में मार्केट से कोई भी प्लास्टिक थैली नहीं खरीद के लाते, मतलब
0: क्या
1: कोई सामान उसमें नहीं लाते।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: अगर कोई दिक्कत भी है तो पुनः घर लौटते हैं और फिर झोला लेकर ही सामान लाते हैं। अवॉइड करते हैं, कोई देता है सब्जी भाजी देता है तो उसको मना करते हैं, नहीं भैया आप प्लास्टिक मत दो, हमारे पास झोला है।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: तो परिवार में ये है कि हम लोग करते हैं। दूसरा, कभी भूले भटके किसी वस्तु में लाना अनिवार्य हो गया उसमें तो हम उसको डस्टबिन में नहीं डालते, हम उसको साफ करके या धोके रीयूज के लिए रखते हैं या कहीं और काम आ जाए ताकि वो कूड़े में ना जाकर और अपनी वो ना फैलाए।
0: बहुत अच्छी बात।
1: ये प्रयास करते हैं, पानी बचाने का प्रयास करते हैं। पानी बचाने के लिए परिवार मिलकर प्रयास करता है
0: जी,
1: कि हम नल या शावर से कभी नहीं नहाते हैं।
0: क्या बात है,
1: भरकर नहाते हैं।
0: जी जी जी।
1: कूलर का जो है हम परिवार में एक सामूहिक हमारा हॉल है, हम उसमें सभी उस एक कूलर से आनंद लेते हैं।
0: वाह।
1: तो हम इससे दोहरे लाभ कमाते हैं, बिजली बचाते हैं और पानी भी बचा लेते हैं।
0: बिजली बचाते हैं, पानी बचाते हैं और साथ का आनंद उठाते हैं।
1: सवाल ही नहीं उठता, वो तो अनमोल धरोहर है।
0: जी जी जी। तो मनीष जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सार्थक और बहुत अच्छे विचार रखे हैं, बहुत खुशी हुई, बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया। हार्दिक आभार।

0: हेलो
1: हेलो।
0: नमस्कार, नाम बताइएगा।
1: नमस्कार नमस्कार। गोविंद जलोदिया खाते गांव जिला देवास।
0: गोविंद जलोदिया जी, बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में, आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है सर, गर्मी से अब ठंडी पड़ गई है।
0: जी, तो कुछ बारिश की बूंदों ने राहत तो दी है,
1: हाँ।
0: लेकिन हम आज जो बात कर रहे हैं वो ये है कि पर्यावरण प्रदूषण को लेकर आपके मन में किस प्रकार की चिंताएं हैं और कोई एक सार्थक
1: पर्यावरण तो
0: पहल।
1: क्या है कि पर्यावरण से तो पूरा सृष्टि चल रही है। पर्यावरण क्या है, जब तक तो झाड़ पेड़ पौधे पदे ये वो नहीं रहेंगे, प्रदूषण नहीं रहेगी, सफाई नहीं रहेगी, तो वातावरण शुद्धिकरण रहेगा ही। इससे
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सबसे जरूरी तो ये है कि आदमी ने क्या, अभी जैसे अभी 5 तारीख को बना रहे हैं, तो एक संकल्प कर लेना चाहिए और वहां से चल के रोज एक कुछ ना कुछ झाड़ पेड़ पे पानी देते ही रहो।
0: तो आप पौधों को परवरिश देने की
1: हाँ
0: बात कर रहे हैं,
1: हाँ
0: है ना?
1: पेड़ पौधे को पानी देते रहो, ये भी संकल्प कर लेना चाहिए। बनाना मतलब झाड़ उगाना तो अलग बात है,
0: बहुत अच्छी बात है, सिर्फ पौधारोपण से
1: यही
0: बात
1: सभी
0: बनती
1: जरूरत है।
0: नहीं।
1: तो पर्यावरण में उससे ही शुद्धिकरण रहता है, आगे और पीछे जहाँ जगह मिले वहाँ पे ये फल फूल वगैरह टाइप यही वो तो आप कर दो, इनको ही रोज आप पानी दो तो भी वातावरण में शुद्धिकरण हो जाता है।
0: बिल्कुल, तो आपने
1: ये
0: ये कहा कि
1: पद
0: पौधे लगाना तो आवश्यक है ही, उनकी
1: हाँ आवश्यक
0: परवरिश,
1: चाहिए।
0: उनकी परवरिश एक बच्चे की तरह करना आवश्यक होता है, वो पौधा बड़ा हो जाए, ये भी हमारी जिम्मेदारी होती है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो आपका क्या संकल्प रहेगा?
1: संकल्प ये मेरा है, मैं तो डेली वैसे जल तो चढ़ाईता हूँ, वैसे तुलसी का वो है जो पौधा, और दो तीन मतलब जो उसके फूल भी है, तो जब सूरज ग्रहण कर तो सूरज भगवान को जल चढ़ाने जाते हैं तो इनको भी थोड़ा थोड़ा दे देते हैं।
0: जी
1: अब और 5 तारीख से और संकल्प कर लिया कि हम डेली मतलब जो है पेड़ पौधों में पानी देंगे।
0: तो आप जहां भी देखेंगे सूखते पौधे पानी देंगे, ये एक अच्छा संकल्प है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया, बहुत बहुत
1: ठीक है।
0: धन्यवाद।

श्रोताओं, धरती केवल मिट्टी नहीं है, ये हमारी स्मृतियों का घर है। वृक्ष केवल लकड़ी नहीं है, वे हमारी सांसों के प्रहरी हैं। नदियां केवल जलधाराएं नहीं हैं, वो जीवन की सतत बहती हुई कथा हैं। और पर्यावरण केवल एक किताबी विषय नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व का आधार है। आज जब पर्यावरण प्रदूषण की चुनौती हमारे सामने खड़ी है, तब आवश्यकता है केवल चिंता की नहीं, बल्कि संकल्प की। एक ऐसा संकल्प जो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, निर्मल जल और हरी भरी धरती का उपहार दे सके। और आज इस कार्यक्रम में आप सबने अपने संकल्प हमसे साझा किए। हम उम्मीद करते हैं कि ये संकल्प आपको हमेशा याद रहेंगे, एक दूसरे को भी आप ये बातें याद दिलाते रहेंगे और इन संकल्पों को अवश्य पूरा करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जहाँ बातों से बात बनेगी नहीं। बातें अब तक खूब हुई हैं, अब बारी है कुछ कर गुजरने की। तभी धरती पर जीवन की बात हो सकेगी, हमारे अस्तित्व की बात हो सकेगी। इसी महत्वपूर्ण संदेश के साथ अब इस कार्यक्रम से इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आज की प्रस्तुति थी सुनीता सिंह की। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रीवा सागर नागपुर हैदराबाद के बीच नई स्थायी ट्रेन सेवा को मंजूरी दे दी है। इस सीधी ट्रेन से सागर और बुंदेलखंड के लोगों को इलाज, व्यापार और शिक्षा के लिए दक्षिण भारत जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। श्योपुर के कुरु नेशनल पार्क में दशकों बाद दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराकल की मौजूदगी कैमरे में ट्रैप हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस पर प्रसन्नता जताते हुए कहा है कि कुनो में समृद्ध हो रही जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों का प्रमाण है ये। भाजपा के दोनों प्रत्याशी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल आज राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस ने मंदसौर की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून है। प्रदेश में आज मेगा अपार आईडी दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रत्येक विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाई जा रही है। ये आईडी विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में सहायक होगी। शिक्षण संवर्धन के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 11 विद्यार्थियों और 11 शालाओं को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया। प्रदेश में मॉनसून से पहले ही प्री मॉनसून जमकर बरस रहा है। बीते 24 घंटों में 20 से अधिक जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। आज भी यही मौसम बना रहेगा। और भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 हॉकी टूर्नामेंट में फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। जापान के काकामेगाहारा में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 पर शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। सभी सुनने वालों को साधना जैन का नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? तो लीजिए, हम लेकर आ गए हैं आप सभी की पसंद पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम। तो भारत और भारत से बाहर सुनने वाले सभी श्रोताओं को साधना जैन का नमस्कार। आपने अपनी पसंद हमें भेजी और हम आ चुके हैं आपके गाने लेकर। पहला गीत हमने लिया है काजल फिल्म से। आशा भोसले साहिर की आवाज़ है आशा भोसले की। गीत लिखा है साहिर ने और संगीत दिया है रवि ने। इस गाने को पसंद किया है नागपुर से डॉक्टर विजय जैन, लता व किशोर मोहरिल, हेमंत देशपांडे, मोहन, रमेश बल्लाल और आपके सभी साथियों ने। तो आपकी पसंद पर ये गीत हम भेज रहे हैं काजल फिल्म का।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश। अगला गीत सच्चा झूठा फिल्म से मोहम्मद रफ़ी के साथ लता मंगेशकर की आवाज़ है। गीत लिखा है इंदिवर ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत को पसंद किया है अखिल भारतीय तीर संरक्षण महासभा मध्य प्रदेश के सभी साथियों ने, अनिल अरुणा आरबीआई, आदिश्वर प्रसाद, अल्पना जैन, संजय जैन, सीमा जैन, संध्या आज़ाद मोदी, प्रदीप जैन, राजेश ममता डालडा, संतोष किरण ट्रांसपोर्ट, वर्षा ज्योति स्वरूप जैन, सुषमा सुनील गंगवाल, जितेश आवहा, ज्योतिषाचार्य और राकेश रौनक ने। तो आप सभी की पसंद पर भेज रहे हैं ये गीत।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश और मैं हूं आपके साथ साधना। अगला गीत सुजाता फिल्म से एसडी बर्मन की आवाज़ है। गीत लिखा है मजरूर सुल्तानपुरी ने, संगीत है एसडी बर्मन का। और इस गीत को पसंद किया है हमारे इन सभी साथियों ने, अमेरिका के बोस्टन से डॉक्टर विजय प्रकाश जैन और आपके परिवारजन प्रियांक, पुनीता, अंकुर, आर्जव और अनिरुद्ध। साथ ही आप हमारे देश हिंदुस्तान में रहने वाले अपने भाई, रिश्तेदारों और सभी मित्रों को भी सुनवाना चाहते हैं ये गीत। तो अमेरिका के साथ साथ भारत में भी डॉक्टर विजय प्रकाश जी और अपने साथियों के साथ सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

और लीजिए आपकी फरमाइश का अगला गीत ये रात फिर ना आएगी से महेंद्र कपूर की आवाज़ है। SH बिहारी ने इस गीत को लिखा है और ओपी नैयर ने संगीत दिया है। हमारे इन सभी श्रोताओं ने इस गीत को सुनना चाहा है। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर ने इसी गीत को सुनना चाहा है। औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने। आप सभी की पसंद पर महेंद्र कपूर की आवाज़ में ये गीत सुनिएगा।

गीत हम आपको सुनवा रहे हैं शब्बीर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा है, राहुल देव बर्मन ने संगीत दिया है। इस गीत के फरमाइश करता इस गीत के बाद हम आपको बताते हैं।

बेताब फिल्म के इस गीत को पसंद किया था भोपाल गौतम नगर से पंडित ममतेश शर्मा, दीपू शर्मा, अक्षरा अनुष्का और विनायक शर्मा ने। इसी गीत को पसंद किया था गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक ने। आप सभी की पसंद पर हमने सुनवाया बेताब फिल्म का ये गाना। और लीजिए, आपकी फरमाइश का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लोफर फिल्म से। आशा भोसले की आवाज़ है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को पसंद किया है छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री ने। और इसी गीत को पसंद किया है बठिंडा पंजाब रेलवे कॉलोनी से जे एस नायक, शोभा नायक और जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला और समस्त डागला परिवार ने। आप सभी की पसंद पर ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, कार्यक्रम का अंतिम गीत।

लोफर फिल्म के इस गीत को, जिसे आशा भोसले ने गाया था, इसके साथ ही आपकी फरमाइश यहीं संपन्न करने की आज्ञा दीजिए साधना जैन को। अगली बार नए साथियों के पत्र और नए गीतों के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे आपकी फरमाइश। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:25 हुए हैं। अगला प्रसारण अंतराल के बाद।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है संग्रहालय से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको संगवा रहे हैं जंग लगी तलवार का भाग एक।
1: प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने।

0: यशवंत, क्या बात है बेटा, तू आज इतना उदास क्यों है?
1: उदास ना हूं तो क्या करूं काका, दलित मजदूरों की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। शंभू काका, आपने आजादी का आंदोलन तो देखा है ना?
0: देखा है बेटा, कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल हुई थी हमें आजादी। हाँ। हजारों लाखों देशभक्तों ने अपना बलिदान दिया है इस आजादी को हासिल करने के लिए, मगर क्या हम सचमुच आजाद हो पाए हैं?
1: यही सवाल शंभू काका, ठीक यही सवाल मुझे हर पल झकझोरता रहता है। हार तोड़ मेहनत करने के बाद भी दो जून की रोटी नसीब ना हो, तन ढकने के लिए कपड़ा लत्ता तक ना हो, गोद में खेलने वाले बच्चों को दूध की एक बूंद भी ना मिले, पिचका पेट और उघड़ा बदन लिए घूमने वालों के लिए भला इस आजादी का क्या महत्व काका?
0: दुख तो इस बात का है बेटा कि हमारे नेता भी हमारी दशा सुधारने के लिए कुछ नहीं करते, बस जुलूस सभाओं में गाल बजाते हैं और भूखी नंगी जनता की तालियां बटोरकर खुद की पीठ थपथपाते हैं।
1: अब इस साई नदी पर चल रहे प्रोजेक्ट को ही ले लो काका, कहने को तो यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों की यूनियन बनी हुई है, मगर आज तक यूनियन ने मजदूरों के लिए किया ही क्या है?
0: यूनियन के सारे नेता धूर्त और मक्कार हैं यशवंत।
1: हाँ काका,
0: पहले तो मजदूरों को उकसाते हैं, उनके भले की बात कहते हैं, सदियों से पिस रहे मजदूरों को सब्ज बाग दिखाते हैं, उनसे हड़तालें करवाते हैं और मौका मिलते ही कंपनी के अफसरों से मिल जाते हैं। भूख की आग में जल रहे मजदूरों की दशा पहले से ज्यादा बिगड़ जाती है बेटा।
1: लेकिन काका, ये मजदूर हड़ताल करते ही क्यों हैं?
0: हड़ताल तो यूनियन करती है, हड़ताल करना लोकतांत्रिक अधिकार जो है, मजदूरों को तो विवश होकर यूनियन का साथ देना पड़ता है, नहीं तो कंपनी के अधिकारियों के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं।
1: हाँ?
0: पूरी मजदूरी पर अंगूठा लगवाकर उन्हें आधी मजदूरी दी जाती है।
1: क्या?
0: अफसरों के घरों में बेगार भी करनी पड़ती है यहाँ के मजदूरों को। सबसे अधिक दयनीय दशा तो हम दलित मजदूरों की है, गंदगी तक साफ करवाते हैं लेकिन पहनने को जूता तक नहीं देते।
1: हे भगवान, काका क्या जमाना आ गया है, क्या हम लोगों को अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं करना चाहिए? काका, मैंने तो पढ़ा है कि मजदूरों के लिए कानून बना हुआ है और दलितों के लिए भी अलग कानून है, तो फिर हम लोग कानून से सहायता क्यों नहीं मांगते?
0: बेटा, तू पढ़ा लिखा है, हाई स्कूल पास है, लेकिन तेरे पास व्यावहारिक ज्ञान की कमी है।
1: मैं कुछ समझा नहीं काका।
0: कानून से न्याय मांगने के लिए अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं, वकील को फीस देनी पड़ती है, अरे जब खाने को नहीं है तो मुकदमा लड़ने के लिए पैसा कहाँ से आएगा?
1: लेकिन चाचा, ये यूनियन हम मजदूरों से जो चंदा इकट्ठा करती है, अब वो सब कहाँ जाता है? क्या उस धन का उपयोग हम मजदूरों के हित में नहीं होता?
0: अरे तू इस साइट पर नया आया है ना, इसलिए कुछ भी नहीं जानता।
1: हाँ?
0: यूनियन का पैसा यूनियन के नेताओं की मौज मस्ती के लिए होता है, सारा पैसा उनकी शराबखोरी में खप जाता है।
1: ओ, मैं समझ गया काका, सब कुछ समझ गया।
0: सच? जरा बता दो क्या समझा?
1: देखो काका, मैं मानता हूं कि कंपनी का मजदूर होने के कारण उसका अत्याचार सहना तो हम सबकी मजबूरी है, कंपनी के सामने सारे मजदूर भाई लाचार और विवश हैं, लेकिन काका यूनियन नेताओं के सामने भला कैसी विवशता? अरे यूनियन का पैसा मजदूरों के खून पसीने की कमाई है, मजदूरों का ब्लड बैंक है यूनियन का फंड।
0: बड़ी बड़ी बातें बनाना आसान है बेटा, मगर उस पर अमल करना उतना आसान नहीं है जितना तू समझ रहा है।
1: काका, अगर मुझे मौका मिले ना तो मैं यूनियन की तस्वीर बदल सकता हूँ, मजदूरों का भाग्य पलट सकता हूँ मैं। लेकिन काका, क्या एक दलित मजदूर को यूनियन की नुमाइंदगी करने का मौका मिलेगा?
0: भाई आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मुझे आशा की एक किरण दिखाई दे रही है।
1: अरे आप तो बहुत सालों से यहाँ हैं काका, कंपनी की नौकरी करते हुए आपको 20 बरस हो गए हैं, अब काका आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हाँ हाँ हाँ
0: तू नया जरूर है बेटा, है भी नई पीढ़ी का। तेरा जोश देखकर उम्मीद बंधी है कि अब हमारा उद्धार जरूर होगा। मेरी बात ध्यान से सुन।
1: हाँ काका।
0: तेरा पढ़ा लिखा होना तेरे साथ साथ हम सब के लिए वरदान बन सकता है। तुझे यूनियन में नुमाइंदगी दिलवाने के लिए मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा।
1: अब शंभू काका, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा मतलब आपकी योजना क्या है?
0: यूनियन का नेता राम बहादुर साल भर का चंदा डकार गया और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई।
1: अच्छा,
0: अब जाकर पता चला तो उस पर अभियोग लगाया गया है। यूनियन की आम सभा में इस अभियोग का निर्णय सुनाया जाएगा।
1: तो फिर काका?
0: अरे फिर क्या, अगर राम बहादुर को यूनियन से हटाया गया तो उसकी जगह किसी दूसरे प्रतिनिधि को रखा जाएगा। अरे तू पढ़ा लिखा तो है ही, समझदार भी है। दलित मजदूरों की ओर से मैं तेरे नाम का प्रस्ताव रखूंगा।
1: सच काका, सच? लेकिन काका, क्या यूनियन इस बात के लिए सहमत होगी?
0: भाई इस विषय में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ इतना जरूर है कि कोशिश करने पर सफलता हमारे कदम चूम सकती है। लेकिन जसवंत,
1: हाँ काका,
0: यूनियन का प्रतिनिधि बनकर अगर तू भी दूसरे नेताओं जैसा बन गया तो हमारा क्या होगा है?
1: ऐसा कभी नहीं होगा शंभू काका, ऐसा कभी नहीं होगा। आज हम अपने हालात के सामने विवश हैं, लेकिन काका कल हालात हमारे सामने विवश होंगे, ये मेरा वादा है आपसे।
0: ठीक है बेटा।
2: अरे वाह, क्या हुस्न है, क्या खूबसूरती है। ऐसा लगता है जैसे परी आसमान से उतरकर

0: पर आ गई हो। हाय हाय हाय हाय। और फिर पानी में नहाती हुई परी, हा हा हा हा, इसकी एक फोटो खींचता हूँ।
1: हाय भैया, आसमान पर बादल भी नहीं है जो बिजली चमकती, फिर ये बिजली जैसी क्या चमकी? लगता है कोई भूत प्रेत है, यहाँ से चलना चाहिए, जाने क्या अनहोनी हो जाए। हम आप कौन हो बाबू? पराई नारी को नहाते हुए छुप छुप कर देखते हो, आपको लाज नहीं आती?
0: अरे ना ना ना ना ना ना ना, अभी पानी से बाहर ना निकलना, पानी में खड़ी हुई तो किसी परी से कम थोड़ी लग रही हो। जरा तेरी कुछ तस्वीरें खींच लूँ।
1: आप मेरी तस्वीरें खींचेंगे बाबू? पर मैं तो आपको जानती तक नहीं।
0: अरे मैं चौधरी हूँ, यहाँ के मैनेजर का छोटा भाई, शहर से घूमने आया हूँ।
1: मैनेजर के छोटे भाई हैं आप?
0: हाँ हाँ, क्यों मेरी बात का विश्वास नहीं?
1: लेकिन बाबू, आप मेरी तस्वीरें क्यों लेना चाहते हैं?
0: वो क्या है कि मैं सुंदरता की पूजा जो करता हूँ, बस जहाँ भी सुंदरता देखी तुरंत इस कैमरे में कैद कर लेता हूँ।
1: बाबू, आप मेरी तस्वीरें मुझे दिखाएंगे ना?
0: हाँ, क्यों नहीं, जरूर दिखाऊंगा।
1: तो ठीक है, फिर खींचो मेरी फोटो।
0: अच्छा थोड़ा मेरी तरफ देखो,
1: ये
0: थोड़ा दूसरी तरफ घूमो,
1: ये ऐसे।
0: हाँ, अब जरा मेरी तरफ देख कर मुस्कुराओ। अब थोड़ा बैठ कर दोनों हाथ उधर करो।
1: ये ऐसे बाबू?
0: ऐसे हाँ, एक हाथ थोड़ा और ऊपर। बस बस बस बस बस बस, कितनी तस्वीरें बहुत हैं। जरा नदी से बाहर तो निकलो।
1: बड़ी बेशर्म है आप, अपने सामने ही मुझे बाहर आने के लिए कह रहे हैं, ऐसे कैसे?
0: कमाल है, लेकिन थोड़ी देर पहले तो तू ऐसे ही बाहर निकलना चाहती थी।
1: तब की बात और थी।
0: अच्छा,
1: तब मैं यहाँ से भाग जाना चाहती थी। अच्छा बाबू, चलो तुम मुंह घुमा कर खड़े हो जाओ।
0: अच्छा अच्छा, समझ गया। लो लो, मैंने ये मुंह घुमा लिया।
1: हाँ, देखो जब तक मैं ना कहूँ इस ओर मुँह ना करना।
0: जो आज्ञा देवी जी।
1: आपने आपने मुझे देवी जी कहा?
0: आपने नाम तो बताया नहीं, तो देवी जी भी कहना पड़ा।
1: मेरा नाम नारायणी है बाबूजी। बाबूजी, अब आप मेरी ओर घूम सकते हैं, मैं कपड़े बदल चुकी हूँ।
0: अच्छा अच्छा, चलो मैं घूम गया। भाई नाम तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, नारायणी। यानी देवी, सौंदर्य की देवी यानी नारायणी। सच नारायणी, तुम बहुत सुंदर हो। एक बात पूछूं नारायणी?
1: हाँ पूछिए बाबू जी।
0: तेरा ब्याह हुआ कि नहीं? पता ना नारायणी, तेरा ब्याह हुआ कि नहीं?
1: क्यों पूछ रहे हैं आप?
0: पहले बताना, बता तेरा ब्याह हुआ कि नहीं?
1: हो गया।
0: क्या?
1: लेकिन अभी गौना नहीं हुआ है।
0: अच्छा नारायणी, ये तो पता कि गौना कराकर तुझे ले जाने वाला तेरा मर्द क्या करता है?
1: वो भी इस दुनिया में अकेला है बाबूजी, मजदूरी करके अपना पेट भरता है।
0: अच्छा अच्छा, एक बात और बता, क्या वो तुझे पसंद है?

0: बेटा यशवंत, बहुत बुरी खबर है।
1: क्या हुआ शंभू काका, आप बहुत परेशान दिखाई पड़ रहे हैं।
0: सुखदेव, अरे तू तो उसे जानता है ना, जिसे 2 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया था।
1: हाँ काका,
0: उसने अपनी पत्नी और 3 साल के बेटे को मारकर खुद आत्महत्या कर ली।
1: क्या?
0: चौंकने की जरूरत नहीं है यशवंत, ये तो हम लोगों का भाग्य बन चुका है।
1: अरे कैसा भाग्य काका, आखिर यहाँ के मजदूरों में आत्महत्या की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है?
0: भूख बेटा, भूख। भूख ही वो कारण है जो जीते जागते इंसानों को मौत को गले लगाने पर मजबूर कर देती है।
1: काका, तो क्या सुखदेव और उसके परिवार की मौत का कारण भी भूख है?
0: हाँ यशवंत, सुखदेव तो मरकर तमाम झंझटों से मुक्ति पा गया। देखना तो यह है कि अगला नंबर किसका है।
1: ऐसा ना कहो शंभू काका, ऐसा ना कहो। काका, इस साइट का अब कोई मजदूर भूख से नहीं मरेगा। ऐसा ना हो इसके लिए हमें शीघ्र ही कोई पुख्ता इंतजाम करना पड़ेगा।
0: बेटा, जब तक मजदूरों की चटनी होती रहेगी तब तक इसे किसी कीमत पर नहीं रोका जा सकता।
1: काका, एक बार, बस एक बार मैं यूनियन का प्रतिनिधि बन जाऊं, उसके बाद कंपनी के अफसरों से छटनी रोकने पर मैं खुद बात करूंगा। और काका, सभी दिहाड़ी मजदूरों को परमानेंट करने का प्रस्ताव भी रखूंगा।
0: अरे हाँ, यूनियन के नाम पर अच्छा याद दिलाया। अगले महीने की 10 तारीख को यूनियन की आम सभा बुलाई है। राम बहादुर की यूनियन की वर्दी उतरना निश्चित है। यूनियन में तेरा नाम शामिल करवाने का अगर ये मौका हम चूक गए तो फिर ऐसा सुनहरी अवसर फिर कभी नहीं आएगा।
1: आप बिल्कुल ठीक कहते हैं शंभू काका, हमें इस मौके को हर हाल में भुनाना है। काका, जब तक यूनियन में दलित मजदूरों का प्रतिनिधि नहीं होगा तब तक उनकी दशा सुधारी नहीं जा सकती।
0: मैं तेरी बात से सहमत हूँ यशवंत।
1: काका, आप एक काम कीजिए, आप सभी दलित मजदूरों को आम सभा में उपस्थित रहने के लिए कह दीजिए।
0: ठीक है।
1: यूनियन में दलित मजदूरों को आज तक जिस अधिकार से वंचित रखा गया है, इस बार हम अपना वो अधिकार लेकर रहेंगे।
0: दलित मजदूर तो एक है यशवंत, इसके अलावा मैं दूसरे मजदूरों का मन भी टटोलता हूँ, शायद उनका समर्थन भी हमें मिल जाए।
1: और इस काम में मैं भी आपका साथ दूंगा काका।
0: और हाँ, लिचू भी हमारे साथ है। अब कामयाबी अधिक समय तक हमसे दूर नहीं रह सकती।
1: काका, तब तो समझो कि सभी दिहाड़ी मजदूरों को साल भर काम की गारंटी और काम का पूरा भुगतान तुरंत करने का नियम भी जल्दी बन जाएगा। और काका, तब कोई भूख से नहीं मरेगा। हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ेंगे, हमारे सभी मजदूर भाई खुशहाल होंगे। काका खुशहाल।
0: तेरे मुंह में घी शक्कर बेटा, भगवान करे ऐसा शुभ दिन जल्दी आए।
1: हाँ काका।
2: मेरी नारायणी, कैसी होगी मेरी नारायणी, मेरी जीवन संगिनी। सोचा था उसके मां बाप की मौत के तुरंत बाद उसे घर ले आऊं, मगर क्या करता, क्या करता मैं, उन दिनों बेकार जो था, अपना पेट भरना ही मुश्किल था, उस बेचारी का कहां से भरता। वो सोचती तो जरूर होगी कि संकट की घड़ी में उसका मर्द भी उसके किसी काम नहीं आ सका। बेचारी मजूरी कर रही है, मजूरी करना कोई पाप नहीं है, सबसे बड़ा पाप तो गरीबी और भूख है। अगर गरीबी और भूख ना रहे तो धरती पर पाप का बोझ ही क्यों बढ़े। ठीक है, अब मैं इस बीमार गरीब ब्राह्मण की देखरेख का काम कर रहा हूं, मगर इसके पास मुझे देने के लिए है भी क्या, बेचारा आप ही कई कई दिनों तक भूखा रहता है।

मैं उसे यूं भी तो छोड़कर नहीं जा सकता। इंसानियत के नाते ही सही, लेकिन उसकी सेवा करना तो मेरा फर्ज है। मगर नारायण, अगले महीने ही तो गौना करवाना है, जबकि मेरी गांठ में तो फूटी कौड़ी तक नहीं। अरे कैसे होगा ये सब?

0: लगता है ब्राह्मण जा गया है, उसे प्यास लगी है, मैं जाकर उसे पानी पिलाता हूँ।
1: ब्राह्मण महाराज, ब्राह्मण महाराज,
0: महाराज
2: बेटा
0: लीजिए, आप पानी पीजिए, लीजिए लीजिए,
2: लाओ बेटा
0: लीजिए।
2: भगवान तुझे लंबी आयु दे बेटा।
0: महाराज
2: बेटा तू मेरी निस्वार्थ भावना से सेवा कर रहा है, भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे बेटा।
0: ब्राह्मण महाराज आपके साथ मेरा भी खाली समय कट जाता है। महाराज एक बात समझ में नहीं आई।
2: कौन सी बात बेटा?
0: महाराज आप रहने वाले तो इलाहाबाद के हैं,
2: हाँ
0: आपका भरा पूरा परिवार है, फिर आप यहाँ आकर अकेले क्यों रह रहे हैं?
2: यह एक दुख भरी कहानी है शिबू बेटा। जब से मुझे ये निगोड़ी टीबी की छूत की बीमारी लगी है बेटा, तब से मेरे अपने सगों ने मुझे टुकरा दिया है। सगों के सामने तिल तिल करके मरने से तो अच्छा है कि कहीं दूर एकांत में अपने अंतिम दिन व्यतीत।
0: आपको तो बहुत तेज खांसी हो रही है, अब रुकिए मैं आपको पानी देता हूँ, ये लीजिए पानी और पीजिए, ये लीजिए
2: बेटा लाओ।

0: महाराज, आपके बलगम में तो खून भी है।
1: शायद मेरी बीमारी अंतिम चरण में है बेटा।
0: महाराज, महाराज, आराम से,
1: बेटा, बेटा।
0: जी महाराज।
1: एक बात बताएगा?
0: जरूर जरूर पूछिए महाराज।
1: बेटा, क्या क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता?
0: महाराज, भला मैं आपसे क्यों डरने लगा?
1: बेटा, तू मेरे कपड़े धोता है, मेरी गंदगी साफ करता है, तुझे तुझे टीबी हो सकती है बेटा। इस भयानक बीमारी से तू नहीं डरता क्या?
0: ब्राह्मण देवता, हम गरीबों की सबसे बड़ी बीमारी तो भूख है। ये टीबी जैसी छोटी छोटी बीमारियों से क्या डरना?
1: तू सही कहता है शुभ बेटा। बीमार इंसान तो फिर भी कुछ दिन जी लेता है बेटा, लेकिन लेकिन भूखा इंसान ना, ना ना ना। भगवान किसी को भूख का रोग ना दे बेटा।
0: हाँ महाराज, ठीक कहते हैं आप।
1: भूख का रोग ना दे।
0: महाराज, महाराज समझिए, महाराज आपकी खांसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। महाराज, अब आप आराम कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। समझिए, समझिए महाराज,

0: हाँ बेटा, मेरी सांस कब रुक जाए बेटा, कोई भरोसा नहीं। मैं बेटा तुझसे एक विनती करना चाहता हूँ।
1: महाराज, आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों का स्थान देवताओं के बराबर होता है। देखिए महाराज, विनती करके आप मुझे नरक में ना धकेलिए, आप मुझे आदेश दीजिए।
0: बेटा बेटा, तुझे ध्यान होगा कि जब मैं 3 दिनों से भूखा था तो तूने मुझे अपने घर से रोटी लाकर खिलाई थी।
1: हाँ महाराज, मुझे अच्छी तरह याद है।
0: मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। बेटा, तू इस बात का कभी किसी से कोई जिक्र नहीं करेगा, इस बात का भी नहीं कि मैं तेरे हाथ का पानी पीता था। हाँ बेटा।
1: ब्राह्मण महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं आपका ये विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा।
0: बेटा बेटा, ये नहीं पूछेगा कि ऐसा करने के लिए ऐसा करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं।
1: इसमें पूछने की क्या बात है महाराज,
0: तू तो बहुत समझदार है ऋषभ।
1: महाराज, आप किसी भी तरह की चिंता न करें। अपमान का घूंट पीना तो हम दलितों के लिए रोजमर्रा की बात है। महाराज, मैं आपके सम्मान की रक्षा अपने प्राण देकर भी करूंगा, आप निश्चिंत रहें महाराज।
0: जीते रहो बेटा, जीते रहो बेटा, जीते रहो।

0: क्या बात है नारायणी, तो रो क्यों रही है?
1: बसुमती काकी, मेरे सपनों का राजकुमार मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया।
0: कौन चला गया? वो चौधरी?
1: हाँ काकी, हाँ, उसने मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। मेरी चमक समझते मैं इतना खो गई कुछ होश ही नहीं रहा। शादी की बात सुनी और चाहती वो अपना ब्याह करने गया है, अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा?
0: नारायणी, ना ना, वो अभी रोना धोना बंद कर। मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था कि बाबू बाबू के चक्कर में ना पड़। जो हो गया तो हो गया, उसे भूल जाने में ही तेरी भलाई है।
1: पल में मानो जैसे आ गया।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक जंग लगी तलवार की पहली कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास

0: इस सीधी ट्रेन से सागर और बुंदेलखंड के लोगों को इलाज, व्यापार और शिक्षा के लिए दक्षिण भारत जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। प्रदेश में आज मेगा अपार आईडी दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रत्येक विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाई जा रही है। यह आईडी विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में सहायक होगी। भाजपा के दोनों प्रत्याशी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल आज राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस ने मंदसौर की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून है। CBSE ने 12वीं के अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक आवेदन जमा कर सकेंगे। भोपाल के मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आज शाम 6:30 बजे से महुआ महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया जा रहा है। महोत्सव के पहले दिन राजा लोहांगुड़ी नृत्य नाट्य का आयोजन होगा। प्रदेश में मानसून से पहले ही प्री मानसून जमकर बरस रहा है। बीते 24 घंटों में 20 से अधिक जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई और आज भी यही मौसम बना रहेगा। और भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। जापान के काकामिगाहारा में यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

तकदीर भी बदलेगी तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत न हार मंजिल के मुसाफिर, बस मेहनत कर एक दिन जिंदगी भी बदलेगी। मैनो इसी जोश और उमंग के साथ हम फिर हाजिर हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला सभा लेकर। तो बहनों स्वीकार कीजिए अर्चना का नमस्कार। प्रकृति का पोषण करें ताकि भविष्य समृद्ध हो, वन्य जीवों की रक्षा करें, जैव विविधता को संरक्षित करें, प्रदूषण मुक्त पृथ्वी हमारा अधिकार। मैनो सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को तो पूरा करे और साथ ही आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं और संसाधनों से समझौता नहीं करता। बहनों आज विश्व तेजी से औद्योगिकरण, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि का सामना कर रहा है, जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में सतत विकास की अवधारणा मानव जीवन, पर्यावरण और आर्थिक प्रगति के बीच संतुलन स्थापित करने का मार्ग प्रदान करता है। मैनो किसी भी समाज का विकास तभी संभव है जब महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर प्राप्त हों। लंबे समय तक महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और निर्णय लेने के अधिकारों से वंचित रखा गया। मैनो इस असमानता के कारण समाज की आधी आबादी अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पाई। सतत विकास लक्ष्य 5 इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है और महिलाओं को समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। मैनो जब महिलाओं को समान अधिकार मिलते हैं तो वे अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इससे आर्थिक विकास तेज होता है, गरीबी कम होती है और जीवन स्तर में सुधार आता है। यही कारण है कि लैंगिक समानता को सतत विकास की आधारशिला माना गया है। मैनो महिला सशक्तिकरण का सीधा संबंध भविष्य के निर्माण से है। पढ़ी लिखी महिला अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार प्रदान करती है। इससे एक जागरूक और जिम्मेदार पीढ़ी का निर्माण होता है जो भविष्य में देश और समाज के विकास में योगदान देती है। मैनो महिलाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर मिलने से वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनती हैं। इससे परिवार की आय बढ़ती है और समाज की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। मैनो आर्थिक रूप से सशक्त महिलाएं अपने निर्णय स्वयं ले सकती हैं और समाज में आत्मविश्वास के साथ अपनी भूमिका निभा सकती हैं। बहनों हमारा आने वाला कल केवल आर्थिक विकास पर ही निर्भर नहीं है बल्कि पर्यावरण संरक्षण पर भी आधारित है। यदि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण नहीं किया जाएगा तो भविष्य की पीढ़ियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। महिलाएं पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। बहनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाएं जल संरक्षण, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और वृक्षारोपण जैसे कार्यों में अपनी पूर्ण भूमिका निभाती हैं। बहनों जब महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है तो पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यक्रम अधिक प्रभावी बनते हैं। बहनों सतत विकास लक्ष्य 5 इन मूल्यों को और मजबूत करता है। जब महिलाओं को शिक्षा और अवसर मिलते हैं तो वे सांस्कृतिक परंपराओं, कला, साहित्य, संगीत और लोक परंपराओं के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मैनो महिलाएं परिवार की प्रथम शिक्षिका होती हैं। वे बच्चों को संस्कृति, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों का ज्ञान देती हैं। इस प्रकार हमारी सांस्कृतिक विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपती हैं, तो हमारी सांस्कृतिक पहचान और अधिक मजबूत होती है। आइए बहनों सुन लेते हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।

0: बहनों, भारत में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक है महत्वपूर्ण लखपति दीदी योजना। इस योजना के अंतर्गत उन महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाता है जो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और अपने परिवार की आर्थिक आय 1 लाख या उससे अधिक तक पहुँचाना चाहती है। सरकार का उद्देश्य लाखों ग्रामीण महिलाओं के उद्यमिता और स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। मैंने इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जैसे कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, सिलाई कढ़ाई, डिजिटल सेवाएं तथा अन्य प्रकार के छोटे छोटे व्यवसाय। मैंने इसके अतिरिक्त महिलाओं को ऋण सुविधाएं, बाजार से जुड़ाव और तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं सामूहिक रूप से कार्य करती हैं और अपने व्यवसाय का विस्तार करती हैं। बहनों, लखपति दीदी योजना ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे परिवार तथा समाज में अधिक सम्मान प्राप्त कर रही हैं। अनेक महिलाएं छोटे व्यवसाय स्थापित कर अपने परिवार की आय में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इस योजना ने महिलाओं को केवल आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाया है। हालांकि बहनों, यह योजना अत्यंत लाभकारी है, फिर भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और जागरूकता की कमी, बाजार तक सीमित पहुंच व तकनीकी ज्ञान का अभाव कई बार महिलाओं की प्रगति में बाधा बनता है। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन आवश्यक है। बहनों, यह कहा जा सकता है कि लखपति दीदी योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बहनों, इस योजना का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाए तो लाखों महिलाएं अपने जीवन में समृद्ध और आत्मविश्वास का नया अध्याय लिख सकती हैं। बहनों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहनों, आप सभी ने अपनी दादी, नानी, मम्मी को जरूर सुनते हुए देखा होगा रेडियो, जिसको सुनने के बाद उन्हें सुकून महसूस होता था। तो आइए बहनों, हम बातचीत करते हैं अपनी दादी की नातिन श्रुति शर्मा से, दादी की याद में सुखद रेडियो के अनुभव।
1: नमस्ते, मेरा नाम श्रुति शर्मा है। आकाशवाणी का

0: भी नाम सुनती हूँ तो, और अपनी दादी से पूछती हूँ कि उनके क्या अनुभव रहे हैं आकाशवाणी और रेडियो के साथ खास तौर पर, तो वो बताती हैं कि रेडियो मात्र उनके लिए मनोरंजन का साधन नहीं था, रेडियो उनके लिए बाहरी दुनिया से जुड़ने का एकमात्र माध्यम था। पुराने समय में पूरे घर में एक ही रेडियो हुआ था और वो उसी को पूरा परिवार बैठकर उसके विभिन्न कार्यक्रमों को सुनता था। वो बताती हैं कि पुराने समय में विविध भारती के बहुत से ऐसे प्रोग्राम आते थे जिसमें कि फिल्मी गीत आते थे, और वो कहती हैं कि वो फिल्मी गीतों का इंतज़ार उन कार्यक्रमों का इंतज़ार बहुत बेसब्री से किया करती थी जिससे वो नए फिल्मी गीत उस समय के सुन पाएँ। और वो बताती हैं कि केवल मनोरंजन ही नहीं, उसमें समाचार, खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और सभी जानकारियाँ भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दी जाती थी। आकाशवाणी और रेडियो जो है उनके लिए ऐसा एक अनमोल याद है जिसका नाम लेते ही उनके चेहरे पर खुशी अलग ही दिखाई पड़ती है, जिससे उनकी सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो कहती हैं रेडियो हमारे लिए ऐसा है जैसे रेडियो, और आज के समय में जो इंटरनेट, मोबाइल और मनोरंजन के और भी जो साधन चल रहे हैं तो उसमें फ़र्क ये बताती हैं कि रेडियो हमारे लिए ऐसा है जैसे मटके का पानी, और बाकी जो अभी चल रहे हैं इंटरनेट और मोबाइल, ये साधन ऐसे हैं जैसे फ्रिज। तो मटके का पानी जो होता है उससे हम पिए तो बीमार नहीं पड़ते, वो ठंडक भी प्रदान करता है, मगर फ्रिज हमें ठंडक तो देता है, पानी भी ठंडा रखता है लंबे समय तक, पर उसमें ये भी रहता है कि वो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है और हमारा गला बैठ सकता है और पर्यावरण को भी वो नुकसान पहुंचाता है। तो हाँ, मेरी दादी सभी गाने रेडियो पर ही सुना करती थी। जो भी विविध भारती के पहले शाम को प्रोग्राम आया करते थे वो उनका, कहती हैं कि वो उनका बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती थी, और जब कोई और रेडियो लिया रहे तो वो उन सोचती थी कि ये कब हटे और मैं बैठूं रेडियो के सामने और अपना प्रोग्राम। बच्चे, बूढ़े, जवान, तो जो बूढ़े लोग हुआ करते थे बताती हैं कि वो समाचार और ये स्वास्थ्य, शिक्षा की सभी जानकारियां लेते थे, और फिर जो अभी जवान लोग रहे थे जैसे वो खेल और बाकी जो विभिन्न समाचार उनको सुना करते थे, और जो फिल्मों के शौकीन हुआ करते थे वो फिल्मी गीत और जो भी फिल्म अभिनेताओं वगैरह के जो साक्षात्कार इंटरव्यू आया करते थे उनको सुना करते थे जिससे वो उस दुनिया से जुड़ पाएँ।
1: आपकी दादी अपने आप को कैसे अनुभव किया करती थी रेडियो के साथ?
0: मेरी दादी जो हैं वो सभी तरीके के प्रोग्राम सुना करती थी। जब बच्चों का प्रोग्राम आया करता था तो वो बच्चा बन जाती थी, युवाओं में का प्रोग्राम आया करता था तो उनमें उत्साह और उमंग भर जाता था, और जब भी फिल्मी गीत आते थे तो वो उसी उस फिल्मों के प्रति इतनी उत्सुक हो जाती थी कि जैसे वो उसी सेट पर हों। तो सभी प्रोग्रामों को बड़े ही उत्साह के साथ सुना करती थी, चाहे प्रोग्राम कोई भी आए, रेडियो उनके लिए ऐसा साधन था।
1: दादी अब आपकी बोल नहीं पा रही हैं, अच्छे से बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन आपको इतना अच्छा अनुभव करा दिया है उन्होंने रेडियो के बारे में कि आपको भी इच्छा होती होगी कि हम भी दादी के ज़माने में हुआ करते थे।
0: दादी मुझे सीख दिया करती हैं कि जो इंटरनेट और जो आजकल के साधन हैं इनको छोड़कर रेडियो भी सुना जाए, तो मैं भी कभी कभी रेडियो सुन लेती हूँ, और जो उसमें गीत आते हैं वो भी मैं कभी कभी गुनगुना लेती हूँ। रेडियो ने बहुत प्रभाव डाला है, जो मतलब जेन जी जो अभी हमारी जनरेशन चल रही है उसमें, वो भी कई बार सोचती है कि वो भी रेडियो सुने, मगर जो मिलेनियल्स और उससे पहले की जनरेशन है उनके जीवन का रेडियो और आकाशवाणी एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जिसमें उन्होंने अपना पूरी युवावस्था और अपना बचपन बिताया है।
1: श्रुति जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बहनों, अब सुन लेते हैं गीत

मैंने बाजार में पुदीना खूब आ रहा है और पुदीना तो एक सुगंधित औषधीय पौधा है जिसका उपयोग भोजन, पेय पदार्थों और आयुर्वेदिक उपचारों में किया जाता है। इसके लाभ भी बहुत हैं। यह पाचन को बेहतर बनाता है, मुख की दुर्गंध दूर करता है, सर्दी जुकाम में राहत पहुंचाता है, शरीर को ठंडक प्रदान करता है, त्वचा के लिए भी लाभकारी है पुदीना। मैंने पुदीना कम कैलोरी वाला होता है। यह भोजन का स्वाद बढ़ाने का एक अच्छा प्राकृतिक तरीका है, इसीलिए

लहसुन की कलियां, एक बड़ा चम्मच नींबू का रस, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा, स्वादानुसार नमक, 2 से 3 बड़े चम्मच पानी। मैनो बनाने की विधि इस प्रकार है। पुदीने और हरी धनिया को धो लें, फिर मिक्सर में पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन डालें, फिर इसमें नमक, भुना जीरा और नींबू का रस मिलाएं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पीस लें, फिर एक कटोरी में निकाल लें। लीजिए, तैयार हो गई आपकी पुदीने की हरी हरी चटनी, जिसका आनंद आप समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सभी के साथ ले सकते हैं और रोज के खाने का भी स्वाद बढ़ा सकते हैं। आइए बहनों, अब सुन लेते हैं नमक हलाल फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार और आशा भोसले ने।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति था। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह।

0: 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
1: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
2: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है नरेश सिंह बघेल द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है डॉक्टर अंजू उपाध्याय द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अंजू उपाध्याय द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही दिनों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने लगे। हर कदम पर रहे हो साथ साथ, मनोरंजन समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।
2: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है यार रहमान की आवाज़ में फिल्म तेरे इश्क में से।

इरशाद कामिल के लिखे बोल, ए आर रहमान का संगीत और उन्हीं की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म तेरे इश्क में से। कार्यक्रम का अगला गीत प्रस्तुत है आपके लिए नीति मोहन की आवाज़ में फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही से।

0: हनी बनी का संगीत सागर के लिखे बोल, नीति मोहन की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 का आयोजन आज इंदौर में किया जा रहा है। इस मंच में 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार और निवेश के नए अवसरों की खोज करना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान विनिर्माण सत्र में फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वहीं सेवा सत्र में आईटी, पर्यटन, फिनटेक और शिक्षा को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय निशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम जल्द ही विदिशा मेडिकल कॉलेज में सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं।
1: हम विचार कर रहे थे कि टाटा मेमोरियल की यूनिट कैसे लाएं, तो दो चीजें आई, एक परमानेंट अस्पताल बनाना है, उसमें वो समय लेकिन जिनको आज कैंसर है उनका क्या करें, वो इंतजार नहीं कर सकते 3 साल 4 साल के, बाकी प्रक्रियाएं पूरी होती रहेगी। सुविधाएं तत्काल मेडिकल कॉलेज विदिशा में हम लोग प्रारंभ करते हैं। ये स्क्रीनिंग का, जांच का और परामर्श का शिविर लगाया जाए, हम वो चीजें जो आज जरूरी कर लें। डे केयर सेंटर यहाँ टाटा मेमोरियल यहाँ शुरू करेगा, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं।
0: प्रदेश में राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देशों के पालन में सभी जिलों में आज मेगा अपार आईडी दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रत्येक विद्यालय में पालकगण आधार एवं सहमति पत्र के साथ उपस्थित होकर बच्चों की अपार आईडी बनवाएंगे। अपार आईडी विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में सहायक होगी। पूरे प्रदेश में मानसून की दस्तक से पहले ही प्री मानसून गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में 20 से अधिक जिलों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज गुना, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, देवास, हरदा और बैतूल जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां तेज आंधी, गरज चमक और भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर संभागों के कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और खुले स्थानों से बचने की सलाह दी गई है। प्रदेश के मंडला जिले में आज तड़के बीजाडांडी थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर तीर्थयात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 25 यात्री घायल हो गए, जिनमें 11 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी गंभीर घायलों को बेहतर उपचार के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। वहीं शाजापुर जिले में कल देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर मजदूरों से भरी एक बस आगे चल रहे लकड़ी से लदे ट्रक से जा टकराई। हादसे में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 18 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक कुशल रणनीतिकार और महायोद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने साहस और शौर्य से मराठा साम्राज्य के विस्तार के साथ मुगल शासन को प्रभाव

0: क्वीन कर दिया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला जिले के ग्राम दाढ़ी में आयोजित रात्रि चौपाल में कलेक्टर ने ग्रामीणों से जनसंवाद किया। जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में हरित पर्यावरण और स्वस्थ भविष्य के लिए औषधीय पौधे विषय पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीआरपीएफ नीमच के मेन्स क्लब में 25 जून को पेंशन अदालत एवं कल्याण एवं पुनर्वास बैठक का आयोजन किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नर्मदापुरम जिले की नगर पालिका परिषद को वर्ष 2024-25 का वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया। झाबुआ कलेक्टर कार्यालय परिसर एवं कार्यालयीन उद्यान में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
3: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
4: With Nepal, we have an expansive agenda.
5: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
4: Partnership that we have with Nepal.
1: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
6: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस

0: से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
1: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले दो दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
2: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने IPL 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति है और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक। में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार

0: वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: और कब लगाएं इस फसल को
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तंवर। कार्यक्रम आपकी फरमाइश जहां आपको हम सुनाते हैं आपके पसंद के गीत और आपके पत्रों को भी हम शामिल करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के पहले गीत के साथ, जो है कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। साथ है मोहम्मद अजीज और फिल्म का नाम है खुदा गवाह। इस गीत की फरमाइश हमें आई है छत्तीसगढ़ से, देवरी भाटापारा से। लिखा है हमारे श्रोता गनूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री ने। इसके अलावा एक और पत्र हमें मिला है जो कि है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से, हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक की तरफ से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल मोहम्मद अजीज़ और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म खुदा गवाह से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है गोरा और काला और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कब्रुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान, पोत्रा मुस्तवा खान, रऊफ भाई और शाहिद भाई की तरफ से। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और

वैशाली कटनकर ने भी हमें पत्र भेजा है। कोटरा नारायणपुर बाबा पट्टी पलिया से हमें लिखा है ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। दिव्या ने वादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल रॉय की भी फरमाइश आई है। और इसके अलावा पटेल नगर मलोट पंजाब से हमें लिखा है रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बीवी आरजू जाजौरिया ने। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म गोरा और काला से। कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुन रहे हैं आप, और अगली फरमाइश हमें मिली है औरंगाबाद से। लिखने वाले श्रोता हैं राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। इसके अलावा बनिया पारा धमतरी प्रदेश छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, पूजा शरद और उनका पूरा परिवार। और इन्होंने फरमाइश की है जिस गीत की, वो है सरमागा की आवाज़ में फिल्म निकाह से। तो लीजिए प्रस्तुत है ये गीत।

रवि का संगीत हसन कमाल के बोल, सलमा आगा की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म निकाह से। कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आपकी अगली फरमाइश को सुनने का, और वो है फिल्म नवरंग से आशा भोसले और मन्ना डे की आवाज़ में। और इस गीत की फरमाइश मिली है हमें जयराज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मिन और प्रयागराज भट्ट की तरफ से। इसके अलावा एक और पत्र मिला है हमें लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, भिलाई से मुकेश शर्मा और दतरेंगी से भागवत वर्मा की तरफ से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

0: सी रामचंद्र का संगीत भरत व्यास के लिखे बोल आशा भोसले और मन्ना डे की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म नवरंग से। और इसी गीत के साथ अब वक्त हो चला है कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आपसे विदा लेने का। इसी तरह हमें अपने पत्र अपनी फरमाइशें भेजते रहिए। हमारा पता नोट कीजिए, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल 462002। नमस्कार, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 का आयोजन आज इंदौर में किया जा रहा है। इस मंच में 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय निःशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर का शुभारंभ किया। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा के दोनों प्रत्याशी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन दाखिल किया। प्रदेश में आज मेगा अपार आईडी दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रत्येक विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाई जा रही है। यह आईडी विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में सहायक होगी। भोपाल की मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आज शाम 6:30 बजे से महुआ महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया जा रहा है। महोत्सव के पहले दिन राजा लोहांगुड़ी नृत्यनाट्य का आयोजन होगा। मौसम विभाग ने आज गुना, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, देवास, हरदा और बैतूल जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां तेज आंधी, गरज चमक और भारी बारिश की संभावना है। और

भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 हॉकी टूर्नामेंट में फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। जापान के काका मिगाहारा में यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: मनचाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हमें खत लिखा है, आप हैं अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर और तन्वी गौहर। ये खत हमें मिला है अमरावती कल्याण नगर से रमेश किल्लेकर, शकुंतला किल्लेकर, आराध्या किल्लेकर और माही किल्लेकर का। और ये खत हरियाणा से सेक्टर 18 जगाधरी से लिखा है विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी ने। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म महबूब की मेहंदी का गीत, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा। ये खत हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाणे, अर्चना गोंडाणे, प्रणय प्रसिद्धि प्रतिभा गोंडाणे का, और कोटवा नारायणपुर से आप हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत। किशोर कुमार की आवाज है, फिल्म का नाम है अभिमान, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत SD बर्मन का।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं आप सबकी पसंद पर आधारित कार्यक्रम मनचाहे गीत। आइए सुनते हैं अगला गाना। फिल्म का नाम है अमरदीप। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी और आशा भोंसले, गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीत दिया है सी रामचंद्र ने। सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम, सावित्री साहू ने, और दत्तरेंगी भाटापारा से ये हैं हीरामणि वर्मा। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये दो गाना।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे हैं। वरुण जौलका से महेंद्र सरकते, विजया सरकते, मिलिंद सरकते, और ये खत है, आपने लिखा है गुजरात से नूर मोहम्मद लखाणी, जुबैदा खातून लखाणी, विहान लखाणी ने। भामेश्वर से सुनना चाहते हैं सिराज, हिना, रुबीना और इनके परिवार वाले। इसी गाने को सुनना चाहते हैं महेंद्र सटकटे और उनके परिवार वाले। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म कटी पतंग का गीत। गीत रचना आनंद बख्शी की है और तर्ज राहुल देव बर्मन की।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था कटी पतंग। और अब आप सुनना चाहते हैं रवि के संगीत निर्देशन में हसन कमाल का लिखा गीत, आवाज सलमा आगा की और फिल्म का नाम निकाहा। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे हैं। ककराला बदायूं से डॉक्टर मसरूर खान, मुसर्रफ राज खान, अमजद अंसारी, दीपक वाल्मीकि और इनके परिवार वाले इसी गाने को सुनना चाहते हैं। शेगांव बुलडाणा महाराष्ट्र से संतोष एस काले, तेजस एस काले, लोकेश एस काले और इनके परिवार वाले। ये खत हमें मिला है अंबेडकर सागर मध्य प्रदेश से रामसखी परमानंद, सौरभ गौरव, किशोरी बोस, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू, टुनटुन और इनके परिवार वालों का। और आप हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफाबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, मोताला से कुमार प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, कलड़ा रिसोर्ट से आप हैं सानवी सरवत और इनके परिवार वाले। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत, आवाज़ सलमा आगा की और ये फिल्म है निकाह।

0: रवि के संगीत निर्देशन में अभी आपने हसल कमाल का लिखा ये गीत सुना। आवाज सलमा आगा की थी और फिल्म का नाम था निकाह। इस गाने के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है।
1: मनचाहे गीत।
2: मनचाहेगी
0: और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

0: विक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियाँ। लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब। आज आप इस नाटक का पहला भाग सुनेंगे।
1: शहजादियों से भला ये कैसे हो सकता कि ये आज लाल किले के इस भरे दरबार में नाचे।
2: अब दिल्ली के तख्त पर मेरा कब्जा है, बादशाह मैं हूँ। तुम सब मुगल शहजादियों और बेगमात को आज मेरे सामने भरे दरबार में नाचना होगा।
3: गुलाम कादिर रोहेला का मुगल शहजादियों और बेगमात पर कितना जुल्म है।
4: हाँ।
3: आलम शाह सानी ने इन्हें पाला पोसा और ये उसी की आंखें फोड़कर आज हरम की बेगमात को दरबार में नचा रहा है।
4: ये सब मंसूर अली की तगा और अंग्रेजों की साजिश से हुआ है।
3: अंग्रेज जब हिंदुस्तान को हड़पना चाहते हैं।
4: नहीं, जब तक हिंदू मुस्लिम सिख और मराठे बादशाह के साथ हैं ऐसा नहीं होगा।
3: तुम ठीक कहते हो, आज ये सब गुलाब की ऐसी पंखुड़ियां हैं जो गुलाब के इस फूल की हिफाजत के लिए मैदान जंग में आ गए हैं।
4: हाँ, ये गुलाब की पंखुड़ियां नहीं बल्कि तलवार की धार है जो विदेशी ताकत को काट कर रख देंगी।

0: हुई तितली को गिराकर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा।
1: मंजूर अली
2: जी आलमपना,
1: आज कितने दिन हो गए इन अंग्रेजों से लोहा लेते, लेकिन ये लोग भी गजब के चालबाज हैं।
3: बिहार पर दोबारा हमला भी किया, लेकिन उस जनरल कार्निक ने फिर हमारे कुछ लोगों को अपनी तरफ मिलाकर हमें मात दे दी। इतने फर्माबरदार बहादुरों के होते हुए भी कुछ गद्दार लोग इन गोरों के जाल में फंस ही जाते हैं और बाई से शिकस्त बन जाते हैं।
2: आलमपना, वाकई इनकी जासूसी भी बेमिसाल है। इस पर भी ताज्जुब है कि ये लोग फतेहयाब होने के बाद भी हुजूर के साए में ही पनाह लेते हैं, खुद को जहां पनाह की रियाया तस्लीम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपना जाल फैलाने से बाज नहीं आते। अब यही कारने
3: का कैसा भीगी बिल्ली बनकर हमारे हुजूर में पेश हुआ, जमीबोस करता हुआ कंपनी की तरफ से नजर पेश की और शाही फौज के खिलाफ जंग करने के लिए मुआफी की दरख्वास्त की,
2: और हुजूरे वाला ने उसे मुआफ भी कर दिया। लेकिन इनकी खास मंशा सिर्फ यही थी कि आलम पनाह उनके बनाए बंगाल के नवाब मीर कासिम की शाही फरमान के जरिए तरक्की फरमा दे और इनके इरादों पर नकाब पड़ा रहे।
3: हाँ मंजूर अली, लेकिन हमने भी इनके साथ पटना जाना इसलिए कबूल कर लिया था कि इन लोगों के अंदरूनी हालात व ताकत का सही अंदाजा हो सके, और इसमें हमें कामयाबी भी हासिल हुई।
2: जी हाँ आलम परवर, अब की बार पूरी तैयारी के साथ इन लोगों को शिकस्त फाश देनी चाहिए।
3: इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, अब इनकी हरकतों से तंग आ चुके हैं हम।
2: जी हाँ जहां पना, हमारे जासूस बराबर ऐसी खबरें ला रहे हैं।
3: नवाब शुजा के पास मीर कासिम ने खत भी भेजा है कि शायद उसे जल्द ही बंगाल छोड़ना पड़े, क्योंकि अंग्रेज कंपनी उसे हटाकर मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बनाने की फिराक में है।
2: जहां पना, अगर ऐसा हुआ तो हमारी ताकत और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मीर कासिम की सिपाह भी हमारे साथ हो लेगी।
3: ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या सूरत बनती है, लेकिन बरसात गुजरने से पेशतर हमला करना मुमकिन नहीं होगा। हाँ मंजूर
2: जी आलमपना,
3: उस अंग्रेज लड़की के बारे में कुछ?
2: जी आली मकाम, उसी के बारे में हुजूर से गुजारिश करने के लिए आया था।
3: अंग्रेजी रक्स और मुसीकी तो हमें कतई पसंद नहीं आई, मगर वो कमसिन अंग्रेज लड़की, उसे हमारे रूबरू पेश किया जाए।
2: जो हुक्म वाली जा।
4: तस्लीम।
3: तस्लीमात तस्लीमात, क्या नाम है तुम्हारा?
4: मेरा नाम एमिली है योर मैजेस्टी।
3: ये क्या अल्फाज बोलती हो तुम?
4: जी योर मैजेस्टी।
3: हाँ हाँ, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तुम हमें जहां पनाह या आलम पनाह कहो।
4: आलम पनाह, आलम पनाह।
3: बिल्कुल ठीक, तुम तो हिंदुस्तानी जुबान अच्छी तरह जानती हो।
4: जी जी हाँ, जाए पाना यहाँ बचपन से रही हूँ। तो आलम पना, आपने हमें पसंद किया या नहीं?
3: जरूर जरूर, हमने तुम्हें बहुत पसंद किया है।
4: ओ, हमारा अच्छा किस्मत है, हमने भी आलम पना को बहुत पसंद किया। आप बहुत रहम दिल हैं, हम यहाँ आपकी पनाह में रहने चाहते हैं।
3: ठीक है एमली, तुम यहाँ रह सकती हो।

0: आप।
1: हाँ, हमें भी तुम अच्छी लगती हो। तुम जब चाहो आ जा सकती हो, लेकिन सिर्फ हमें बताकर।
0: ओह शुक्रिया आलिम पिना, कितना अच्छा है, कितना ग्रेट है, बहुत बहुत बड़ा दिल है आपका।
1: नवाब शुजा, अब तो नवाब मीर कासिम अली भी हमारे साथ शरीक हो गए हैं।
2: जी हाँ जहांपनाह, इन चालबाज अंग्रेजों से किसी भी नवाब की नहीं पट सकती। ये तो बंगाल में भी ऐसा नवाब चाहते हैं जो इनके इशारों पे नाचे।
1: अब मीर जाफर को फिर मसनद नशी कर दिया और कासिम को बंगाल से खदेड़ दिया।
2: जी हाँ आलमपना, अंग्रेज तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर पूरी तौर से हावी हो जाना चाहते हैं।
1: यही नहीं शुजा, इनके मंसूबे तो पूरे हिंद को हड़प लेने के मालूम होते हैं, लेकिन लेकिन हम इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी फौज में गोसाई हिम्मत बहादुर और उमराव गोसाई तो हैं ही, इनायत खान रोहिला भी शामिल हो गया है, मीर कासिम मई सिपाही आन पहुंचा है।
2: जी हां जहांपनाह, और बनारस के राजा बलवंत सिंह भी मैं अपनी पलटन के हमारी इमदाद के लिए आ गए हैं। जर्मन कप्तान सैमरे भी अपने तोपखाने को एकदम मुस्तैदी से तैयार कर रहा है।
1: नवाब
2: जहांपनाह,
1: अगरचे शिकस्त दर शिकस्त होती रही है, ताहम हमारे फर्माबरदार सिपहदारान का अभी भी हौसला बुलंद है। हमारी सिपह वाकई दुनिया के लिए एक मिसाल है। देखो देखो, जिस तरह ये गुलाब का फूल पंखुड़ियों की वजह से इतना दिलकश बना है, उसी तरह हमारी फौजों में भी हर कौम और मजहब के बहादुर मिलकर एक कुल की शक्ल में काम करते हैं। इसी पर हिंदुस्तान को फख्र है।
2: जी हां आली मकाम, इसमें कोई शक नहीं है।
1: पंखुड़ियां गिरती हैं, मुरझाती हैं, लेकिन नए गुल और भी खूबसूरती से जहूर में आते हैं। चंद गद्दार मुरझाई पंखुड़ियों की तरह भटक जाते हैं, यही बदनसीबी है। इसके बावजूद कई राजा, नवाब और अमीर नई पंखुड़ियों की तरह हमारी इमदाद के लिए आन पहुंचे हैं। इस दफा अंग्रेजों पर पूरी ताकत से हमला करना है, ताकि हिंदुस्तान से इनका नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाए।
2: जी हां आलमपना, हुजूर के इकबाल से इस दफा हमारे जासूस भी बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। नवाब मुनरुद्दौला का जासूसी दस्ता खबर लाया है कि मेजर हेक्टर मुनरो की फौज में कुल 6-7 हजार सिपाही हैं और सिर्फ 20 तोपे।
1: फिर तो हमारी इतनी बड़ी फौज और 100 से ज्यादा तोपों के मुकाबले में उनका ठहर पाना नामुमकिन है। हम जल्द से जल्द इन सरकशों को सबक सिखाना चाहते हैं, हिंदुस्तान से इनका नामो निशान मिटाना चाहते हैं।
2: जी आली कद्र, हमें कप्तान सैमरे ने बताया है कि हमारी 133 तोपें बिल्कुल सही हालत में हैं, और उधर मीर कासिम और उमराव गोसाई के जासूसों ने भी काबिले तारीफ इंतजाम किया है। उन्होंने अंग्रेजी फौज में कुछ ऐसे लोग छोड़ रखे हैं जो ऐन वक्त पर वहां के अफसरों और सिपाहियों को हमारी तरफ मिल जाने को उकसा रहे हैं।
1: वाह बहुत खूब, कुछ कामयाबी हासिल हुई।
2: जी हां सरकार, हमें पुख्ता खबर मिली है कि करीब 70-80 छोटे बड़े अफसर और नायक और करीब 1000 सिपाहियों की पलटन ऐन वक्त पर हमसे आन मिलेंगी।
1: वाह वाह, ये तो अहम खुशखबरी है। अब हम शर्तिया फतेयाब होंगे, इन 5-7 अंग्रेजों को मुल्क से निकाल बाहर करेंगे।
2: बेशक आलमपना, बेशक इस बार हम यकीनन कामयाब होंगे और इन 5-7 अंग्रेजों को मुल्क से बाहर निकाल देंगे। लेकिन जहांपना, अगर इजाजत हो तो एक अहम मामला और हुजूर के इल्म में।
1: जरूर नवाब, बोलो बोलो।
2: अली कद्र, वो अंग्रेज लड़की जिसको हुजूर ने पनाह दी थी, उसका रवैया इन दिनों कुछ अजीब सा नजर आ रहा है।

0: तुम्हारा मतलब एमली से है, क्या हुआ?
1: हुजूर, वो शुरू के कुछ महीनों में तो काफी संजीदगी और बुर्दवारी से।
0: और अब क्या हुआ उसको?
1: हुजूर आला, पिछले एक माह से उसकी हरकतें काफी हैरत अंगेज हो चली हैं। वो शाही फौज के खेमों में मुख्तलिफ सिपादारान, हुक्काम वगैरह से अक्सर बड़ी बेतकल्लुफी से मिलती रहती है।
0: नवाब शुजा, वो भोली लड़की जरा चुलबुली जरूर है, फिर इन अंग्रेजों की तहजीब में औरतों को काफी आजादी है।
1: वो तो वजह है जहां पना, लेकिन हाल ही में मेरे कुछ खास हरकारों ने खबर दी है कि ये खेमों से दूर जाकर अंग्रेज घुड़सवारों से भी गुफ्तगू करने लगी है।
0: ये तो बहुत संगीन मामला है।
1: जी हां अली मकाम, जब से हम लोग बक्सर के नजदीक पहुंचे हैं उसकी सरगर्मियां और भी बढ़ गई हैं।
0: इस वक्त वो कहां है?
1: वो इस वक्त शाही हरम के खेमे में है, यहां से तकरीबन 4-5 कोस।
0: उफ, नवाब शुजा, इधर सामने मेजर मुनरो अंग्रेजी सिपह के साथ आगे बढ़ रहा है, उधर ये लड़की न जाने क्या क्या गुल खिला रही होगी।
1: आलमपना, मैंने ख्वाजा सराओं और कुछ चुनिंदा नायकों को ताकीद कर दी है कि उस लड़की पे कड़ी नजर रखें, मगर हुजूर पता नहीं कि इससे पेशतर क्या किया हो उसने।
0: मगर हमें इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी गई?
1: जब तक कुछ पुख्ता सबूत न मिले आलम पनाह को जहमत देना मुनासिब न होता, और इसके अलावा हुजूर इस जगह के लिए कूच भी कर चुके थे।
0: शुजा, ऐसे मशकूक शख्स को फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, बाद तफ्तीश असलियत का पता लग जाता।
1: हुजूर, मैंने आपके खौफ के मारे ये जुर्रत करना मुनासिब न समझा।
2: हुजूर, बेगम साहिबा बारियाबी की इजाजत चाहती हैं।
0: कौन? सकीना बेगम? यहां? फौरन भेजो।
2: जी जहां पना।
3: आलम पना, गुस्ताखी मुआफ फरमाए।
0: हाँ हाँ, बोलो बेगम, यहां क्यों कर आना हुआ हरम से मैदान जंग में?
3: आलीजा, मैंने एमिली को गिरफ्तार करने की जुर्रत की है। वो कुछ गोरे घुड़सवारों से गुफ्तगू कर रही थी, कुछ कागजात भी।
0: उफ सकीना, घुड़सवारों को भी गिरफ्तार कराया या नहीं?
3: पहले सिर्फ दो थे, भागते भागते एक को गिरफ्तार कर लिया, दूसरा कुछ कागजात लेकर भाग रहा था तो हमारे जवानों ने उसका पीछा किया, मगर आगे जाकर 20-25 गोरे सवार और मिले और बंदूकों के फायर करते हुए सब भाग निकले। वक्त की नजाकत देखकर मैं खुद चली आई।
0: दूसरा सवार पकड़ा नहीं जा सका?
3: जी नहीं आलमपना।
0: वो कमीनी कहाँ है?
3: जी, बराबर वाले खेमे में ख्वाजा सरा मंजूर अली की हिरासत में है।
0: नवाब शुजाउद्दौला को बुलाओ।
1: जहां पना ने याद फरमाया।
0: हाँ नवाब शुजा, तुम्हारा शुबा ठीक मालूम होता है। उस बदसाद को सकीना बेगम ने गिरफ्तार तो कर लिया है, एक आध कागज भी बरामद हुआ है, मगर दो में से एक घुड़सवार भाग निकला, कुछ कागजात भी ले भागा। अब उस सराम खोर एमिली को कोड़े मार मार कर कुल तफसील मालूम करो और हमें बताओ, बराबर के खेमे में है वो बदसाद?
1: जी आलीजा, हुक्म की तामील होगी।
0: बेगम, तुम बहुत थक गई हो, आराम कर लो, इस मामले की तहकीकात हो जाए तो अपने खेमे की तरफ वापस चली जाना, यहां ठहरना खतरे से खाली नहीं।
3: जी नहीं आलमपना, मुझे आराम की कतई जरूरत नहीं, फिर जहां हुजूर का कयाम हो वहां मुझे भला क्या खतरा हो सकता है?
0: नहीं बेगम, तुम्हारी जल्द से जल्द वापसी ही लाजिम है।
3: जैसी आलमपना की मर्जी।
1: आलमपना, मैंने तहकीकात कर ली है, अफसोस है कि बहुत खौफनाक सूरत बन गई है। एमिली ने बामुश्किल तमाम कबूल किया कि वो अंग्रेजी जासूस है। उस कागज में अंग्रेजी सिपाही के कुछ लोगों के नाम हैं जो हमसे मिल जाने के लिए तैयार थे, मगर इससे पेशतर वो हजारों नामों की फहरिश्ते मेजर मुनरो को भेज चुकी है। कोड़ों के मार से वो लहूलुहान हो गई, तब कहीं उसने जाकर
0: उस कमबख्त कमीनी को हाथियों से कुचलवा दो।

0: 진짜 이게
1: 오 잠깐만 이게 또 अंग्रेजों की तोपें पता नहीं एक एक धमाके में कितने लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा होगा
0: उफ नवाब तो क्या हमारे जासूसों की कुल मेहनत बेकार गई क्या वो हजारों को मार डालेंगे
1: हुजूर मालूम तो ऐसा ही होता है धमाके पे धमाके हो रहे हैं हजारों की मौत के पैगाम हैं ये धमाके हुजूर हमारे सिपाह में न जाने कौन कौन गद्दारी पे आमादा होगा
0: शुजा फिर भी हमें पस्त हिम्मत नहीं होना चाहिए सकीना बेगम की वापसी का इंतजाम कर दो और फौरन जंग के लिए कूच का ऐलान किया जाए और उससे पेशतर उस अंग्रेज जादी को हाथियों से कुचलवा दिया जाए

0: नवाब मुनीरुद्दौला, समझ में नहीं आता कि अभी भी हमारी गर्दिश और दुश्वारियों का दौर क्यों खत्म नहीं होता।
1: आलमपना, वक्त सबका बदलता है।
0: बक्सर की शिकस्त का कुछ और जायजा मिला?
1: जी हाँ, वही तफसील अर्ज करना चाहता था। आलमपना, हमारे करीब 2000 बहादुर मारे गए। हमारी तमाम तोपों पर मुनरों ने कब्जा कर लिया। सिपाहियों में मुर्तजा खां, मियाँ ईसा, यासीन वगैरह मारे गए।
0: ओह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
1: नवाब शुजाउद्दौला पूरे खानदान के साथ बरेली की तरफ चले गए हैं और नवाब मीर कासिम रोहेलखंड, हमारी बहुत सी सिपाह घायल हो गई है और बाकी भाग निकली है।
0: नवाब मुनीर, इस बक्सर की जंग ने तो हमारे हौसले पस्त कर दिए। अब कोई सूरत नहीं अंग्रेजों से लोहा लेने की। इतनी मुकम्मल तैयारी के बाद ऐसी शिकस्तफाश। सुना है कप्तान सेमरे भी बरेली की तरफ भाग गया है।
1: जी हाँ अली मकाम, सबको अपनी अपनी जान की पड़ी है। अवध का इंतजाम तो अंग्रेज कप्तानों ने संभाल लिया है, वो भी बड़ा जुल्म ढा रहे हैं रियाया पर।
0: तो फिर हमारी हालत बहुत ही नाजुक है इस वक्त। ताहम ये समझ में नहीं आता कि जनरल कार्निक ने हमसे मुलाकात की दरख्वास्त क्यों की है। अंग्रेज कंपनी का गवर्नर हमसे सुलह चाहता है। हमने उसे मुलाकात के लिए इजाजत का परवाना भिजवा दिया है।
1: सुना है हुजूर वाला, यह अंग्रेज नवाब शुजाउद्दौला से भी सुलह की कोशिश कर रहा है।
0: अंग्रेजों की चालबाजियां समझ में नहीं आती नवाब मुनीर।
1: बेशक आलीजा,

0: जय पना, मुझे आपकी राया इंग्लिश कंपनी का गवर्नर क्लाइव साहब ने आपके हुजूर में पेश होने का हुक्म दिया है। हम आपसे सुलह करना चाहते हैं, ये नजर कबूल करें।
1: शुक्रिया। अंग्रेज कंपनी क्या उम्मीद रखती है हमसे?
0: उम्मीद? नो नो, नहीं कुछ नहीं, सिर्फ हुजूर को इलाहाबाद और खोड़ा के जिले देना चाहती है। जयपनाह का हिफाजत करना हमारा काम होगा और आपकी वफादार अंग्रेजिया की तरफ से एक अफसर आपके पास रहेगा।
1: अफसर? वो अफसर क्या करेगा?
0: वो आपका खिदमत करेगा। अगर कोई दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाएगा तो अंग्रेजी फौज बुला लेगा और योर मैजेस्टी का मदद करेगा।
1: अच्छा अच्छा, इसके बदले में हमारी वफादार रियाया अंग्रेज कंपनी क्या चाहती है?
0: योर मैजेस्टी कुछ नहीं, बस एक फरमान, ओनली वन, शाही फरमान।
1: फरमान? कैसा फरमान?
0: जापना, बंगाल की दीवानी का फरमान।
1: बंगाल की दीवानी का फरमान? लेकिन बंगाल में तो तुमने मीर जाफर को नवाब बनाया है, फिर हमारे फरमान से क्या मकसद है?
0: योर मैजेस्टी, नवाब और शहंशाह में जमीन आसमान का फर्क होता है। सारा मुल्क का असली मालिक तो आप ही है। आपका फरमान हमारे लिए बहुत इज्जत का बायस होगा। इसके लिए हुजूर का रियाया कंपनी हुजूर को 26 मेरा मतलब है 26 लाख रुपया सालाना खिराज अदा करती रहेगी।
1: लेकिन अंग्रेज कंपनी हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में भी मदद करेगी या नहीं?
0: जरूर योर मैजेस्टी, लॉर्ड क्लाइव साहब ने भी यही कहला के भेजा है, वो जरूर मदद करेंगे।
1: ठीक है ठीक है, हमें मंजूर है। तुम अपनी तरफ से दस्तावेज तैयार कर लो, हम भी दीवानी का फरमान बहुत जल्द जारी कर देंगे।
0: शुक्रिया योर मैजेस्टी, कुल हमको इजाजत बख्शे।
1: इजाजत दी जाती है।

0: लो नवाब मुनीर, ये क्लाइव का जवाब भी आ गया। वो हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में मदद करने के वायदे से फिर गया है। यही तो एक अहम शर्त थी सुलह की, आज 5 साल बाद भी पूरी नहीं हुई।
1: जी आलमपना, इधर इस अंग्रेज कमांडर बार करके दिनों दिन दिमाग बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे मुलाजिमों से बदसलूकी से पेश आता है, कहता है हम तुम्हारे बादशाह को 26 लाख रुपए वजीफा देते हैं।
0: अच्छा कमांडर तैनात किया हमारी हिफाजत को, एहसान फरामोशों ने 26 लाख सालाना देकर हमें खरीद लिया है। बंगाल की दीवानी से करोड़ों रुपए हासिल कर रहे हैं, उसका कोई एहसान नहीं।
1: हुजूर, वो कहता है कि हमारी इजाजत के बगैर कोई शाही मुलाजिम इलाहाबाद से बाहर नहीं जाएगा।
0: गोया हम शहनशाह नहीं, इस कमीने कमांडर के कैदी हो गए।
1: लेकिन जब आलम पना के हुजूर में पेश होता है तो वो मेमना बन जाता है, जमी बोस करेगा, योर मैजेस्टी के रट लगाया जाता है।
0: मगर ये कमबख्त मेमने की खाल में भेड़िया है, भेड़िया।
1: अलीजा, अब तो मराठों के जवाब का इंतजार है। सैफुद्दीन खां को कई महीने हो गए माधोजी सिंधिया के पास गए हुए।
0: देखो क्या होता है, अब तो हमें जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचने की तमन्ना है। साबता खां किले पर काबिज है और उसका रवैया दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है।
1: जी आली कदर, वो
2: आलम पना, सैफुद्दीन ने पैगाम भिजवाया है कि मराठों ने हुजूर के शरीक दौलत होकर मदद की रजामंदी दे दी है। सिंधिया की फौजें रवाना हो चुकी हैं और यहाँ पहुँचने ही वाली हैं। उन्हीं की मदद से सैफुद्दीन मोहम्मद खान ने दिल्ली पहुँचकर जामा मस्जिद से हुजूर के शहनशाह होने का ऐलान भी कर दिया है।
0: वाह वाह वाह, ये तो अहम खुशखबरी है। मंजूर, सब सरदारान और उमरा से कह दो कि कूच की तैयारी करें।

0: जहां पना अब दिल्ली दूर नहीं।
1: ये कौन सा मुकाम है मंजूर?
0: आलम पना, ये मौजा धनौली है। यहां से शाहदरा करीब 4 मील है।
1: ओहो, तब तो दिल्ली आन पहुंचे। अरे, ये इतनी शानो शौकत से किसका जुलूस चला आता है? मंजूर, जरा पता लगाओ।

0: आलम पना, ये आली जहा वली अहद शाहजादे और बुजुर्ग बेगमें हुजूर के इस्तकबाल को आते हैं। जाब्ता खान हुजूर के खौफ से किला छोड़कर भाग गया है और उसकी सिपह भी सिर पर पैर रखकर भाग रही है।
1: वाह वाह, बहुत खूब।
0: और आलम पना, सारा इंतजाम मुकम्मल है। अब हुजूर का जुलूस शाहदरा से दिल्ली दरवाजे होकर लाल किले में दाखिल होगा।
1: लगता है मंजूर, आज हमारी मुरादें पूरी हुई और उम्मीदें भर आई।
0: हुजूर, वली अहद ने बताया है कि जाब्ता खां फौजें जमा कर रहा है।
1: वो है कहां? कहां तैयारी कर रहा है?
0: जी, वो नजीबाबाद है।
1: ठीक है, दिल्ली में तख्त नशीनी के फौरन बाद हम उस पर चढ़ाई करेंगे और बगावत की सजा देंगे। हमने माधोजी सिंधिया से भी मशवरा कर लिया है, वो भी हमें पूरी इमदाद देने को रजामंद है।

गुलाब की पंखुड़ियाँ। अभी आप सुरेंद्र कांत के लिखे इस नाटक का पहला भाग सुन रहे थे। निर्देशक मुमताज़ शकेब। आपको बता दें कि इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: Signs, lights, sound, camera, action!
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। आज सुनिए पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया। जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं।
1: तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके। मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें।
2: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
1: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
2: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी? तो फिर क्या किया आपने?

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया, टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: बहुत शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: टेरेंस, ये स्वागत मैं सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, हमारे वो तमाम लाखों करोड़ों सुनने वाले कर रहे हैं जो आपके फैन भी हैं। कितने लोग आपके ऐसे लोग दीवाने हैं जिनको डांस का डी भी नहीं मालूम है, लेकिन वो टेरेंस के दीवाने हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो श्रोताओं हैं और जो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने क्या किया, क्या किया कि इतना प्यार मुझे मिला है। मैं बहुत शुक्रगुजार अपने अपने आप को फील करवाता हूँ, और बहुत ही बहुत मैं कभी कभी ओवरवेल्म हो जाता हूँ कि यार ये कैसे हो गया और क्यों हो रहा है, मैंने कोई ऐसा बड़ा काम किया नहीं कि मैं इस प्यार का हकदार बनूं। सो
1: मैं आपको बताऊँ, ये बात मैं जानता हूँ कि क्यों हैं आप इसके हकदार। उसका कारण सिर्फ आपका डांस नहीं है, आपकी शख्सियत है, आपका स्वभाव है, आपकी विनम्रता है, आपका प्यार बांटने का सलीका है।
0: शुक्रिया।
1: ये इंसान को बहुत लोकप्रिय भी बनाता है, प्यारा भी बनाता है, और जिंदगी में काफी ऊंचाई तक ले जाता है। और अभी तो आपके लिए बहुत से आसमान बाकी हैं, बहुत से आसमान छूने हैं आपको।
0: वो तो जरूर है। और अगर दर्शक और श्रोताओं का अगर प्यार ऐसा मिला तो जरूर बहुत सारे जो मकाम जो मैं अपने लिए बनाए रखा हूँ इस उम्र में भी शायद वो मुकम्मल हो जाए।
1: तो चलिए, आपने उम्र की बात की है तो श्रोताओं तक ये बात पहुंचा देते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, और ये पहुंचेगी आपकी जन्म तारीख से।
0: हाँ।
1: जन्म तारीख मैं आपकी जानना चाहूंगा, और वो भी इस बात के साथ कि आपका जन्म कब कहाँ हुआ।
0: मेरा जन्म हुआ मुंबई में, और मैं आठवां बच्चा हूँ मेरे माँ बाप का। मेरे माँ बाप का नाम है जेवियर और मीडिया लुइस। डैडी मैंगलोर से हैं ओरिजिनली, लेकिन मुंबई में वो 10 साल की उम्र में आए और काम करने लगे, और मम्मी मुंबई से ही हैं। तो हम सभी आठ भाई बहन मुंबई में ही पले पड़े हैं। मेरा जन्म हुआ 10 तारीख को, 10 अप्रैल 1975। तो मेरी उम्र उसके हिसाब से आज 2020 में 45 साल की हो जाती है।
1: तो देखिए साहब, 45 साल के जवान, या यूं कह लीजिए नौजवान युवा डांसर के साथ मैं इस समय बैठा बात कर रहा हूँ। तो टेरेंस, आप मुझे ये बताएं कि जो बचपन का ये वक्त था मुंबई में, जब आपका जन्म हुआ, मुंबई में कहाँ हुआ, कैसे आपका बचपन बीता।
0: हाँ।
1: और ये डांस का जो एक जुनून आपके अंदर है, ये आपको कब महसूस हुआ कि मेरे अंदर ये चीज पैदा हो रही है।
0: तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। मेरा जन्म हुआ मुंबई में। एक हम रहते थे एक छोटे से बस्ती में, चौल में, हरिनिवास चौल था, पठान चौल भी था, दो दो नाम थे उसके, और बड़ी बसी बस्ती थी। हमारे घर के दरवाजे नहीं हुआ करते थे, सिर्फ पर्दे हुआ करते थे।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो बहुत प्यार मिला, और इट वाज वेरी कॉस्मोपॉलिटन। हिंदूज भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई सिर्फ एक थे नेबर्स, अदरवाइज इट वेरी कॉस्मोपॉलिटन, जो ऐसा वाला फील था। किसी के भी घर में आना जाना, टीवी नहीं हुआ करता था तभी। हाँ। सिर्फ रेडियो हुआ करता था
1: उस जमाने में, तो था
0: ना, था नहीं। और लोग बोलते भी हैं कि यार आपने इतने इतनी चीजें सही हैं, आप कहाँ थे और कहाँ आए हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं उस परिस्थिति में जन्म लिया था मैंने, तो मुझे पता ही नहीं कि इससे अच्छा भी हो सकता है। मुझे माँ बाप का प्यार बहुत बेशुमार मिला, और लोगों का प्यार बहुत जबरदस्त मिला, और यही वजह थी, ये प्यार जो मुझे मिला ये मेरे डांस की वजह से मिला। और जब मुझे वो मिला, वो बेशुमार मिला, मेरे इर्द गिर्द जो नेबर्स थे या जो मेरे समाज के जो लोग थे, वो मुझे बहुत ही एक ऊंची नज़र से देखते, क्योंकि मैं गाता था, एक्टिंग करता था, कॉपी करता था जो भी दिखता था टीवी पे या फिल्मों में, या डांस करता था। तो किसी की भी शादी होती तो मुझे बुला कहते, आजा बुलाओ बुलाओ इसको, बुलाओ उसको बुलाओ, ये नाचेगा हमारे लिए।
1: तो क्यों ना अभी मैं भी कहूँ कि टेरेंस आए, अभी टेरेंस नाचेंगे तो नहीं, लेकिन गाना तो सुना सकते हैं।
0: अरे वो जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ, लेकिन बस मुझे स्टेज पर का बहुत बड़ा लगाव हुआ था, क्योंकि मैं 6 साल का था जब मैं अपने पहले स्कूल में मेरी भर्ती हुई थी। नया स्कूल था मेरा, बांद्रा में मेरा स्कूल था, सेंट टीजर्स हाई स्कूल। तो मैं रहता था अंधेरी में, लेकिन क्योंकि मेरी माँ बांद्रा में रहती थी पहले, ओके, शादी होने के पहले, तो हमें भर्ती किया गया था एक कॉन्वेंट स्कूल में, सेंट टीजर्स हाई स्कूल। हम चार भाई वहीं पर पढ़े। तो वो स्कूल में 6 साल की उम्र में मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, और आई थिंक सीनियर केजी में, नॉट इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड, 5 साल का था। तो टीचर आई और उन्हें कहा कि अच्छा बच्चे लोग कौन हिस्सा लेना चाहेगा सिंगिंग कंपटीशन में। किसी का हाथ नहीं उठा, मेरा हाथ उठा। और मेरे में बचपन से वो ऑलवेज थिंक कि पार्टिसिपेट करना है, सब कुछ करना है, क्योंकि मैं एक खुश एनवायरमेंट में पला पड़ा। बहुत सारा तनाव था, आर्थिक स्थिति बहुत बहुत कठिन थी, डैडी के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत था, लोगों का प्यार बहुत था। और कभी कभी बच्चों के लिए उनको कुछ पता नहीं कि कितना क्या अमीर है क्या गरीब है उनके, आई थिंक आई डिडंट रियलाइज दैट, आई वॉज जस्ट हैप्पी, और मैं हर एक चीज में पार्टिसिपेट करना चाहता था। फिर दूसरी टीचर आई, बोला कि डांसिंग में कौन पार्टिसिपेट करना चाहता, मेरा हाथ उठ गया। तो ऐसे करते करते मैंने 8 जो भी कॉन्टेस्ट थे, ड्रॉइंग सिंगिंग एलिक्यूशन, पार्टिसिपेट कर दिया। बड़ी बहन जो थी वो मेरी देखभाल करती थी, मैंने उनको बता दिया कि मैंने ये कर दिया। उन्होंने बोला अच्छा, लेकिन अभी अभी मैं कैसे सिखाऊं, मुझे तो ये सब आता नहीं है। तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर लूंगा, तो मैंने कुछ भी कर लिया जो मुझे आता था, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ शायद कर लिया, तो मुझे पहला नंबर लग गया। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि वो पहली बार मैंने वो कोशिश की और वो सफल हुआ, और फिर जो तालियों की गड़गड़ाहट मैंने सुनी और जो मुझे पुरस्कार मिले, जब 2 महीने बाद प्रिंसिपल ने सर्टिफिकेट सब साथ में इकट्ठा, एक एनुअल डे होता है तो सभी सर्टिफिकेट साथ में मिलते हैं उस दिन पर, तो मेरा नाम बार बार लिया जा रहा था। तो एलिक्यूशन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सब में मैंने भाग लिया था, मैथमेटिक्स में सब में लिया था। तो वो जो खुशी, वो जो हाई, जो नशा मैंने फील किया, वो मेरे जहन से आज तक उतरा नहीं है। तो मैं मौका ढूंढता हूँ कि कब मुझे स्टेज पर कोई बुलाएगा कि मैं अपना फन या जो भी मेरा टैलेंट है मैं दिखाऊंगा, लोग मुझे वाहवाही देंगे। तो शायद उसकी लालच में मैं स्टेज का दीवाना हो गया।
1: अरे इतनी चीजें याद हैं आपको बचपन की, तो वो गाना भी याद होगा जो आपने गाया था उस समय। चलिए गाइए, तो गाना तो बताइए।
0: तो वो अंग्रेजी गाना था, ओके, बोनियम, ओके,
1: बोनियम का,
0: हाँ,
1: ओके,
0: बोनियम 1975 में। तो एक गाना था, ब्राउन गर्ल इन द रिंग ट्रा ला ला ला ला, सो वो वाला गाना था, उसके लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। फिर हिंदी गाना जो गाना गाया था मैंने, वो पिक्चर थी एक हिंदी फिल्म की थी, जो शायद मेरे शादी का ख्याल,
1: सौतन।
0: सौतन। तो वो पिक्चर मैंने, वो रेडियो पे चल रहा था 80s में, तो मैंने वो गा दिया, तो वो मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया। तो ऐसे फिर अजीब दास्तां है,
1: हाँ
0: अजीब दास, मेरी बहनें रेडियो पे सुन के वो पुस्तक में लिखती थी, क्योंकि लिरिक्स सब
1: हाँ
0: उनको चाहिए
1: जी
0: था, तो वो
1: जी
0: लिखती थी। तो मेरी बहन की राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो मैं वो दोनों, वो हर गाना जो आता था, वो हमारे पास टेप रिकॉर्डर भी नहीं था, सिर्फ रेडियो, तो वो हम 2-3 बार सुनते थे रात, ताकि वो वो लफ्ज़ जो बोले गए हैं वो सही सुने हैं क्या नहीं, तो वो भी गाते थे हम भी गाते थे, तो हमारा टाइम पास ऐसे ही होता था घर में। तो वही
1: गाने याद भी हो जाते थे,
0: याद हो जाते थे। तो ऐसे बोलते बोलते मैं अजीब दास्तां के लिए मैंने बहुत बार पुरस्कार बहुत बार मिलाया है, और वो गाना ऐसा है कि सबको बहुत प्यार लगता है। तब मेरी आवाज एक छोटे बालक की तरह था, बहुत ही स्वीट, बहुत ही पतली, एंड वॉज सूटिंग दैट सॉन्ग। फिर बाकी जाके आगे बहुत अलग अलग गाने गाए, बट कभी ट्रेंड नहीं हुआ था, और डांस का शौक बहुत कभूत चढ़ गया था, और बहुत वाहवाही मिल रही थी, तो मैं उस लाइन में घुस गया, डांस की लाइन।

0: देखिए दास्तान तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी अजीब है,
1: लेकिन मेरी माँ की नजर से बहुत ही अजीब हूँ।
0: लेकिन हमारे लिए
1: कुछ
0: तो
1: भी, मैंने कोई भी चीज जिंदगी में जो रेगुलर चीज होती है जो सब बच्चे करते हैं, मैंने कभी नहीं किया। जो चीज लोग नहीं कर रहे मुझे वही करना है।
0: लेकिन हमारे लिए अजीब नहीं, हमारे लिए बड़ी दिलचस्प है,
1: क्योंकि आप आर्टिस्ट वाले लोग हैं ना।
0: हाँ।
1: आप हमारे जैसे लोग हैं, आप समझते हैं, लेकिन हमारे जो माँ बाप है वो मिडिल क्लास है। सिंपल, पढ़ाई करो, जाओ गवर्नमेंट की नौकरी लेके आओ और सुखी रहो। तो उनके लिए ये सब चीजें अमीरों का शौक है, सिंगिंग, डांसिंग। मुझे बहुत मार नहीं पड़ती थी, लेकिन मेरी माँ बोलती थी मत कर, चाहे तुम फर्स्ट भी, मुझे नहीं चाहिए ये सब, तुम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। और पढ़ाई में भी मैं होशियार था। तो फिर मैंने बोला कि ये क्या बात हुई। तो मैं बहुत झगड़ता था कि नहीं, मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, और मैं आपको लिख के देता हूं कि मैं अपना नंबर जो पहला आया है उससे ज्यादा लेकर आऊंगा, लेकिन आप मुझे रोक नहीं सकती। तो मैं बहुत थोड़ा जिद्दी भी था, तो और रिजल्ट भी लेकर आता था, पढ़ाई में मेरा बहुत बहुत होशियार था। फिर मेरी टीचरों ने मेरी माँ को डांटा एक बार कि आप क्यों ना बोल रही हैं, पढ़ाई में भी अच्छा करता है वो और हमारी स्कूल की शान है ये। तो फिर मेरी माँ चुप हो गई वहां से। फिर मतलब अगर तू कुछ भी हुआ फिर मेरे पर नहीं आना चाहिए। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0: बाकी के भाई बहन कोई शौक नहीं था डांस या म्यूजिक का?
1: आई थिंक शायद होता भी तो आई थिंक वो इतने आई थिंक उनमें शायद कॉन्फिडेंस नहीं था, या मुझ में ना बचपन से लेके, क्योंकि मैं वो जीत गया तो वो नशा चढ़ गया, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था।
0: फिर
1: तो इसकी वजह से वो आगे बढ़ गया। तो मैं कहूँगा कि मैं थोड़ा लकी हो गया। वो एक तुक्का ना, एक लॉटरी पहले ही लग गई, तो उसकी वजह से वो है ना, एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है जब अपने आप पर विश्वास होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। चाहे आप लड़खड़ाएं और चाहे आप उसकी दूसरी बार हार भी जाए, कई बार हारा भी उसके बाद, लेकिन वो एक फील होता है कि हाँ मैंने ये कर लिया है। एक बार आपने स्टेज पर चढ़ गया ना आप, तो वो डर जो होता है ना
0: वो निकल जाता
1: है। तो मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा, लेकिन जो डर होता है स्टेज पर चढ़कर बात करना या एलिक्यूशन देना या डिबेट करना है, तो ये चीजें बहुत लोगों को डर की वजह से लोग आते नहीं है सामने। बहुत सारे अरमान है लेकिन वो लोगों से डरते हैं। वो डर मेरा चला गया, तो वो स्टेज पर जो डर होता है ऊपर चढ़ के लोगों को देखकर, वो अपने आप को एकदम जो भी है आपके अंदर जो टैलेंट, जो फन है वो बताना, कभी कभी लोगों में बहुत कुछ टैलेंट है लेकिन वो डर जाते हैं लोगों को देखकर कि उनके विचार क्या होंगे, वो जजमेंट क्या होगा, अगर वो सेल्फ, जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो बहुत होता है। तो मैं शायद उसमें बच गया। तो

0: टेरेंस, अब थोड़ी सी हमें एक लीप लेनी पड़ेगी, एक थोड़ी सी छलांग लेनी पड़ेगी और हम उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं कि जहां पर आपने ये तय कर लिया कि अब मुझे डांस को ही अपना करियर बनाना है। जब आपने ये तय किया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था और आपकी अपनी क्या कोशिश थी इस फील्ड में जाने के लिए?
1: हम मध्यम वर्ग के लोग थे, तो पिताजी ने हम सभी भाई बहनों को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो, मेरी जिम्मेदारी निकल जाती है। मेरे डैडी बहुत क्लियर थे क्योंकि उनके डैडी ने उनको आई थिंक 10 साल की उम्र में बोला था कि अब मेरा काम हो गया है, तो मेरे डैडी ने 5 साल और बढ़ा दिए और बोला कि 15 साल 10वीं तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद पढ़ना है नहीं पढ़ना है आपकी मर्जी, मैं पैसे नहीं दे सकता तुम्हारे कॉलेज की फीस के लिए कुछ भी, अब अपना अपना करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे उन सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया और कहीं ना कहीं बीच में मुझे डांस का, क्योंकि मेरा डांस का लगाव बहुत ज़्यादा था, लोग जानते थे कि मैं डांस करता हूँ, तो मेरे एक दोस्त ने उसकी 2-3 बच्चे थे जो ट्यूशन देती थी उनको डांस सीखना था, तो उनको मैंने डांस सिखाना शुरू किया, बहुत पैसे मिलने लगे और वो पैसे मेरे कॉलेज फीस को, यू नो, कॉलेज फीस और सभी जो यू नो चाहिए जिंदगी को गुजारने के लिए, उससे ज़्यादा मैंने बहुत कुछ पाया, तो मेरी लॉटरी लग गई।
0: यानी ये उस समय आपकी उम्र कुछ 16-17 साल
1: होगी? 17 साल की थी।
0: यानी उस उम्र से आप डांस सिखा रहे हैं?
1: और 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था, तो 10वीं में ही मैंने मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन का देना चालू कर दिया था।
0: वाह वाह वाह।
1: तो हमारे घर में हमारी बहनें थी, मेरी 4 बहनें थी, मेरे 3 भाई थे, वो भी ट्यूशन दिया करते थे, तो जब भी उनका उनके पास टाइम नहीं होता था तो उन लोगों ने मुझे बच्चे जो उनका एक्सेस थे उन्होंने कहा आप ले लो, यू नो, ये आप पढ़ा दो और ये आपकी जो भी फीस है ये आपके लिए।
0: अब जैसे मैं कह रहा था आपकी दास्तान के बारे में दिलचस्प, मुझे यहाँ कहना पड़ेगा कि बड़ी प्रेरक दास्तान है।
1: अच्छा।
0: इससे जो प्रेरणा हमारे सुनने वालों को मिलेगी कि जीवन संघर्ष का नाम है और संघर्ष कब शुरू होता है और कब खत्म होता है ये ना आप जानते हैं ना कोई और जानता है, लेकिन उस संघर्ष का जो फल मिलता है उसको कहते हैं टेरेंस लुईस।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो टेरेंस, मैं यहाँ ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये जो दौर था आपका, जो संघर्ष का जो दौर था, इस समय आप, चलो आप डांस सिखा रहे थे लेकिन उस समय अपने आप को भी तैयार कर रहे थे यार, सोचा था आपने कि मुझे क्या करना है?
1: एग्जैक्टली। क्योंकि देखो मैं पढ़ाई में होशियार था, तो मैं साइंस, मैंने साइंस लिया था, मुझे डॉक्टर बनना था, तो मेरा 88% निकल गया था, फिर मैं 3 मार्क्स की वजह से मुझे मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं मिली, मुझे डोनेशन देना पड़ रहा था और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, तो फिर मैंने माइक्रोबायो और बायोकेमिस्ट्री किया ग्रेजुएशन के लिए, फिर वहाँ से छोड़ के मैं होटल मैनेजमेंट किया और मेरी डांस की ट्यूशन मैं देता गया क्योंकि पैसे अच्छे रहे थे। जब मैंने सब फिनिश कर दिया, मेरा ग्रेजुएशन फिनिश कर दिया और फिर मैंने होटल मैनेजमेंट भी फिनिश किया 3 साल का और मुझे नौकरी भी मिल गई थी कैंपस इंटरव्यू से, लेकिन तब तक मेरा इतना बड़ा मतलब मैं घर घर जाके इतना कमा रहा था कि जो पैसे मिल रहे थे कैंपस इंटरव्यूज के द्वारा, मतलब जो नौकरी यू नो लगने के बाद जो पैसे मिलने वाले थे, उससे मुझे 10 गुना और पैसे ऑलरेडी मिल रहे थे घर घर जाके सिखाने हैं।
0: ओह।
1: मैंने अपने परिवार वालों को बोला कि मैं ये काम नहीं करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें और अच्छा मेहनत करूँ तो मैं शायद सफल हो जाऊँगा। मेरे माँ बाप को डर था कि ये जो नौकरी है घर घर जाके, ये इसमें कोई, मैं, हम लोग क्या बोलेंगे समाज को, तो इतना पढ़ा लिखा है, तो इतना होशियार बच्चा था, तो डॉक्टर बनने वाला था और फिर तुम माइक्रोबायो बायोस्ट्रीमिया है, फिर तुमने होटल मैनेजमेंट किया है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके तुमने, तुम अभी डांसर बन रहे हो, तो वो उनके लिए तौहीन की बात थी क्योंकि हमारे परिवार में डांस के एक एक लग्जरी है, ये यू नो ये अमीर लोगों के लिए यू नो शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते हैं इसमें, तो वो मेरे पेरेंट्स का मानना था, मेरे पिता और माता का, और मेरे भाई बहन भी जो साथ हैं वो सभी एक, मतलब यू नो आइदर टीचर है या यू नो फार्मेसी में है या इंजीनियर है मेरे भाई या बैंकर है, तो वो सभी एक बहुत ही स्ट्रीमलाइंड जॉब में है, मैं थोड़ा हटके सोच रहा हूँ, तो उन्होंने सब ने ना कर दी, मैंने बोला कि नहीं आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मुझे जो करना है करना है, वैसे भी मैं आपसे ज़्यादा कमा रहा हूँ। तो मैंने ठान लिया है कि मैं ये नौकरी नहीं लूंगा, तो सब लोग मेरे दो

0: बताऊं, मिडिल क्लास आदमी बड़ा डरपोक होता है, वो हर चीज से डरता है
1: हाँ.
0: क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहता, उसके पास जो रहता है वो खोने के लिए
1: हाँ.
0: वो इतना होता है कि अगर वो खो गया तो वो सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो
1: हाँ,
0: जाएगा।
1: अगर आप कलाकार फैमिली में बॉर्न हुए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम
0: कोई
1: नहीं है,
0: प्रॉब्लम
1: क्योंकि
0: नहीं
1: उन लोग
0: है।
1: सपोर्ट मिलता है. लेकिन
0: हाँ
1: हमारे, मेरे डैडी तो मजदूर हैं, उनको सिर्फ, वो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ ये पढ़ा लिख कर मेरा बच्चा आगे जाए वो ही खुशी
0: ये
1: है.
0: बहुत बड़ी बात है ना।
1: हाँ
0: और देखिए, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा उनका नाम रोशन करे,
1: करेक्ट
0: आगे बढ़े। हर बाप
1: करेक्ट
0: की सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि
1: हाँ
0: उसका बेटा उससे आगे जाए।
1: बढ़े हाँ
0: बस आपने दो कदम भी आगे बढ़ा दिए तो आपके पिताजी तो खुश हो गए,
1: खुश
0: उनको
1: हो
0: तो
1: गए.
0: खुशी मिल गई।
1: हाँ, लेकिन को वही
0: लेकिन
1: वही चिंता थी कि अरे तू तो डॉक्टर बनने वाला था, फिर तूने माइक्रोबायो बायोकेमिस्ट्री में किया, फिर तूने होटल मैनेजमेंट किया, तू फर्स्ट भी आया यहाँ पर, तो फायदा क्या इतना पढ़ के, तू इतना पढ़ता है तू फर्स्ट लेके आता है, नौकरी भी तुझे हाथ में मिल गया, लेकिन तू ये नहीं करना चाहता है, ये क्या बात हुई. तो
0: चलिए,
1: मेरे डैडी को समझ में आता कि मैं ऐसा कैसा इंसान हूँ. और वो
0: फाइनली
1: बोली
0: फिर आपके मदर फादर खुश
1: अग्री
0: हुए कि नहीं?
1: नहीं, वो बाद में बहुत सालों के बाद खुश हुए, बहुत सालों के बाद जब उन्होंने देखा कि वो भी, मतलब 7-8 साल बहुत, जब मैं जब एक्चुअली मैंने इंस्टीट्यूट खोला, फिर मैंने बोला कि मैं घर घर नहीं जाऊंगा, मैं अपना खुद का क्लास शुरू करूंगा, लोगों को मेरे पास आना चाहिए, मैं क्यों जाऊं घर घर. तो वो भी था ना कि अगर मुझे अपने आप का एक नाम बनाना है तो मैं घर घर नहीं जाऊंगा, लोग मेरे पास आना चाहिए. तो मैंने एक स्टूडियो लिया, पैसे खर्च किए, जो भी इकट्ठा किए थे, पूरा मेरी मेरी पूरी जवानी जो मुझे पता नहीं कहाँ गई, मैंने दोस्तों के साथ कभी वक्त ही नहीं बिठाया, मैं सिर्फ काम करता गया और जो भी पैसा है अपने करियर में लगा दिया. और वो फिर ठप हो गया क्योंकि लोग आए नहीं, क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि लोगों को, अगर मैं किसी के घर पर जा रहा हूँ तो वो उनकी सहूलियत होती है ना कि मैं उनके घर पर आ रहा हूँ, तो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है.
0: एक और
1: लेकिन
0: बात होती है टेरेंस, कलाकार जो होता है वो कलाकार होता है, बिजनेसमैन नहीं
1: नहीं होता, तो
0: होता।
1: वो अकल बाद में, फिर
0: वो
1: जब जमीन
0: सीखना
1: पर उतरा, मैं
0: पड़ता
1: उड़ रहा था कि मेरा ऐसा
0: है।
1: होगा.
0: और
1: मैं सच में ना, जो मैं 21-22 साल का था, मैं मेरे सपने, हाँ मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये होगा, फिर मैं बड़ा शो करूंगा, फिर लोग मेरे मेरे पास आएंगे, देखें कि मैंने कितना अच्छा काम किया है. और तो ये बड़े बड़े मेरे ख्याली पुलाव चलते रहते थे मेरे दिमाग में. फिर मेरी एक बड़ी फिल्म आएगी, लोग मेरे पास आएंगे और बोले कि मेरी फिल्म करो, तो मेरा दिमाग सपनों में रहता था.

0: अच्छा टेरे साहब, मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि मैंने जवानी में पूरा अपना इस तरह से वक्त निकाल दिया, हाँ। रिलैक्स करने के लिए क्या करते थे? रेडियो पे जो गाने बचपन में सुना करते थे, वो गाने कब तक आपका पीछा करते रहे? मैं मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी वो गाने जरूर होंगे कहीं ना कहीं आपके जहन में, लेकिन जब भी रिलैक्स करने का मूड होता रहा होगा तो किस तरह के गाने सुना करते थे? गानों की जो अगर आपसे फेहरिस्त पूछी जाए तो किस तरह के गाने होते थे? किस मूड में किस तरह का गाना आप सुना करते थे? जहां अभी मान लीजिए कि घर में बैठे हैं और माँ और पिताजी से बहस हुई है कि नहीं नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तुम हम इतना पढ़े लिखे हो, और उसके बाद अल्टीमेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज होके या थोड़ी सी उदासी में घर से निकले, तो कहीं कोई गाना पीछा करता था विविध भारती का?
1: बहुत सारे गाने थे सर, क्योंकि मैं ट्रेन से ट्रैवल करता था,
0: लोकल ट्रेन
1: और मुझे सॉरी ये कहना नहीं चाहिए रेडियो पे, लेकिन मुझे
0: हैंड हेल्ड पकड़ के
1: मुझे गर्मी बहुत जल्दी होती है, तो मुझे हवा चाहिए, तो वो हवा यू नो, और मेरे बाल लंबे हुआ करते थे, तो मुझे बहुत मजा आता था कि मैं एक हाथ
0: पकड़
1: कई बार
0: दरवाजे पे लटक जाऊं।
1: आई एम टेलिंग यू, मैं सच कह रहा हूँ कि कई बार पता नहीं किसने मुझे बचाया है, फिसलते फिसलते मैं बचा हूँ। तो ये मेरे 5 साल ऐसे ही गवाए हैं, और मैं उसके बाद भी ट्रेन में ही ट्रैवल करता था क्योंकि वो फटाफट हुआ करता था।
0: दोस्तों ये जो टेरेंस जो कुछ कह रहे हैं ये सिर्फ सुनिए, इसे सिर्फ सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है। इस पर अमल बिल्कुल नहीं करना नहीं है आपको, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। मुंबई में हर दिन कई कई बच्चों की जान इससे जाती है, कई अपने जीवन में अपाहिज हो जाते हैं। तो इसको सिर्फ सुनिए और कान दूसरे कान से निकाल दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं।
1: नहीं सही कहा आपने। तो क्या है कि मैं गाने सुनता था और मेरा जरिया था कि जब भी मैं उदास या जब भी मैं अपने आप को खुश करना चाहता था, या मैं जनरली मैं उदास से नहीं रहता हूँ, मैं ऑलवेज हसमुख रहा करता था, मैं वो गाने सुनता था या वो गाने गाता था, सुनता भी नहीं था गाता था, जो मेरे दिल को हल्का करे। मैं बताऊं कि एक गाना है देवानंद सर का, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और फिक्र को धुए में उड़ा। ये ऐसा गाना मुझे दिल के बहुत करीब है। मैं

0: ये गीत तो हमने सुन लिया।
1: हाँ,
0: जिंदगी के जो कश्मकश रहती हैं उनको किस तरह से आपने दूर किया। मैं जानता हूँ सिगरेट विगरेट तो आप नहीं पीते हैं और पीना भी नहीं चाहिए किसी तरह के नशे से, बिल्कुल अपने आप को बचा के रखना चाहिए।
1: नहीं, ऑल्सो अगर आपने लाइफ का नशा पिया है ना, और जो लाइफ में मजा है और जो जिज्ञासा में मजा है, लाइफ को खोजने में मजा है, वो कभी आपने अगर चख लिया तो सब नशे फीके पड़ जाते हैं।
0: और फिर आप तो पहले ही से वो स्टेज वाले नशे में धुत थे, आज भी हैं।
1: तो ऐसा मैं ये भी कहूँगा कि मैंने 35 साल की उम्र में, 35 की उम्र में मैंने बिना शराब की बूंद चख ली। फिर मैंने लोग सिगरेट पीते थे, मुझे दिखते क्या है, तब तक मुझे कोई थे ही नहीं, मैं मन पूरा मेरा ध्यान डांस में था। और देखा क्या, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं महसूस पड़ रहा है, लेकिन कि जो नशा लाइफ में है और जीने में है उससे बहुत कम है, तो कभी वो लत या लगाव लगाई नहीं।

नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे है, अब आरंभ होती है हमारी सायंकालीन सभा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों की श्रृंखला में आप सुनेंगे युववाणी, पर उससे पहले इस घंटे की खास खबरें न्यूज हेडलाइन में अब से कुछ ही पलों बाद।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 का शुभारंभ किया। इस मंच में 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन को आज नई दिल्ली में संबोधित करते हुए कहा है कि भारत के युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने आज दोपहर भोपाल विधानसभा में चुनाव अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की गई। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

दोस्तों, जंगलों में घूमना, नदी पहाड़ों की सैर करना सभी को अच्छा लगता है। लेकिन कैसा लगेगा जब आपसे ये सभी चीजें और आपका अधिकार छीन लिए जाएं? जाहिर है, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और उन्हें वापस पाना चाहेंगे। ऐसा हुआ भी है, कब और कहां जानते हैं आज की युवाणी में। दोस्तों, आकाशवाणी के रीवा केंद्र से मैं आपके रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। स्वीकारिए मेरा प्यार भरा अभिवादन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की जिन्होंने अपनी जान देकर आदिवासी समाज को नई राह दिखाई। उनका नाम है बिरसा मुंडा। वो झारखंड के खूंटी जिले के उलिहाती गांव में 15 नवंबर 1875 को एक मुंडा परिवार में जन्मे थे। बिरसा बचपन से ही बहुत समझदार और साहसी थे। उन्होंने अंग्रेजों, जमींदारों और ईसाई मिशनरियों द्वारा आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को करीब से देखा। आदिवासी अपनी जमीन, जंगल और संस्कृति खोते जा रहे थे। बिरसा ने फैसला किया कि अब चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने एक महान विद्रोह उलगुलान की शुरुआत की। उन्होंने लोगों को एकजुट किया और कहा, हमारी जमीन हमारी है, हमें अपना धर्म और संस्कृति बचानी है। बिरसा ने हथियार उठाए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका नारा था अबुआ राज, मतलब हमारा राज। उन्होंने आदिवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबी बनने की प्रेरणा दी। उनके नेतृत्व में हजारों आदिवासी एक हो गए। इससे अंग्रेज बहुत घबरा गए। उन्होंने बिरसा को पकड़ने के लिए बहुत कोशिश की। वर्ष 1900 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उन्हें क्रूर यातनाएं दी गईं और मात्र 25 साल की उम्र में 9 जून वर्ष 1900 को उन्होंने जेल में ही अपनी अंतिम सांस ली। लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके बलिदान के बाद भी आदिवासी आंदोलन और मजबूत हुआ। बिरसा मुंडा का बलिदान हमें सिखाता है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना कितना जरूरी है। उन्होंने दिखाया कि चाहे कितनी भी बड़ी ताकत हो, अगर हम एक होकर लड़ें तो अन्याय हार जाता है। आज झारखंड राज्य बनाने में भी बिरसा की प्रेरणा काम आई। उन्हें धरती आबा, मतलब पृथ्वी का पिता कहा जाता है। बिरसा मुंडा जी का बलिदान हमें याद दिलाता है कि देश के लिए, समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार रहो। उनकी याद में हम भी आज अपनी जिम्मेदारी निभाएं, शिक्षा लें, एकजुट और अन्याय के खिलाफ लड़ते रहें। और दोस्तों, अब श्रेया घोषाल की मीठी और सुखविंदर सिंह की दमदार आवाज में आपको सुनवाते हैं जोश से भरा हुआ ये गीत।

0: दोस्तों, क्या आपने सीड योजना के बारे में सुना है? सीड योजना का पूरा नाम है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज। ये भारत सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया था। डीएनटीज का मतलब है विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियां। ये वो समुदाय है जो सदियों से घूम घूम कर जीवन बिता रहे हैं। अंग्रेजों के समय में उन्हें अपराधी जाति घोषित कर दिया गया था। आजादी के बाद भी ये समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी और अच्छे घर से दूर रहे। इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए सीड योजना बनाई गई। इस योजना के मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो इन समुदाय के छात्रों को मुफ्त कोचिंग दी जाती है ताकि वे सरकारी नौकरियों, पुलिस, सेना और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकें। समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। छोटे छोटे समूह बनाकर रोजगार और आजीविका शुरू करवाई जाती है, जैसे हस्तशिल्प, कृषि, पशुपालन। समुदाय को शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और आर्थिक मदद देकर उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है। इस योजना से हजारों युवा पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पा रहे हैं, परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा मिल रही है और कई लोग अपना छोटा व्यवसाय शुरू करके आत्मनिर्भर बन रहे हैं। दोस्तों, सीड योजना हमें बताती है कि सरकार हर वर्ग के बारे में सोचती है। कोई भी व्यक्ति या समुदाय पिछड़ा नहीं रहना चाहिए। जो छात्र इस समुदाय से हैं, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और कोचिंग के लिए आवेदन करें। सीड योजना देश के हर नागरिक को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और दोस्तों, अब दीपांजलि त्रिपाठी से जानते हैं डीएनटी समुदाय के लिए सरकार द्वारा और कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं।
1: दोस्तों, हमारे देश के आदिवासी और डिनोटिफाइड ट्राइब्स यानी कि डीएनटी समुदायों के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये योजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास और संस्कृति को मजबूत करने के लिए बनाई गई हैं। अगर हम कुछ मुख्य योजनाओं की बात करें तो धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ, जिसमें 79,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट है। ये अभियान करीब 63,000 आदिवासी गांवों में स्कूल, आंगनबाड़ी, सड़क, पानी, बिजली और रोजगार की सुविधाएं पहुंचा रहा है। 5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी लोगों को इससे फायदा हुआ। अगला है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये खास तौर पर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी कि PVTG के लिए है। इसमें घर, साफ पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क पर फोकस किया गया है। हजारों घरों में बिजली पहुंची, मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू हुई, वन धन केंद्र बने, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के जरिए दूर दराज के इलाकों में अच्छी शिक्षा पहुंचाई गई। हर स्कूल में 480 बच्चे पढ़ते हैं। इससे लड़के लड़कियों दोनों को फायदा हुआ। कई छात्रवृत्ति योजनाएं भी इसमें शामिल हैं। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, टॉप क्लास शिक्षा और विदेश पढ़ाई के लिए लाखों आदिवासी छात्र इससे पढ़ पा रहे हैं। वन धन योजना में जंगल की चीजों, महुआ, हल्दी जैसे कई चीजों को बेचकर हमारे आदिवासी समुदाय के लोग अच्छी कमाई कर सकते हैं। लाखों आदिवासी परिवारों की आय इससे बढ़ी है। दोस्तों, ये योजनाएं लाखों लोगों तक पहुंची हैं। शिक्षा में नामांकन बढ़ा, लड़कियों की पढ़ाई सुधरी, कई गांवों में बिजली पानी पहुंचा, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई। मनधन से लाखों लोगों को आय का नया जरिया मिला। पीएम जनमन ने 48 लाख से ज्यादा PVTG लोगों को छुआ। फिर भी चुनौतियां हैं, जैसे जागरूकता कम होना, दूर दराज के इलाकों में पहुँच मुश्किल होना और पूरा फायदा न मिलना। सरकार बजट बढ़ा रही है लेकिन निगरानी और स्थानीय भागीदारी जरूरी है। दोस्तों, आदिवासी हमारी संस्कृति की जड़ है। इन योजनाओं से वो मुख्य धाराएं में आएंगे तो देश मजबूत बनेगा। धन्यवाद।
0: दोस्तों, अभी आप दीपांजलि त्रिपाठी को सुन पा रहे थे और अब आपको सुनवाते हैं राहत फतेह अली खान की खूबसूरत आवाज में ये गीत।

दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकार की कई बड़ी भर्तियां चल रही हैं, जिनमें हजारों पदों पर आवेदन का मौका है। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आज हम आपको कुछ वैकेंसीज के बारे में बताएंगे, जिनके फॉर्म आप 30 जून 2026 तक भर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं रोजगार समाचार। पहली है SSC CGL 2026। इसमें कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पर 12,256 से भी ज्यादा पद हैं। ये ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ा अवसर है। इसमें विभिन्न विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पद हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 22 जून 2026 है

आवेदन ssc.gov.in पर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगली है आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की। इसमें 11,127 पद हैं और ये रेलवे की बड़ी भर्ती है। आईटीआई डिप्लोमा वाले उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 14 जून 2026 है। आवेदन rrbapply.gov.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है। एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी विभिन्न कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, डिप्यूटेशन के आधार पर सीनियर कंसल्टेंट, डिजास्टर मैनेजर जैसे कई पद हैं। इनमें आवेदन की अंतिम तारीख 20 जून और 30 जून 2026 विभिन्न पदों के अनुसार है। आवेदन आधिकारिक एनडीएमए पोर्टल पर किया जा सकता है। अगली है नालको नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल। इसमें 268 पद ऑपरेटर, टेक्नीशियन, फोरमैन आदि के हैं। 10वीं आईटीआई डिप्लोमा विभिन्न पदों के अनुसार अलग अलग योग्यता है। आवेदन की अंतिम तारीख 10 जून 2026 है। nalcoindia.com पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली है कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी। इसमें 660 से भी ज्यादा विभिन्न डिसिप्लिन में मैनेजमेंट ट्रेनी के पद हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 11 जून 2026 है। इनके अलावा यूपीएससी में विभिन्न पद इंडियन नेवी, अग्निवीर, कोंकण रेलवे, एसबीआई अपेरेंटिस के भी बहुत सारे पदों पर भर्तियां निकली हैं। दोस्तों एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, एएलपी जैसी बड़ी भर्तियों में जल्दी आवेदन करें, क्योंकि बाद में सर्वर का भारी लोड होता है। डेप्यूटेशन वाली एनडीएमए भर्तियां अनुभवी उम्मीदवारों के लिए अच्छा विकल्प है। लेकिन किसी भी भर्ती में अप्लाई करने से पहले ये बात जरूर याद रखें कि फॉर्म भरने से पहले पूरा नोटिफिकेशन पीडीएफ ध्यान से पढ़ें। इनमें योग्यता, आयु सीमा, फीस, इन सभी का ध्यान रखें। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और फीस समय पर जमा करें। ये भर्तियां युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। जल्दी आवेदन करें और तैयारी शुरू करें। अधिक जानकारी के लिए या किसी खास भर्ती के लिए आप उनकी वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन चेक करें। तो रोजगार समाचार में आज इतना ही, और आपको अपनी तैयारियों के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अब वक्त हो चला है हमारे आज के विशेष स्तंभ इंद्रधनुष का। तो आपको सुनाते हैं इंद्रधनुष का ये पहला गीत जावेद अहमद की आवाज में।

दोस्तों, इस गीत के साथ वक्त हो चला है हमारा आपसे विदा लेने का। तो जाने से पहले अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा ईमेल एड्रेस है yuvvanireeva@gmail.com। तो स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और निरोगी काया का ध्येय लिए विदा दीजिए अपनी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला को। नमस्कार, शुभ संध्या।

हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, समय है फिल्म संगीत का। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत में पहला गीत, मोहम्मद रफ़ी के स्वर में उम्मीद फिल्म से। गीत लिखा है शकील बदायनी ने, संगीत दिया है रवि ने।

और लीजिए अब सुनिए मासूम फिल्म का गीत। आवाज़ है भूपेंद्र सिंह और सुरेश वाटकर की। गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार आर डी परमन।

आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कभी कभी। मुकेश की आवाज़ में लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार खयाम।

और लीजिए अब सुनिए महेंद्र कपूर के स्वर में हमराज फिल्म का गीत। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने, धुन बनाई है रवि ने।

माफ़ कीजिए, अब हम आपको सुनवा रहे हैं छोटी सी बात। इस फिल्म का गीत आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीतकार योगेश, संगीतकार सलिल चौधरी।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। इसमें आप सुनेंगे हमारे आज शाम प्रसारित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। शाम 6:10 पर देशभक्ति फिल्मी गीत आप सुनेंगे। 6:30 का समय है लोक संगीत का, कलाकार हैं गीता राजपूत। 6:45 पर सुनिए सुगम संगीत, इसमें आप सुनेंगे दीप्ति मिश्रा के गाए गीत और भजन।

शाम 7:21 पर कृषि जगत में आप सुनेंगे लोकगीतों पर आधारित गम्मत। रात 8 बजे का समय है सुर्खियों में। सुर्खियों में कार्यक्रम हम रिले करेंगे आकाशवाणी भोपाल।

पाल से। 8:45 पर सुनिए फिल्म संगीत। न्यूज़ एट 9 9:00, स्पॉटलाइट 9:15 पर, और 9:30 पर सुनिए अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती। रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।

और लीजिए अब सुनिए कल रविवार 7 जून को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। कल सुबह 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, 6:30 पर प्रकाश किरण में धार्मिक ग्रंथों में सदाचार पर विचार आप सुनेंगे स्वर श्री दामोदर शास्त्री का, 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान, 6:45 पर कृषि सामयिकी में सुनेंगे खेती की साप्ताहिक सलाह, 7:20 पर गुड मॉर्निंग जबलपुर।

सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, 8:30 पर फिल्म संगीत, 9 बजे सुनिए लोक रसधार में रजनी सूर्यवंशी के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत, 9:10 पर प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे, 9:30 पर हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहान, सुबह 10 बजे जिले की चिट्ठी, 10:05 पर वंदे मातरम और 10:10 पर विश्व दर्पण, 10:20 का समय है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा का।

कल शाम 7:21 पर कृषि जगत में आप सुनेंगे भेंटवार्ता, कृषि यंत्रों का चयन और प्रचालन में सावधानियां, जानकारी देंगे डॉक्टर G.C. मस्कोले। रात 8 बजे भोपाल से सुनिए सुर्खियों में, रात 9:15

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला टीम को भी बधाई दी है। मौसम विभाग ने केरलम और माही में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.

0: और लीजिए आप सुनिए मोहम्मद रफ़ी के स्वर में देश प्रेमी फिल्म का गीत, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: नफरत

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति फिल्मी गीत। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 हुए हैं। संस्कृत में समाचार अब से कुछ ही पलों बाद हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 हुए हैं। ये समय है सुगम संगीत का। सुगम संगीत में आज कलाकार हैं दीप्ति मिश्रा। लीजिए सबसे पहले सुनिए ये गुरु भजन।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आज की कलाकार थी दीप्ति मिश्रा। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। हिंदी में समाचार आपसे कुछ ही पलों बाद हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकाल विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नवन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली है और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में आर्थिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो और 15 और 20 किलो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड़ तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 2 शतकीय पारी खेली। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानी पूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the Economic Advisory Council discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils, including palm oil, palm olein, soya bean oil, sunflower oil, mustard oil, groundnut oil, sesame oil, rice bran oil, cotton seed oil and corn oil. The approved pack sizes are 200 grams, 500 grams, 1 to 5 kgs, 15 kg and 20 kg. In Madhya Pradesh, both the BJP candidates, Party National General Secretary Tarun Chugh and Rajnish Agarwal filed their nominations for the Rajya Sabha elections today. The nomination papers were submitted before the returning officer at the Bhopal Assembly. Senior party leaders, Chief Minister Dr. Mohan Yadav, BJP State President Hemant Khandelwal and Minister Kailash Vijayvargiya were among those present on the occasion. Congress has fielded former Mandsaur MP Meenakshi Natarajan as its candidate. The last date for filing of nominations for three Rajya Sabha seats from Madhya Pradesh is 8th of June. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Karnal in New Delhi this evening. The Foreign Affairs Ministry of Nepal said during the meeting both sides will discuss matters of mutual interest with a view to enhancing cooperation across key areas including trade, investment, connectivity, energy and people-to-people ties. Meanwhile, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the visit will further strengthen the special partnership between India and Nepal.
3: With Nepal, we have an expansive agenda from development cooperation to people ties to trade and investment. So all these ties together will be discussed when the two foreign ministers meet. But on our side, we are keen to further strengthen this multifaceted partnership that we have with Nepal.
2: Union Minister for Youth Affairs and Sports Mansukh Mandaviya today said that India's youth are the biggest strength of the country and will play a leading role in realizing the vision of Viksit Bharat by 2047. Addressing the Youth for Viksit Bharat, My Bharat Youth Convention in New Delhi, the minister said My Bharat was created by Prime Minister Narendra Modi as a platform for youth to share their aspirations, ideas and volunteer spirit for nation building. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the mishap in Ferozpur district of Punjab. In a social media post, the Prime Minister conveyed his condolences to the families who lost their loved ones. He wished a speedy recovery for those injured in the accident. The Prime Minister has also announced an ex gratia of 2 lakh rupees for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured from the Prime Minister's National Relief Fund. In hockey, the Indian men's team has lifted the Under-18 Asia Cup for the third time, thrashing host Japan 4-1 in the final in Kakamigahara today. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian men's Under-18 hockey team on winning the Asia Cup 2026. In a social media post, Mr. Modi said the team displayed exceptional skill and teamwork throughout the tournament, culminating in a memorable victory in the final. He said it is a splendid accomplishment by the young hockey players. The Prime Minister said this triumph also reflects hockey's growing popularity among the youth. He conveyed best wishes to the team for their future endeavours. And that is the end of this news bulletin.
4: मध्य प्रदेश से 7:10 होने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
5: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 का शुभारंभ किया। राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। भारत के युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति, कहा केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 का शुभारंभ किया। इस मंच में 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के बीच व्यापार और निवेश के नए अवसर सृजित होंगे।
1: ऐसे समय में जब उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र और नवाचार में समान गति से जब भारत आगे बढ़ रहा है, तो आपका यहाँ आना हमारे लिए एक अलग प्रकार की छलांग लगाने का अवसर भी देने वाला है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मध्यप्रदेश का लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के साथ निर्यात लगभग 3,835 करोड़ तक पहुँच गया है, जो 19% की शानदार वृद्धि को बताता है। और फार्मा क्षेत्र में इसमें हमारा खास योगदान है।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश LAC व्यापार एवं निवेश मंच के डिजिटल प्लेटफॉर्म व आधिकारिक वेबसाइट का लोकार्पण किया, जो वैश्विक व्यापार और निवेश के नए अवसरों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने द बिजनेस टाइकून पुस्तक का विमोचन भी किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय निशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कैंसर के इलाज से पहले कैंसर रोकने का अभियान जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम सब मिलकर गुटखा, तम्बाकू, शराब और बीड़ी सहित अन्य नशीले पदार्थों को बंद करने का अभियान चलाएं।
2: हमने एक अभियान नहीं चला कैंसर हो उसके पहले कैंसर रोकने का, और वो अभियान है गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी बंद करने का अभियान, नशा मुक्ति का अभियान। आखिर कितनी दारू और काय के लिए दारू, जानबूझ के विनाश के सामान क्यों इकट्ठे कर रहे हो? कई आपने कम उम्र के बच्चे लीवर खराब हो, क्या तुम ये नहीं समझते तुम्हारा परिवार तबाह और बर्बाद हो जाता? माता पिता कहां से पैसे लाएंगे तुम्हारे लिए? क्या करेगा परिवार तुम्हारा? सारे माता पिताओं को, समाज को अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, पूरे प्रदेश में चलाए नशा मुक्ति का अभियान। उस दुकान के अलावा जो लाइसेंस ही है, घर घर में शराब, गाँव में शराब, दुकानों में नहीं मिलेगी।
0: प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवार तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने आज विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की रिक्त 3 सीटों के लिए आगामी 18 जून को मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की गई। वहीं जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि देश के किसान अब केवल खाद्य उत्पादक ही नहीं बल्कि ऊर्जा उत्पादक भी हैं। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप